फूल हमें सिखा, फूल हमें बिना कुछ कहे जीवन का बहुत बड़ा संदेश दे जाते हैं। खिलना है तो परिस्थितियों का इंतजार मत करो, धूप में भी खिलते हैं और बारिश के बाद भी। हम भी जीवन की परिस्थितियों से शिकायत करने के बजाय उनमें मुस्काना या मुस्कुरा कर रहना सीख सकते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। समय बड़ा शिक्षक है। बीता हुआ कल हमें अनुभव देता है और आने वाला कल हमें उम्मीद। जो समय आज हमारे हाथ में है वही हमारी असली पूंजी है। इसलिए आज का दिन किसी शिकायत में नहीं, किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उनके साथ किया गया अच्छा काम हमेशा याद रहेगा।

पुरवाई की ठंडी हवा जैसे प्रकृति का संदेश लेकर आती है, उठो जागो और जीवन को नए उत्साह से अपनाओ। भोर सुहानी की इस प्यारी सुबह में बस इतना याद रखिए, हर सूर्योदय अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज की कहानी हम अपने उत्साह, अपने कर्म और अपनी मुस्कान में से लिख सकते हैं। तो मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और इस खूबसूरत सुबह को अपने नाम कर लीजिए। और मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, बस यही कहूँगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

प्रातः 10 बज, क्षमा कीजिएगा, प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित मानस गान। 7:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात का।

8:45 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लकी का। 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स। 11:10 का समय रहेगा प्रोग्राम तस्वीर का।

दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम घर आंगन। 1:10 का समय रहेगा प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल का। 2:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com। 3:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मन भावन का। 5:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गाते गुनगुनाते। शाम 7:25 का समय रहेगा प्रोग्राम सांझ ढलेगा। 8:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मधुरिमा। 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हार श्रृंगार का। 11:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और एक दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण हिमखंड फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस चुनौती के सामने नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से

0: संबंधित सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701705000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हो गए हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा आयोजित समूह में गए थे। इस समूह को कल नेपाल तिब्बत सीमा पार करनी थी, लेकिन अचानक आई बाढ़ से उनसे संपर्क टूट गया और अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। वीर चोटरानी और विलविन सेंथिल कुमार PSA बुडापेस्ट क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhodkoshi in Timure, a border town in Rasuwa district, due to the rock slide and swelling of the Lende River situated along the Nepal-Tibet border. It then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखिए। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। आइए एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ करते हैं एक प्यारी सी शुरुआत। जय श्री राम।

मेहनत का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जानते हैं जब हम इस मेहनत के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो वो मंजिल बहुत खूबसूरत नजर आती है।

जीवन में हमेशा किसी को परखने की ही कोशिश मत करिए, बल्कि समझने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। और जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होती हैं।

छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आप हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहेंगे तो जीवन में कभी भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि यदि हमें कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा हासिल करना है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटे झगड़ों को या क्लेशों को अवॉइड करना होगा और उससे खुद को बचाकर परेशानी से अपने आप को दूर रखना होगा।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरेदी के साथ। सुन रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे से भजन की ओर और मिलकर कहते हैं जय श्री राम।

सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी करना नहीं, सबकी राह में दिए जलाना लेकिन किसी का दिल नहीं। यही जीवन की रीत है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है श्री रामचरितमानस का। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का अगला भाग।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामन अवतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में फिलहाल बस इतना ही, और अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार ठीक 6:55 पर। उसके बाद 7 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर वक्त होगा अंग्रेजी में समाचारों का। और ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल सुप्रभात मेरे यानी सुरेदी के साथ। लेकिन अभी वक्त है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर संस्कृत में समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नेपालदेशे ह्यः सहसा भीषण जलाप्लावस्य अनन्तरं प्रायः 60+ जनानां मृत्युः अभवत् तथा 7+ जनाः लुप्ताः सन्ति। विलुप्तेषु 33+ भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मध्यनेपाल प्रदेशे जातः अयं जलाप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्। अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः 12 जलविद्युत परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति। नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिरखनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायि समयानुसारं प्रातः प्रायः 9:15 तिब्बत प्रदेशे भूकम्पः आगतः, अथ ततः 3 निमेषाणाम् अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता। अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः, येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता। अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावितप्रदेशस्य विभिन्नभागेभ्यः प्रायः 100 रक्षिताः, तेषु 30 काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण चिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भवमानवीय सहायतायाः

0: आश्वासनं दत्तवान्। श्रीशाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्णवचनानां मानवीयसहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्। नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10 टन परिमिता मानवीयसहायता प्रेषिता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक संचार पटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यै जनैश्च सह दृढतया स्थिति। काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः। विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 जनाः कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डक नद्याः च जलस्तरे वृद्धेः संभावनां दृष्ट्वा बिहार राज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिम चम्पारण पूर्व चम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु 6 जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इंडिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणाम् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्ण देशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः द्वयोः महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा युवनेतृत्वं नागरिकदायित्वं स्वयं सेवा शारीरिक स्वास्थ्यं राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवन्तौ। भारत चीनयोः विशेष प्रतिनिधीनां सीमा विवाद सम्बद्ध वार्तायाः 25वां चरणं ह्यः बीजिंग नगरे अभवत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित

0: मा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वीर चोटरानी और वेलवेन सेंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 local time yesterday, and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Nepal's National Disaster Risk Management and Management Authority, the massive flood entered the Trishuli River through the Bote Koshe in Timure, a border town in Rasuwa district, due to the rock slide and swelling of the Lhende River situated along the Nepal-Tibet border. It then spread along the river course to other districts like Novalkot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The numbers are plus 977 985

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। और आज गोल्ड सुप्रभात में आपके साथ हूं मैं सुरति। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। सुबह का सूरज हमें ये सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, जागने का समय आते ही उजाला हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बंद आंखों से देखे गए सपने जो हमें सुकून देते हैं, हकीकत ये है कि खुली आंखों के सपने इतिहास रचते हैं। तो भाई सुबह हो चुकी है, जो लोग सो रहे हैं अभी भी जाग जाएं और अपने ख्वाबों को वहीं समाप्त करके हकीकत में तब्दील करते हुए आज के ये सुंदर बेहतरीन हसीन से नज़ारों का जो ये सुबह लेकर आई है आनंद ले। तो ख्वाबों को करे बाय बाय और सुने इस प्यारे से गाने को, जल्दी से नींद से जग जाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मेरे यानी सुरदी के साथ प्रोग्राम है गोल्ड सुप्रभात। रक्षाबंधन को लेकर सारी बहनें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की रोडवेज और सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, जो कि आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है और 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक ये सौगात आपको मिलने वाली है। ऐसे में आप यानी कि महिला यात्री अपने साथ एक सहयात्री सहयोगी को भी निशुल्क यात्रा करा सकती है। ये सुविधा आपको मिल रही है UPSRTC की साधारण और सिटी बसेस दोनों में। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं की, तो भाई उनके लिए अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत परिवहन विभाग की बसों में आगे भी मुफ्त यात्रा की सुविधा आपको दी जाएगी। लेकिन बाकी सब महिलाओं के लिए ये सुविधा आज से शुरू हो चुकी है, जो कि 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक रहने वाली है। तो प्यारी प्यारी सी बहनें तैयार हो जाएं भाइयों के हाथ में राखी बांधने के लिए।

और इसी के साथ जल्दी से बात कर लेते हैं आज के मौसम की। आखिरकार आज का मौसम कैसा रहने वाला है? तो मौसम विभाग की माने तो आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। फिलहाल मौसम चाहे जैसा भी हो, FM गोल्ड पर गाने तो प्यारे ही होते हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: गोल सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का, तो आइए सुनते हैं एफएम गोल्ड पर आज सवेरे।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: जो सुबह उठकर भी सोया रहे उसकी आंखों में सपने नहीं पलते, जो हर दिन को एक नया दिन माने उसके हाथों से मौके नहीं फिसलते, थोड़ी उम्मीद थोड़ा हौसला और चलने का इरादा भर हो फिर मंजिल दूर नहीं बस एक कदम भर हो। जी हाँ, जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है शुरुआत करने का साहस। हम अक्सर सही समय, सही मौके और सही हालात का इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि सच ये है कि हर सुबह अपने आप में एक नया मौका लेकर आती है। जरूरत बस इतनी है कि हम उसे पहचाने और उसका इस्तेमाल करें। छोटी शुरुआत से भी बड़े बदलाव संभव है, बशर्ते हम रुके नहीं, थके नहीं और अपने इरादों पर भरोसा बनाए रखें। इसी सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
1: हाय वैष्णवी, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड आई थिंक वैष्णवी हैड ऑलरेडी सेड एंड वेरी इंस्पायरिंग लाइंस एंड हैज मोटिवेटेड यू इनफ फॉर द मॉर्निंग। एंड देयर इज आल्सो अ वेरी फेमस कोट दैट आई रेड एज अ चाइल्ड एंड इट हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी दैट ऑब्स्टिकल्स आर दोस थिंग्स दैट यू सी व्हेन यू कीप योर eyes off your goal. So if your eyes are set on the goal, then probably whatever comes your way, you will just face it with fortitude, isn't it? So hausla banaye rakhiye aur apne aap pe yakeen rakhiye, believe in yourself, because every day is a new opportunity to begin, right? And every day we bring a fresh new aaj savere for you to give you the perfect start to your day. And hasbe dastoor laate hain hum aapke liye taaza tareen khabrein, and in our metro news section we'll go and see what's happening in your very own city. And of course the last section Vaishnavi, that we and our listeners always look forward to, in which we remember some of the personalities who either have their birthdays or birth anniversaries or death anniversaries. Let's start with the headlines first.
0: जी बिल्कुल। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से इसकी लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। सरकार अब तक करीब 1,21,000 टन प्याज खरीद चुकी है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोबाइल वैन और विभिन्न सरकारी तथा सहकारी खुदरा दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। वहीं पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से करीब 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है।
1: Prime Minister Narendra Modi will address the Khelo India dialogue through video conferencing today. Organized by My Bharat as part of the celebrations for National Sports Day 2026, the program will bring together young people from across the country. With athletes and public representatives, participants will discuss India's Olympic ambitions, youth leadership, the vision of a Viksit Bharat, and the importance of building a drug-free generation. From the sporting field, let's now turn to something that reaches almost every Indian kitchen. Well, you said the humble onion you were talking about, right? And going on to the next story, that the Indian Institute of Creative Technologies or IICT and Netflix have announced scholarships for 100 students across India. The scholarships will provide up to 80% financial support for 6 courses covering exciting fields such as visual effects, animation, gaming, media technology and interactive comics. And the opportunity isn't limited to students alone. Working professionals can also apply. For young creators looking to turn their imagination into a career, this could be an important stepping stone. From opportunities for young minds, let's move to a matter that concerns everyone, that is our health and well-being.
0: स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली चिकित्सा संघ और भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। IMA के अनुसार अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी गई है। H1N1 के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। वहीं ये तो सेहत की कुछ खबरें थी। अब रुख करते हैं गोवा का, जहां इतिहास, बलिदान और राष्ट्रीय एकता को समर्पित एक स्मारक देश को अपनी विरासत की याद दिला रहा है।
1: That's right, वैष्णवी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has inaugurated the Patra Devi Martyrs Memorial in Goa. The memorial commemorates the courage and sacrifice of the freedom fighters who took part in the 1955 Patra Devi Satyagraha. There are more details from our correspondent.
2: Defense Minister recalled the bravery of Satyagrahis, including Sahodara Devi, Karnel Singh Benipal, Madhukar Dambodar Chaudhary, and others who participated in the 1955 Satyagraha. He said the memorial should inspire future generations to understand the price paid for freedom and uphold national unity and integrity. Mr. Singh said, Patra Devi Satyagraha demonstrated that Goa's liberation was not merely a regional struggle, but an expression of national consciousness. He also recalled the role of the armed forces in our Operation Vijay, which led to Goa's liberation from Portuguese rule in 1961. He urged young people visiting Goa to visit the memorial, learn about the freedom fighters, and draw inspiration from their sacrifices. He said the memorial would become a pilgrimage-like site for the entire country and reminded citizens that preserving freedom is a collective responsibility. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
0: आगे रुक करते हैं दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में नई प्रागैतिहासिक जीवन गैलरी यानी प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी शुरू की गई है। ये गैलरी दर्शकों को करोड़ों साल पुराने उस दौर की दुनिया से परिचित कराती है जब धरती पर डायनासोर और कई अन्य विलुप्त प्रजातियां मौजूद थी। गैलरी में डायनासोर और दूसरे प्रागैतिहासिक जीवों के दिखाया गया है कि लाखों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था और अतीत की दुनिया से अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर जहां कई ऐतिहासिक और पुरातत्व स्थलों को संरक्षण की नई पहचान मिली है।
1: Well, the second Suru festival has begun in Kargil, Ladakh, against the spectacular backdrop of the Noonkun peaks. Spread over 2 days, the festival brings together adventure and culture with activities including paragliding, river rafting, cycling and angling alongside cultural programs. We have a report.
3: The festival was inaugurated at the picturesque Thamsana picnic spot by LHDC Kargil Chairman and Chief Executive Councillor Dr. Muhammad Jafar Akhon in the presence of senior officials from the Tourism Department and the Kargil Administration. The festival is witnessing participation of a large number of visitors from across Ladakh and different parts of the country and foreign tourists. Through adventure activities, traditional performances and local cultural programs, the event highlights the natural beauty, rich heritage and unique tradition.

0: sections of the Suru Valley. The festival is also providing a platform to promote tourism, local entrepreneurship and adventure activities while putting Suru Valley on the map as an emerging destination for both culture and adventure. With Anayat Ali, Harpreet Kaur for Aaj Savere.
1: सायरा कल रक्षाबंधन है और इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक राज्य परिवहन और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा 900 से अधिक बसों में मिलेगी। वहीं हरियाणा में महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में कल दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चे भी बिना किराया यात्रा कर सकेंगे।
2: Indeed, a very good news to all the women who are probably going to tie rakhis to their brothers, isn't it?
3: Yeah.
2: Well, Mizoram has declared 79 monuments and archaeological sites as state-protected monuments. Adding to this heritage recognition, 3 sites in Champai district have also received the status of monuments of national importance from the Archaeological Survey of India. Among the notable sites is Kauchua Rupoi, which has more than 170 carved standing stones, offering a fascinating glimpse into the region's ancient history. And then finally we return to the world of sport, but this time it's not a team event. 2 Indian squash players are battling their way towards the title in Budapest.
1: वीर चोटरानी और वेलविन सेंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वीर ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया, जबकि वेलविन सेंथल कुमार ने कल मलेशिया के एन योव एनजी को 3-0 से मात दी। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। हर शहर की अपनी सुबह और अपनी खबर होती है, तो आइए आज के इन खबरों से रूबरू होते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। मोटापे से जूझ रहे लोगों में लीवर की बीमारी का शुरुआती पता लगाने की दिशा में एम्स के शोधकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण तरीका विकसित किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस का पता लगाने का एक नया तरीका विकसित किया है। एम्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मोटापे और फैटी लीवर से पीड़ित 189 मरीजों पर किए गए शोध में लीवर की शक्ति, एक विशेष ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट के जरिए लीवर की सेहत का आकलन किया गया। एम्स के अनुसार लीवर फाइब्रोसिस की शुरुआती पहचान और आसान जांच से मरीजों को समय पर उपचार देने और लीवर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है।
2: Moving on to Chennai, the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Officials seized 69,000 rupees from 2 Tangent Co employees during a raid at Nanganallur following complaints of bribe demands. During the search, DVAC officials seized 59,000 from an assistant divisional engineer and 10,000 from another Tangent Co employee. The complaints were against officials and employees of the electricity distribution office that they were demanding money for new power connections to houses and commercial establishments, transfer of service connections and replacement of faulty electricity meters.
1: और आगे बढ़ते हैं चेन्नई से महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने बुधवार को कहा कि देश में वर्ष 2011 से ही खुले में खाद्य तेल की बिक्री पर प्रतिबंध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नियम को लागू करने के लिए उनके विभाग की ओर से की गई कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं है। उन्होंने कहा कि खुले तेल की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य मिलावट को रोकना है।
2: Moving on to Bengaluru, Karnataka Education Minister and Soraba MLA Madhu Bangarappa has assured Malnad farmers that no harm will come their way due to the Kasturi Rangan Committee report. The centre has issued a draft notification for the 7th time to implement the report. The minister added that the State Legislative Assembly had rejected the committee report and the decision was conveyed to the central government. The report identifies 20,668 square kilometers covering 1,576 villages in Karnataka as an environmentally sensitive area, including 484 villages in Shivamoga district. The state government said it would not allow the Kasturi Rangan Committee report to be implemented.
1: और आगे बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा है कि कोलकाता नगर निगम में नया बोर्ड गठित होने के बाद कामकाज में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने निगम की सेवाओं से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा के लिए एक अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया है। इनमें जल निकासी, खराब सड़कें और सफाई कर्मचारियों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। श्री मजुमदार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है।
2: And moving on to Hyderabad, following severe flash floods in Nepal, the Telangana government has moved quickly to help state residents affected there. Chief Minister Yerravanth Reddy has directed officials to closely monitor the situation and ensure all necessary support reaches Telangana people stuck in Nepal. On the Chief Minister's instructions, a special helpline and coordination centre has been set up at Telangana Bhavan in New Delhi. Officials there are working closely with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Kathmandu to coordinate relief efforts. Additionally, the state's General Administration Department has established a separate control room at the Telangana Secretariat in Hyderabad to assist affected families. Families unable to reach loved ones in Nepal are urged to contact the helplines with the person's name, passport details, mobile number, last known location in Nepal, tour operator details and family contact information.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं आज के मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है। दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में भी आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और सायरा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में कैसा मौसम रहने वाला है आज?
2: वेल, इन तीनों शहरों का भी मिजाज कुछ न कुछ ऐसा ही रहे, बिकॉज ऑब्वियसली मानसून सा गया। चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू हॉवर बिटवीन 26 एंड 36 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru will have some light rain as well. Minimum temperature was 20, while maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad will have one or two spells of rain or thunder showers, and the sky will remain partly cloudy throughout the day. Temperatures are expected to hover between 24 and 31 degrees Celsius.
1: और आगे बढ़ते हैं। समय के पन्नों पर कुछ तारीखें यूं ही गुजर जाती हैं, तो कुछ तारीखें अपने साथ बदलाव की एक पूरी कहानी लेकर आती है। 27 अगस्त भी कुछ ऐसी ही तारीख है। अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज के दिन क्या कुछ खास हुआ।
2: That's right. On this day in 1776, the Battle of Long Island began as British forces launched a major attack against George Washington's Continental Army in Brooklyn, New York.
1: और आगे बढ़ते हैं। 1859 में एडविन ड्रेक ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के टाइटल्सविल में सफलतापूर्वक कच्चे तेल की खोज की, जिससे आधुनिक व्यावसायिक तेल उद्योग की शुरुआत हुई।
2: Also on this day in 1883, the catastrophic climax of the Krakatoa volcanic eruption occurred, producing enormous explosions and devastating tsunamis across the Sunda Strait.
1: वहीं 1939 में आज ही के दिन जर्मनी में विमानन के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया। हाइकल हे 178 नाम के विमान ने दुनिया की पहली जेट इंजन चालित उड़ान भरी। रोस्टॉक के हाइकल एयरफील्ड से उड़ान भरने वाले इस विमान को टेस्ट पायलट एरिस वाजर्स ने महज 6 मिनट तक हवा में रखा। ये वो पल था जब पहली बार किसी विमान ने प्रोपेलर के बिना सिर्फ जेट इंजन की ताकत पर उड़ान भरी, और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक जेट युग।
2: Indeed, a very turning point in, you can say, aviation history. Also on this day, in 1962, something happened.
1: बिल्कुल, NASA ने शुक्र ग्रह की ओर Mariner 2 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया, जो बाद में किसी दूसरे ग्रह के पास पहुंचने वाला दुनिया का पहला सफल अंतरग्रही मिशन बना।
2: On this day in 1979, Lord Louis Mountbatten, a member of the British royal family and former Viceroy of India, he was assassinated by an IRA bomb while aboard his boat off the coast of Ireland.
1: और 1991 में मोल्दोवा ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। बाद में 27 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 1999 में आज ही के दिन भारत ने मानवीय संवेदनशीलता की एक बड़ी मिसाल पेश की। करगिल संघर्ष के दौरान बंदी बनाए गए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के माध्यम से रिहा कर पाकिस्तान को सौंपा था। ये फैसला उस दौर में आया था जब करगिल युद्ध की तलखी अभी ताजा थी, लेकिन भारत ने वैश्विक मानवीय मानकों और सद्भावना का परिचय देते हुए कदम उठाया था।
2: Also on this day in 2003, Mars made its closest approach to Earth in nearly 60,000 years, coming within approximately 55.76 million kilometers. And when we remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries, तो इस फेरिस्त में सबसे पहला नाम किसका है वैष्णवी?
1: सबसे पहले बात करते हैं रविंद्र केलकर के बारे में। कोंकणी भाषा को केवल बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि साहित्य और विचार की सशक्त भाषा बनाने में जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया उनमें रविंद्र केलकर का नाम सबसे प्रमुख है। वे स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी चिंतक और प्रख्यात साहित्यकार थे। उन्होंने कोंकणी भाषा, संस्कृति और गोवा के पहचान के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके लेखन में गांधीवादी विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। कोंकणी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 2010 को उनका निधन हुआ था, लेकिन कोंकणी भाषा और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा में जब फिल्मों का मतलब अक्सर बड़े सितारे और भव्यता समझा जाता था, तब एक निर्देशक ने रोजमर्रा की जिंदगी, साधारण लोगों और रिश्तों की असाधारण कहानियों को पर्दे पर उतारा। वे थे ऋषिकेश मुखर्जी। उन्हें भारतीय सिनेमा में मिडिल सिनेमा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। संपादन से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशक के रूप में आनंद, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके और गोलमाल जैसे यादगार फिल्में दी थी।
2: That's right, Vaishnavi. Today we are remembering Rishi Da on his death anniversary, regarded as one of the greatest filmmakers of Indian cinema. He directed 42 films during his career that spanned over 4 decades. And he's probably named as the pioneer of the middle cinema of India, because of course, jo middle class ki life thi, usko wo sabse achhi tarah darshate the. Renowned for his social films that reflected the changing middle class ethos, Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of parallel cinema. And he's known for a number of films jinka aapne bhi kuch naam liya: Naadi, Satyakam, Chupke Chupke, Anupama, Anand, Abhiman, Guddi, Golmaal, Majni Didi, Ashirwad, Bavarchi, Khubsurat, Kisi Se Na Kehna and Namak Haram. He also remained the chairman of the Central Board of Film Certification, that is CBFC, and of NFDC, the National Film Development Corporation. The Government of India honored him with the Dada Saheb Phalke Award in 1999 and the Padma Vibhushan in 2001.
1: सर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में आज भी मुस्कुराने और जीवन को नए नजरिए से देखने को वजह देती है। तो आइए अब श्रोताओं को सुनाते हैं उनकी फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत।

0: एंड वैष्णवी, जो हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत में भी बोल रहे थे ना, पल जो जाने वाला है, तो जो इस पल में जो भी लम्हा है आपका वो आपसे जिंदा है, तो उसमें अपना बेस्ट दीजिए. एंड ऋषि दा की आई थिंक फिल्मों के गाने भी बड़े इसीलिए बड़े मोटिवेशनल होते थे. इनफैक्ट लुक एट आनंद फिल्म ऑल्सो, यू नो, ये ऑल दो इट्स अ फिल्म अबाउट यू नो अ वेरी सैड टॉपिक, यू नो, पर्सन इज ऑन द वर्ज ऑफ लुकिंग एट डेथ इन द आई, बट स्टिल इट्स इट गिव्स यू अ होप बिकॉज दैट पर्सन इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ ईच मोमेंट दैट इज देयर, चाहे वो एक ढलता हुआ सूरज ही क्यों ना हो. सो आई थिंक ऋषिदा हैज गिवन व्हाट यू नो मेनी फिल्म मेकर्स.
1: फिल्म की एक अलग ही खूबसूरती है, जब भी आप देखिए आपको अलग ही नजरिए से देखने का मौका मिलता है. जैसे कहते हैं कि आप जब भी बुक को एक अलग अलग फेज में पढ़ते हैं तो एक अलग मीनिंग निकल के आती है, वैसे मुझे लगता है फिल्मों का भी कुछ ऐसा ही है.
0: एब्सोल्युटली. एंड ऋषिदा सिनेमा, द ब्यूटी ऑफ हिज सिनेमा इज दैट ऑब्वियसली इट जस्ट अपीयर्स एज इफ इट इज आवर स्टोरी. आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देखिए तो उसमें कहीं ना कहीं आप इतना ज्यादा रिलेट कर पाएंगे ऑल ऑफ अस, जो आम इंसान की जिंदगी है.
1: बिल्कुल.
0: सो यस, अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर हु पास्ड अवे टुडे, बट आई ऑलवेज फील

0: आर्टिस्ट के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अ पर्सन हैज लेफ्ट अ वैक्यूम अ वॉइड, बिकॉज दैट पर्सन हैज लेफ्ट द बॉडी ऑफ वर्क यू नो ऑफ आर्ट दैट इज देयर फॉर पोस्टेरिटी. सो ऋषि दा प्रॉब्ली लिव्स ऑन थ्रू हिज सिनेमा. टुडे यू आर ऑल्सो रिमेंबरिंग अनदर वेरी यू कैन से एन आर्टिस्ट, अ सिंगर, एन एक्टर हु इज प्रॉब्ली स्टिल लिविंग थ्रू हिज वॉइस. You're talking about Mukesh. Yes, he obviously doesn't need any introduction. Considered to be one of the most popular and acclaimed playback singers of the Hindi film industry, among the numerous nominations and awards he won, his you know, kai baar yun hi dekha from the film Rajnikantha, it won him the National Film Award for Best Male Playback Singer. He was also popular as being the voice of actors Raj Kapoor, Manoj Kumar, Firoz Khan, Sunil Dutt and Dilip Kumar, and of course Raj Kapoor se sabse zyada unko associate kiya जाता है.
1: जी बिल्कुल, अब राज कपूर की आपने बात करी ही तो उनके जो कुछ गाए हुए गीत हैं जो मुकेश ने गाए हैं उनके लिए, जैसे आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, दोस्त दोस्त ना रहा और जीना यहाँ मरना यहाँ जैसे गीतों में मुकेश की आवाज ने राज कपूर के किरदारों को एक अलग पहचान दी. वहीं कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जैसा हम अभी बोल ही रहे थे, वहीं मैं पल दो पल का शायर हूँ और कभी कभी मेरे दिल में, जैसे गीतों ने उन्हें हर दौर के संगीत प्रेमियों का चहेता बना दिया. तो आइए अब यादों की सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मुकेश की आवाज में एक ऐसा गीत जो आज भी दिलों में उसी तरह बसता है.

0: कभी यूं ही।
1: सायरा, मुकेश की आवाज़ कुछ खासियत ऐसी थी कि उसमें दिखावा नहीं था, बस एक सच्चा एहसास था। जब वे दर्द गाते थे तो लगता था जैसे वे दर्द हमारा अपना हो, और जब जिंदगी की बात करते थे तो उनके सुर सीधे दिल में उतर जाते थे।
2: That's very right and

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning, listeners. Have a great day ahead.
0: Namaskar.

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका

0: ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00861852840905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
3: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन

0: के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
4: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे

0: सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Center begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. More from our correspondent.
3: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing. According to China's state-run news channel, 3 people were killed and 265 are missing on the Chinese side of the border. Videos from the affected areas showed a powerful surge of muddy water, rocks and debris sweeping through the border region. Officials said that around 100 people have been rescued from different parts of the affected areas. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The Embassy of India in Beijing also issued a helpline number, which can also be contacted through WhatsApp.

0: Over 100 Indians missing. Tribune headlines: 100 dead in Nepal deluge, 133 Indians missing. Times of India reports: 160 killed in deadly Nepal deluge, at least 133 Indians among 844 missing. Another major story covered on the front page of most dailies is the Trump administration pausing all visa appointments worldwide. Hindustan Times says, US pauses immigration visa interviews amid crackdown. While the Asian Age headlines, US pauses visa appointments worldwide. Another story covered in newspapers is Maharashtra Public Service Commission cancelling the recruitment process for Drug Inspector Group B post following an inquiry into alleged malpractices in the screening exam conducted earlier this year. And finally, a story in Times of India says that from Tokyo to London, heat waves send men to work in shorts. Japan's capital led the way, followed by London, as extreme temperatures swept across Europe. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people, including 133 Indians, missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends first tranche of relief materials to Nepal. Prime Minister Narendra Modi to address Khelo India dialogue today through video conferencing. Centre begins targeted release of onions from buffer stocks to ensure adequate availability and check seasonal price rise. US halts all visa appointments globally amid President Donald Trump's immigration crackdown. Meta to pay up to $18 billion to settle claims that its platforms harm children. And in men's cricket, Team India on verge of Test Series win against Sri Lanka in Colombo. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। अब खबरें तफसील से। नेपाल के वस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, जबकि 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए ये सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे ये जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब ये सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई। नेपाल सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए, जबकि 265 लापता हैं। हुकाम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से यगांगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बाहम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार

0: से।
1: इधर पेजिंग में भी भारत के सिफारत खाने ने एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुख्तलिफ मकामात से नेपाली फौज के 44 अहलकारों समेत 80 सिक्योरिटी अहलकार लापता हैं। अचानक सैलाब आने से 8 पनबिजली प्रोजेक्टों को नुकसान पहुंचा है जिनकी मजमुई सलाहियत 354 मेगावाट की थी। इसके अलावा 19 पुल भी सैलाब के पानी में बह गए हैं। नेपाल की फौज, मुसल्ला पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के अहलकार मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से मैं शमीम इरफान।
0: नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ NDRF सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिना इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माय भारत कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम पूरे मुल्क में किया जाएगा। इसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हर जिले में 2 कॉलेजों से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके जरिए खेलों और नौजवानों के रहनुमाओं, सिविक जिम्मेदारी, रजाकारों, फिटनेस और मुल्क की तामीर में शामिल लोगों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस डायलॉग के जरिए नौजवान अफराद को खेलों से मुतालिक मुल्क की उमंगों के सिलसिले में बराह रास्त बात करने का मौका मिलेगा और इस तरह उनके ख्यालात और नज़रियात भारत के यूथ और स्पोर्ट्स इको निज़ाम के बारे में जारी मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकेंगे। इसकी एक अहम खसूसियत युवा संवाद का एहतमाम होगा जहां नौजवान शुरका को अपने ख्यालात और नुक्ते नज़र को बयान करने के लिए मदऊ किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम एक तंदुरुस्त डिसिप्लिन और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नज़रिए के ऐन मुताबिक हो रहा है जिसमें नौजवानों की उमंगों को मुल्क की तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम अम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैन्स और कौमी इमदाद बाहमी सारिफिन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार मराकज के जरिए प्याज 35 रुपये फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے دورے پر جا رہے ہیں. وہ گجرات ودیا پیٹھ کے تقسیم اسناد کی 72ویں تقریب میں شرکت کریں گے اور احمد آباد میں آئندہ ہونے والے اولمپک اور دولت مشترکہ کھیلوں کی تیاریوں کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिकल दिल लगी। और आज म्यूजिकल दिल लगी में आपके साथ हूं मैं सुरती। जानते हैं ना, हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे अपनी मुस्कान से और ज़्यादा हसीन, और ज़्यादा बेहतरीन, और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, हर पल एंजॉय करें, और साथ ही नया सवेरा नई उम्मीदें। और नई उम्मीदों के साथ मुझे लगता है कि हमें अपने हर दिन को गाते, गुनगुनाते, मुस्कुराते हुए बिताने की कोशिश करनी चाहिए।

त्योहारों का टाइम होता है तो ऐसे में ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा होती है, और ट्रैवलिंग में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेन्स यूज़ की जाती हैं। तो आपको बता दूं, तिलक ब्रिज मुजफ्फरनगर दिल्ली शामली और साथ ही साथ अम्बाला दिल्ली के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन संचालित करने की घोषणा के बाद रेलवे ने अब चंडीगढ़ लखनऊ के बीच भी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। और ये जो सारी ट्रेन है ना, इन ट्रेनों का संचालन आज से किया जा रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। रक्षाबंधन पर फायदे तो बहुत होते हैं, चाहे बात हो बस की या फिर बात हो ट्रेन्स की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। म्यूजिकल दिल लगी प्रोग्राम में आज आपका साथ दे रही हूं मैं सुरदी। वक्त हो गया इजाजत।

लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। जाते जाते एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, उसके बाद आप सुनेंगे समाचार ठीक 9 बजे और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली का ये सफर जारी रहेगा नीतू के साथ। सुनते रहिए FM गोल्ड। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण आदि के सहित नदी के किनारे वाले जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नाशिक से रवाना हो चुकी है, जिसके आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहुँचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। हरियाणा में ये सुविधा आज दोपहर से शुरू होकर कल मध्य रात्रि तक लागू रहेगी। 15 वर्ष तक के बच्चे बिना किराया दिए महिलाओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकी नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में भी आज इसी तरह के मौसम के आसार हैं। दिल्ली में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighbouring nation. The Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The numbers are +977 985 131 6807 and +977 970 910 7500. Nepal Tourism Board also issued similar numbers, including toll-free emergency number 1234, hotline number 1144, and tourist police number 9851-289-445 for help. The Embassy of India in Beijing also issued a helpline number 0086-185-1428-4905, which can also be contacted through WhatsApp. At least 50 of the Indians missing were pilgrims for the Kailash Mansarovar Yatra. Bihar and Uttar Pradesh are on high alert after several districts in neighbouring Nepal were devastated by flash floods in the Gandak River system. NDRF has been placed on high alert along with local administrations and relief rescue teams in the border areas where its impact may be felt. Union Home Minister Amit Shah spoke to chief ministers of both the states. Prime Minister Narendra Modi will address Khelo India Dialogue through video conferencing today. The program is organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat or My Bharat. It will be conducted across the country with participation of youth at two colleges in every district across states and union territories. It will bring together sports, youth leadership, civic responsibility, volunteering, fitness and nation building on a common platform. The dialogue will provide a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. In Uttar Pradesh, state government has announced free bus

जिंदगी जीने के ना बहुत सारे तरीके हैं और हर कोई आपको अपना तरीका बताएगा और आप हर किसी की सुनने लगे ना तो आपका ही दिमाग घूम जाएगा। दूसरे लोग गलत नहीं हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में वो फॉर्मूले काम आए हों पर आपकी ज़िंदगी में भी वो काम आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखिए और उसी हिसाब से फैसले लेना शुरू कर दीजिए। दूसरों का मुंह मत ताकिए कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये है म्यूज़िकल दिल लगी, आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और आज हम याद कर रहे हैं दो बेहद मशहूर हस्तियों को जिनकी आज है पुण्यतिथि। एक तो वो हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी फिल्में बनाई और वो फिल्में आज भी हमारे दिल में घर करे हुई हैं, जैसे कि आनंद है, गुड्डी है, चुपके चुपके, मिली अलाप, नौकरी, गोलमाल, जुर्माना, खूबसूरत, क्या कितने नाम लूं, सभी एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी। दूसरे बहुत ही मन स्पर्शी गीत गाने वाले गायक मुकेश, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो इन दोनों को हम याद करते हैं एक ऐसे गाने के जरिए जो कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है और गीत गाया है मुकेश ने। तो आइए शुरुआत करते हैं म्यूजिकल दिल लगी के ऐसे ही गीत से।

आज का जो दिन है वो ओडिशा में बलभद्र पूजा के तौर पर मनाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस अवसर पर भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें स्मरण किया जाता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालु बहुत ही रीति रिवाजों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। वैसे देखा जाए ना तो आजकल सावन जब आता है तो सावन आते आते जो त्योहार शुरू होते हैं वो आखिर तक चलते ही जाते हैं और फिर ना एक झड़ी सी लग जाती है त्योहारों की, जो कि वाकई में होता तो यही है ना कि अब शहरों में त्योहारों का वो मज़ा रहा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। त्योहार मनाने का जो असली मज़ा है ना वो गांव में ही रह गया है और ग्रामीण इलाकों में जब आप जाते हैं तो फिर वो त्योहार मनाते हुए आपको अलग ही तरह की फील आती है। हम त्योहार नहीं मना रहे हैं फिलहाल यहाँ पर बैठकर, हम सिर्फ गाने सुना रहे हैं आपको। तो चलिए गाने सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक फील लेते हैं त्योहार वाला, या एक बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया वाला फील।

0: तकनीक का ये जो दौर है ना, इसमें कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा है। हर हाथ में कैमरा है और आपकी एक एक हरकत कोई ना कोई रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। स्पेशली जब अब जो है, आपने देखा ही होगा कि चश्मों में भी कैमरा आ गया है, तो फिर स्कूल के बच्चों के लिए तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे चुपचाप इन चश्मों से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि बुलिंग और प्रैंक जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। इनके वजह से लड़कियों की निजता और सुरक्षा भी जो है वो खतरे में है। तकनीक जिस तरह से दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, उससे फ़ायदा उठाने की जगह ना हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है, मुझे ही नहीं सारे विशेषज्ञों को लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर या तो रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कायदा तोड़ने में यकीन रखते हैं, बिल्कुल इनकी तरह।
1: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

भी ऐसा सोचते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको भी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कायदा हमेशा फॉलो करना ठीक है, आप हमेशा ही कायदा फॉलो करते रहेंगे तो कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है कभी कभी आप कुछ नया करने के लिए कर सकते हैं, पर हमेशा कायदा नहीं तोड़ सकते। हर जगह के हर जिंदगी के हर तरह के जो माहौल होता है उसका एक उसूल होता है, और उन उसूलों को फॉलो करना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं वो आप जाने, पर चलिए गाने सुनाने की जो एक कवायद है, जो कायदा है गाने सुनाने का, वो मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो मैं फॉलो नहीं करूँगी तो आप ही मुझे बोलेंगे आपने गाने सुनाना क्यों बंद कर दिया, आप बातें किए जा रही हैं तब से। तो चलिए गाना सुनते हैं अगला, और फिर लौट कर आते हैं म्यूजिकल दिल लगी में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप, और आज है वर्ल्ड लेक डे, जो याद दिलाता है कि झीलें सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, और हम सबको इनके संरक्षण में अपना योगदान

देना ही चाहिए। और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का उद्देश्य भी यही है कि देश की झीलों के जल की गुणवत्ता बनाए रखना, उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना। इस योजना के अंतर्गत झीलों के पुनर्जीवन, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो पहल है, जल संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता और सतत विकास को भी प्रोत्साहित करती है। और इन सब से अलग आप देखें तो झील का किनारा ना हर किसी को अच्छा लगता है। जब भी आप कहीं घूमने जाते हो और अचानक आपको कोई साफ सुथरी झील दिखती है तो अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है बस बैठे रहें घंटों उस झील के पानी में पैर डालकर और सोचते रहें, अच्छे अच्छे गाने सुनते रहें। तो जो गाने मैं आपको सुनवाई रही हूं, तो आप इमेजिन करिए इन गानों के साथ साथ। ये है म्यूजिकल दिल लगी, मैं हूं नीतू आपके साथ।

इस तरह की इमेजिनेशन आजकल आप कर पाते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग जो पहले उतना इमेजिन करते थे, अपनी कल्पनाओं में खोए रहते थे, अब वो सिर्फ दूसरों की कल्पनाओं में खोए रहते हैं क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल होता है। यहाँ तक तो छोड़िए, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो

वहां पर आप खाना खाते हैं, खाना आता है, उससे पहले उसकी पिक्चर ली जाती है और आप उस पिक्चर को देखते हैं खाने से पहले। ये ऐसा करना ना आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इससे क्या होता है कि खाने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में लोगों से उनका फोन बंद करने के लिए कहा जाने लगा है, ताकि आप जो हैं वो भोजन का सही जायका, सही स्वाद ले पाएं, एक दूसरे से बातचीत कर पाएं, माहौल का लुत्फ उठा पाएं। और क्योंकि वो मशहूर रेस्टोरेंट है, इसलिए लोग उनकी बात मान भी रहे हैं। पर क्या आप घर में ऐसा करते हैं, फोन बंद करके खाना खाते हैं आप कभी? सोचिए। चलिए ठीक है, आप सोचिएगा, मैं तब तक आपको गाना सुनवाती हूँ।

0: प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये है म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूँ नीतू आपके साथ और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी कि युवा जो हैं, आजकल के युवा, ट्रेडमिल पर 5 मिनट भी नहीं दौड़ पा रहे हैं। और अमेरिका में एक 44 साल की फिटनेस ट्रेनर ने ट्रेडमिल पर 160 किलोमीटर दौड़ कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया।

स्वस्थ और लंबा जीवन जीने का क्या राज है, ये सवाल ना अक्सर हमारे आसपास घूमता रहता है। हालांकि इसके पीछे जेनेटिक कारण भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं उन्हें लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग जवाब दिए हैं। किसी ने कहा है कि भरपूर नींद और हेल्दी फूड, किसी ने कहा सोशल बनिए और सच्चे दोस्तों के साथ रहिए, किसी ने कहा कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, नई नई चीज़ों को जानिए। पर आपको नहीं लगता कि उम्र है, आगे बढ़ेगी भी ढलेगी भी, और शायद वही उसकी खूबसूरती है।

गाने ना बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं और इसीलिए हमें पुराने गाने आज भी पसंद है। AIR FM गोल्ड सुन रहे हैं आप और आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अब वक्त हो गया है कि म्यूजिकल दिल्लगी से नीतू इजाजत ले ले आपसे मुलाकात होती है 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स में, जिसमें आपकी फरमाइशें होंगी पूरी। और fmgoldairdelhi@gmail.com यहां पर आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। तो अभी के लिए नीतू कहती है बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही ये सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं के 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। श्री सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सरकार के साथ लगातार राहत और बचाव के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली क्षेत्र पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर

रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। भारत पांचवें और अंतिम दिन श्रीलंका की पारी को जल्दी समाप्त करके निर्धारित लक्ष्य का पीछा करेगा। वहीं वीर चोटरानी और वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वीर ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया, जबकि वेलविन सेंथिल कुमार ने कल मलेशिया के एन योवएनजी को 3-0 से मात दी। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Nearly 160 people have been killed and over 750 remain missing, including 133 Indian nationals, after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. More from our correspondent.
1: Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhote Koshi in Timur, a border town in Rasuwa district. Due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border, it then spread along the river course to other districts like Nuwakot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Nepal police said 157 people died in the flash flood. The Nepal government said around 500 people are missing. According to China's state-run news channel, 3 people were killed and 265 are missing on the Chinese side of the border. Videos from the affected areas showed a powerful surge of muddy water, rocks and debris sweeping through the border region. Officials said that around 100 people have been rescued from different parts of the affected areas. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The Embassy of India in Beijing also issued a helpline number, which can also be contacted through WhatsApp. At least 50 of the Indians missing were pilgrims for the Kailash Mansarovar Yatra. Besides Indians, missing tourists are from more than 24 countries, including US, Malaysia, UK, South Africa, Australia and Netherlands. Komadi Parikh, Akashvani News, Delhi.
0: Bihar and Uttar Pradesh are on high alert after several districts in neighbouring Nepal were devastated by flash floods in the Gandak River system. NDRF has been placed on high alert along with the local administrations and relief rescue teams in the border areas. Union Home Minister Amit Shah spoke to Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the situation. Prime Minister Narendra Modi will address Khelo India dialogue through video conferencing today. The program is organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat. The dialogue will bring together sports, youth leadership, civic responsibility, volunteering, fitness and nation building on a common platform. A central feature of the program will be Yuva Samvad, where young participants will be invited to articulate their own ideas, perspectives and aspirations. Union Home Minister Amit Shah will visit Gujarat today. He will attend the 72nd convocation of Gujarat Vidyapeeth and chair a review meeting regarding preparations for the upcoming Olympic and Commonwealth Games in Ahmedabad. Union Home Minister Amit Shah will begin his day by inaugurating the newly constructed Hethni Haveli Lake at Dudhla in Amreli district, developed by the Hari Krishna Foundation. The minister is also scheduled to attend R.V. Patel Pharminova Awards 2026, organized by Troika Pharmaceuticals in Thal Tej, followed by a Lok Darbar at Bhopal in the Ghatlodia constituency to interact with residents. Meta has agreed to pay $18 billion and add stronger child safety measures to its Facebook and Instagram platforms. The move comes as part of a landmark legal settlement that ended a trial over teen social media addiction and settled claims filed by 47 states. If approved by the court, the deal will stop an avalanche of litigation by states against Meta, although the company still faces lawsuits from individuals and school districts across the US. And Team India is firmly in control and close to securing a 2-0 test series victory against Sri Lanka on the final day of the second test in Colombo today. India declared the first innings at 503 for 9 and bowled out Sri Lanka for 290. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेजती है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़

बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त

0: के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों और तत्काल सहायता में सहयोग कर रहा है। श्री गुतरश ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिले के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकी नागरिकों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सिक्किम के ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा विश्व ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: सिक्किम की शान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा का चयन दक्षिण कोरिया के चुनजोन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। ग्रैंड मास्टर सुब्बा सीनियर वर्ग में अंडर 60 पुरुष व्यक्तिगत पुमसे और टीम पुमसे में हिस्सा लेंगे। इस चयन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान निश्चित किया है। मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर है। दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने कल के स्कोर 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू किया। और अंत में मुख्य

क्या है, मैं हूँ नीतू आपके साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और आज क्योंकि गायक मुकेश की पुण्यतिथि है तो हर कोई उनके गाए गीतों की फरमाइश कर रहा है और हम आपकी भावनाएं पूरी तरह से समझते हैं। आप फैंस हैं और डेफिनेटली आपको उनके गाने सुनने हैं। एक आध गाने को छोड़कर मैं ज़्यादा गाने नहीं प्ले कर पाऊंगी क्योंकि उन पर एक स्पेशल प्रोग्राम जा रहा है। 1:10 पर आप सुनेंगे वो प्रोग्राम जो कि बिल्कुल गायक मुकेश पर ही आधारित है। तो आप उनके गीत उस प्रोग्राम में भरपूर सुनिए, पूरा इन्जॉय कीजिएगा उस प्रोग्राम को। दिल का मेल बॉक्स में आपकी पसंद के गीत भी शामिल हो रहे हैं। एक एक करके मैं आपको गाने सुनवाऊंगी, लेकिन पहले बता देती हूँ कि और जो लोग अभी अभी जिन्होंने इस प्रोग्राम को ट्यून इन किया है वो किस तरह से अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं, उसका एक जरिया है कि आप हमें मेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। एक आध गाना जो कि मैं मुकेश जी की आवाज़ का है वो मैं आपको सुनवा रही हूं। तो शुरुआत उसी गाने से कर रहे हैं। इस गाने की फरमाइश भेजी है धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान और पूजा परिहार ने।

पुकारने का तरीका, और ये जो फिल्म थी रानी रूपमती, इस फिल्म के सभी गाने कितने मशहूर हुए थे, और ख़ास तौर पर ये गाना तो लाजवाब है, आज तक लोग पसंद करते हैं और उस समय तो बहुत ही मशहूर हुआ था। अब अगला जो गाना है ना, वो भी बहुत ही मशहूर हुआ था अपने ज़माने में, हालांकि इस गाने को सुनकर आप इमेजिन नहीं कर पाते कि ये किस हीरो पर पिक्चराइज होगा, लेकिन शायद गाना सुनने के बाद जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता चलेगा। अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, इन सब की पसंद पर है एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से ये गाना। पहले आप गाना सुनिए और फिर बताइएगा कि किस पर पिक्चराइज्ड है ये गाना। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना जो है वो अभिनेता फिरोज खान पर पिक्चराइज है। बहुत सारे लोग शायद प्रदीप कुमार को इमेजिन कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, ये फिरोज खान पर पिक्चराइज है। दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप। एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी आती हूँ मैं फिर से, जिसमें और किस किस की फरमाइश पूरी होने वाली है ये तो ब्रेक के बाद ही आपको पता चलेगा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: सौ दशमलव एक आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, जिसमें अब बारी है अगले गाने की, जो कि है मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा, चाहत और सादिया की फरमाइश पर, नाइट इन लंदन फिल्म से।

बिल्कुल, आने वाला पल अब जाने ही को है। राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी और राघव की पसंद पर आपने अभी ये गाना सुना, और इसके बाद जो अब गाना आप सुनने जा रहे हैं वो दिग्दर्शन और कविता गौर की फरमाइश पर है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

एक दूजे के लिए फिल्म से ये गाना था। और आपको पता है कि ये फिल्म जब बन रही थी तो रति अग्निहोत्री और कमल हसन, जो कि फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, जो कि फिल्म में एक लव बर्ड बने हुए हैं, वो असल जिंदगी में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। सेट पर भी बस टेक देने के बाद एक इधर मुंह करके बैठ जाता था और एक उधर मुंह करके बैठ जाता, और फिल्म देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर की पसंद के इस गाने से दिल का मेल बॉक्स को समाप्त करते हैं। यहीं पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। इस गाने के बाद समाचार सुनिएगा, समाचारों के बाद नीतू फिर से हाजिर हो जाएगी लेकर तस्वीर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में आयोजित किया जाएगा। ये संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। वे गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और अहमदाबाद में होने वाले आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 भारतीय नागरिकों सहित कई लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। श्री सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि नेपाल में आई आपदा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल की सरकार के साथ लगातार राहत और बचाव कार्य के लिए समन्वित प्रयास कर रहा है। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके पहुंचने की उम्मीद है। अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। यह कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीका वासियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों का फायदा ले रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच कोलंबो में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका

ने दूसरी पारी में 89 रन की बढ़त बना ली है। भारत पांचवे और अंतिम दिन आज श्रीलंका की पारी को जल्द समाप्त करके निर्धारित लक्ष्य का पीछा करेगा। मौसम विभाग ने कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी आज इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तस्वीर शुरू हो गया है। नीतू है आपके साथ 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, और आज हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क की, जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये पार्क वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और बाघों, हाथियों और कई दूसरे वन्य जीवों को सुरक्षित आवास देता है। यानी आपको जंगल और जानवरों का साथ पसंद है तो आज का तस्वीर आप ही के लिए है।

0: आ रहा था। नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली।

वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल वो पान पान, मैं पसीना वो दाल दाल, मैं सुर में वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ।

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में फैली जैव विविधता की एक अनोखी मिसाल है। ये दो देशों के वन क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण इलाका है जो पर्यावरण के नजरिए से बहुत अहम है। इस वन क्षेत्र में घने जंगल, नदियां, घास के मैदान और पहाड़ी भूभाग मिलकर एक ऐसा कुदरती वातावरण बनाते हैं जहां वन्य जीवन को अपने सहज रूप में देखा जा सकता है। प्रकृति प्रेमी हैं अगर आप, या फिर आपको वन्य जीवन पसंद आता है, तो आपके लिए ये जो जगह है ये बिहार का एक खास आकर्षण है।

0: हम आज बात कर रहे हैं तस्वीर में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, और इसका नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये ऋषि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। आसपास के इलाकों में जो वाल्मीकि आश्रम जो है उसके आसपास के इलाके जो हैं वो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बाघ इस इलाके की सबसे प्रमुख पहचान है, लेकिन इनके अलावा तेंदुआ, हिरण, नील गाय, जंगली सुअर, भालू, गौर और बहुत सारे अन्य जीव भी ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे जीव जंतु देखकर शायद आपको और भी बहुत कुछ याद आ जाए। यहाँ पर नदी और जंगल वाले इलाकों में सांप, मगरमच्छ और कछुए जैसे सरीसृप भी पाए जाते हैं। इस पार्क में पक्षियों की 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जिससे कि ये जो पक्षियों को देखने वाले जो शौकीन होते हैं ना, बर्ड वॉचर्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है और उनको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ जाने के बाद। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसी तरह से प्लान कीजिए ताकि आप पक्षियों की जो पूरी दिनचर्या है उसको भी देख पाएँ, महसूस कर पाएँ।
1: उड़ चला

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर सुन रहे हैं आप और तस्वीर में बातें हो रही हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि सिर्फ वन्य जीवन के लिए नहीं बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। जंगलों के बीच बहती गंडक नदी, शांत जलधाराएं और हरियाली से घिरे रास्ते आपको एक अलग ही अनुभव देते हैं। इस इलाके से पंडई, मसान, हरहा और मनोर जैसी नदियां बहती हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और जीवन को बनाए रखती हैं। गंडक नदी में बोट सफारी, जंगल सफारी और प्रकृति भ्रमण के माध्यम से आप इस क्षेत्र की खूबसूरती को करीब से महसूस कर सकते हैं। और बोटिंग तो ना आप नदी हो, झील हो और एक बोट हो, बस

ये तो खूबसूरत गाना था ना। कहना ना कहना, बात को समझ जाना, कितना आसान लगता है गानों में, और जब आप रियल लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से अगर आप उलझें तो आपको पता चलता है कि सब कुछ कितना मुश्किल होता है रियल लाइफ में गानों के अलावा। खैर, तस्वीर की बात हो रही है, तस्वीर में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से वहाँ पर ना साल के जंगल हैं। इनके अलावा यहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं उनमें सागौन, बांस, सेमल, खैर और बैंत जो है वो शामिल हैं। वनस्पति में मौसमी बदलाव के कारण साल भर वन्य जीवों के लिए यहाँ पर भोजन और आश्रय की लगातार आपूर्ति बनी रहती है। घास के मैदान चरने वाले जानवरों के लिए सहायक होते हैं, जबकि जो जंगल हैं उन्हें सुरक्षा और प्रजनन की जगह देते हैं। यहाँ के कुछ इलाके मौसमी बाढ़ से वेटलैंड और घास के मैदान बने रहते हैं, जो जैव विविधता के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इस पार्क में नदी के किनारे वाले जंगल और दलदली इलाके भी हैं, जो पूरे इलाके की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं।

0: तारा।
1: जहाँ भी आप घूमने जाते हैं ना, वहाँ पे वाकई में उतना सब कुछ समय बिताइए कि आपको आपका जो दिल है वो भर जाए, क्योंकि बाद में आपको वो समा फिर से नहीं मिलने वाला है। और ऐसा ही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और क्योंकि ये बिहार में है तो इस इलाके की संस्कृति में बिहार और तराई क्षेत्र की लोक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। आसपास के गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी सरल जीवन शैली, लोक कला और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। और जब आप यहाँ की यात्रा करते हैं तो आप भी उस स्थानीय जीवन को समझ सकते हैं, वो मौका आपको मिल सकता है, स्थानीय भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं।

उड़ के भी जाना चाहें तो पहले मौसम का पता होना चाहिए ना कि वहाँ जाने का सबसे अच्छा मौसम जो है वो कौन सा है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान घूमने का सबसे बेस्ट मौसम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस दौरान सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा रहता है, ज़्यादा बारिश नहीं है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, और बर्फ़ तो खैर पड़ती नहीं है वहाँ पर, लेकिन हाँ आपको वन्य जीवों को देखने की जो संभावना है वो इस दौरान सबसे ज़्यादा होती है। गर्मियों में आप जाते हैं तो सफारी का अनुभव ले सकते हैं, लेकिन दिन के समय तापमान ना बहुत बढ़ सकता है, इसीलिए गर्मियों में थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं जंगल में घूमना। मॉनसून के दौरान कई क्षेत्र जो हैं वहाँ पर प्रवेश सीमित हो जाता है, यानी आपको एंट्री शायद ना मिले, इसीलिए जब आप यात्रा के लिए निकलें और तो पहले से ही जानकारी जुटा लीजिएगा ताकि आप इस इलाके का भरपूर मज़ा ले पाएँ और अच्छी तरह से इस इलाके को घूम

वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन बगहा है, जो देश के कई शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप सड़क से भी यहाँ पहुंच सकते हैं, यानी बाय रोड भी यहाँ जा सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डे हैं पटना में और कुशीनगर में, जहाँ से आगे सड़क मार्ग द्वारा ही आपको यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि कोई बस या टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी। बगहा से राष्ट्रीय उद्यान के सभी क्षेत्र जो हैं वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले। तस्वीर का समय यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा आपको पसंद आई होगी। तो नीतू चलती है, आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। एक और गाना जो अब आप तक पहुंच कर रहा है और मैं उसे आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, वो भी रफी साहब की आवाज में है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। आप इस गाने का लुत्फ उठाइए, मैं चलती हूँ।

0: रात में जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।

0: आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, हर बीतते दिन के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं और आवाज का ये रिश्ता हर दिन गहराता जाता है। बातों मुलाकातों का ये रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे, हमें आपका प्यार स्नेह और साथ ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो कार्यक्रम का करते हैं आगाज। आज के पिटारे में होंगी खूब सारी बातें, खूब सारी जानकारियां और होगा मनोरंजन भी, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के प्रश्न का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं एक प्रश्न, तो आज का प्रश्न जुड़ा है आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी से कि आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। जी हाँ, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है हमारी मेल आईडी पर जो कि है fmgoldga@gmail.com।

अनुपमा फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं दिन विशेष की। आज 27 अगस्त को श्री जगन्नाथ मंदिर में आज बलभद्र जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, वैदिक परंपराओं और उड़िया संस्कृति के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव भगवान बलभद्र के दिव्य अवतरण को स्मरण कराते हुए भक्तों को शक्ति, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान बलराम को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है और भगवान बलराम को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, शक्ति, कृषि और परिश्रम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से हल और कृषि से जुड़े उपकरणों की पूजा की जाती है। तो आज के इस शुभ दिन की आप सभी को मंगल कामना है। और श्रोताओं, आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है। ये दिन धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। ये सावन महीने का अंतिम दिन है और पूर्णिमा के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हम सभी जानते हैं कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दक्षिण भारत में से नारियली पूर्णिमा और अवनी अवितम के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से कजरी पूनम या कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा हमें रिश्तों में प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी को मजबूत करने का संदेश देती है। तो इस पावन अवसर पर अपने संबंधों में स्नेह बनाएं और आज के इस शुभ दिन की भी आपको शुभकामनाएं। और आज श्रोताओं, एक और खास दिन है, वो है वर्ल्ड लेक डे। हर साल 27 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है। विश्व झील दिवस का जो मनाने का उद्देश्य है वो झीलों के महत्व, उनके संरक्षण और जल संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झीलें केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि जैव विविधता, भूजल और पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। बढ़ता प्रदूषण, कचरा, अतिक्रमण झीलों के अस्तित्व के लिए चुनौती बन रहे हैं और ऐसे में झीलों में कूड़ा ना डालना, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना और स्थानीय स्तर पर उनके संरक्षण में सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो झीलों को बचाएं, जल बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित बनाएं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी झील के उस पार। और दोस्तों, हर शख्स किसी ना किसी हुनर का हुनरमंद होता है, ये हम सभी जानते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा या कौशल होता है, और सही दिशा, प्रशिक्षण और नए अवसर उस हुनर के जरिए स्वरोजगार, उद्यमिता के नए रास्ते खोल सकते हैं। आज ऐसे बहुत से हुनरमंद लोग हैं जिन्होंने कड़ी लगन और मेहनत के जरिए ये साबित कर दिखाया कि ऊंचा उड़ने के लिए सिर्फ पंख काफी नहीं, बल्कि हिम्मत, ताकत और विश्वास भी जरूरी है। तो बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपना खाना बनाने के एक छोटे से कौशल को एक नई पहचान देकर अपना स्वयं का खाद्य उद्यम स्थापित किया। मणिपुर की यांगमिला जिमिक, जिनका जीवन संघर्ष की कहानी बयां करता है। एकल मां के रूप में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए यांगमिला ने स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, और 2015 में मात्र 500 रुपए के छोटे से निवेश से उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करते हुए घर पर ही आंवले की कैंडी और जैविक अचार बनाना शुरू किया। उनके उत्पाद स्थानीय स्तर पर खूब लोकप्रिय हुए। आज उनकी कंपनी 35 से ज्यादा प्रकार के जैविक उत्पाद बेचती है और स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी देती है, और 100 से अधिक किसानों से फल प्राप्त करती है। यानी कि उन्होंने किसानों को भी काम देना शुरू कर दिया है, उनकी खेती से उत्पादित होने वाले फलों को अपने व्यवसाय से वो जोड़ रही हैं, ले रही हैं। तो देखा, छोटी सी कोशिश कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। तो अगर आप में भी किसी तरह का हुनर है तो बस जुट जाइए उस हुनर को नई पहचान देने के लिए, क्योंकि आज अनेक रास्ते हैं आपके हुनर को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए।

ये थे भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर और फिल्म थी सितारा। और श्रोताओं, जो हमने प्रश्न पूछा था उसके जवाब हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले जवाब आया है हमारे पास नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी है एक दूसरे को समझना। अगर कभी अपना मूड ऑफ है तो सामने वाले को धैर्य रखना चाहिए, कभी उनका मूड खराब है तो खुद को संयम रखना चाहिए। भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती है। रिश्तों में जो ये एडजस्टमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी बात कही नवीन जी आपने। और अगला जो जवाब हमारे पास आया है वो योगराज सहगल जी का आया है। वो दिल्ली बुराड़ी से लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा रिश्तों को बनाने के लिए उन रिश्तों को समय देना और बातचीत करना ही अहम भूमिका निभाता है। भाई वाकई ही, अगर आप रिश्तों को समय नहीं देते या उनमें संवाद की कहीं कमी रख लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं दूरियां बनने लगती है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत अहम बात है जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। अफरोज शेख जी लिख रहे हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है बड़ों का ध्यान रखना। भाई वाह, और बड़ों का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ ही अपना भी ध्यान रखना और उन सबका ध्यान रखना जो आपके अपने लोग हैं, यानी कि आपके जो घर के सदस्य हैं, सबका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है रिश्तों को संभालने और सहेजने के लिए। चरणदास जी कहते हैं कि मोबाइल से नहीं, आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, प्यार बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। और वो ज़माना भी देखा है। वो कहते हैं कि पूरी रात रिश्तेदारों के साथ बात करते थे, बस में चढ़ाने आते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। आज इंसान भौतिक वस्तुओं के पीछे ज़्यादा भाग रहा है और अपने अंदर की संवेदनाओं को महसूस करना होगा। राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी, ये हिसार हरियाणा से लिख रहे हैं। तो देखिए, बात तो सही है ही है, क्योंकि डिजिटल दौर में हम देखते हैं कि हर आदमी अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठा है। तो मोबाइल को थोड़ा सा छोड़कर अपनों के साथ बात करना, संवाद करना बहुत जरूरी है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक टिकाऊ जीवन शैली की। जब हम टिकाऊ जीवन शैली के बारे में सोचते हैं तो श्रोताओं, देखिए, मन में ख्याल आता है कि जीवन में बड़े बदलाव करने होंगे, आदतों को बदलना पड़ेगा या फिर लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यह सब सोचकर लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आपकी हमारी उन छोटी छोटी आदतों से जुड़ा है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकती है। ज़रूरत है बस एक जिम्मेदारी की, जैसे कमरे से या लिफ्ट से बाहर निकलते समय लाइट फैन को बंद करना ना भूलें। ज़रूरत नहीं है तो पानी को व्यर्थ ना बहने दें। भाई ये हम सभी जानते हैं, कभी कभी थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शॉपिंग पर जा रहे हैं तो कपड़े का थैला घर से ही लेकर जाएं। आज भले ही पेपर बैग्स मिलने लगे हैं, पर कपड़े का जो बैग होता है ना, वो वॉशेबल भी होता है और टिकाऊ भी होता है। बात अगर खाने की करें तो खाना खाते समय उतनी ही मात्रा में भोजन लें जितनी वास्तव में आपको ज़रूरत है, यानी कि आप अपनी प्लेट को भर ना लें, जितनी ज़रूरत है आप उतना लें। और अगर भूख है तो आप सेकंड फिलिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बार ज़्यादा लेने से होता है क्या है कि कभी कुछ अच्छा नहीं लगा या पेट भर गया तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसकी बर्बादी होती है, तो उसका ध्यान रखना है। और बात खरीदारी की करें तो ये भी हमारी टिकाऊ जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। हर चीज़ केवल इसलिए खरीदना ज़रूरी नहीं है कि वो नई है, ज़रूरत के अनुसार खरीदना, टिकाऊ वस्तुओं को प्राथमिकता देना और जिन चीज़ों का उपयोग हो सकता है उन्हें तुरंत कचरे में ना डालें, यही तो संसाधनों की बचत करता है। तो भैया, ऐसे में कम उपयोग, दोबारा उपयोग और पुनर्चक्रण जैसी आदतों को शामिल किया जा सकता है। पुरानी बोतल, डिब्बे या कपड़े कई बार उपयोग में आ सकते हैं, इससे कचरा भी कम होगा और अनावश्यक खरीदारी भी। तो आज से ही ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएं, अच्छी आदतें अपनाएं और ऐसी जीवन शैली का निर्माण करें जो हमारे लिए भी बेहतर हो और हमारी प्रकृति के लिए भी। ये वाकई एक समझदार तरीका है जीवन को बेहतर।

ज़मीन आसमान। इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और जो श्रोता थोड़ा सा लेट जुड़े हैं कार्यक्रम घर आंगन से, उनके लिए मैं प्रश्न आज का जो है एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, और मुझे रहेगा आपके सवालों, इस सवाल पर आपके जवाबों का इंतज़ार। तो जो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। जी हाँ, आज की भागदौड़ में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपको हमें इसका जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर। और इसी दौरान हमारे पास एक जवाब आ चुका है, वो हमारे को लिख रहे हैं गौरीशंकर जी नांगलोई से। वो कहते हैं कि प्रतिभा बेटा राम राम, अगर इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे समय में इतने साधन नहीं थे, फिर भी जो खुशी मिलती थी वो आज के समय में नहीं है। लोग आपस में मिलकर मन की बात करते थे, शरीर की बीमारियां भी दूर होती थी, इतनी खुशी मिलती थी। तो शुक्रिया गौरीशंकर जी। और देखिए, बात सही भी है कि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है ना आज के जीवन में कि समय नहीं है, तो थोड़ा सा हमें भी समझने की ज़रूरत है, अपने लिए अपनों के लिए वक्त निकालें। बिल्कुल। और अब चलते हैं बचपन की ओर। तो अगर हम बचपन की यादों में जाते हैं ना, तो चिट्ठी, पोस्टकार्ड, स्पीड पोस्ट जैसे कुछ नाम याद आते हैं, और समय के साथ साथ जो है ना इनकी यादें वो धुंधली पड़ने लगी है, क्योंकि ज़माना डिजिटल दौर में जो आप पहुँचाए, अब डिजिटल मैसेज और ईमेल आ गए हैं और हमारा पोस्ट बॉक्स खाली रहने लगा है। अब हम अपना चैट बॉक्स और मैसेज बॉक्स देखने लगे हैं, पर डाक सेवा तो भाई अडिग थी और अडिग रही। समय के साथ साथ हमारी डाक सेवा ने कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया। आज डाक घर की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में भारतीय डाक ने डाक सेवा ऐप को विकसित किया है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को डाकघर से जुड़ी जरूरी जानकारी और कई सेवाएं मोबाइल फोन के माध्यम से उपलब्ध कराना है। ऐप को डाक विभाग के सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी कि CEPT ने विकसित किया है, और डाक सेवा ऐप के जरिए उपभोक्ता अपने डाक, लेख, स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पार्सल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर यानी कि EMO जैसी सेवाओं की स्थिति मोबाइल पर देख सकते हैं, और इसके अलावा नज़दीकी डाकघर की जानकारी हासिल करने, पोस्टेज यानी डाक शुल्क की गणना करने और शिकायत दर्ज कर उसकी स्थिति देखने जैसी सुविधाएं भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की उपलब्ध सुविधाओं में शिकायत प्रबंधन, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और बचत योजनाओं से संबंधित ब्याज कैलकुलेटर भी शामिल है। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है, वो ये है कि भाषा अवरोध को दूर करने के लिए जो ये ऐप है वो भाषणी प्लेटफॉर्म के जरिए 23 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। है ना मजेदार बात। तो कुल मिलाकर डाक सेवा ऐप ने डाकघर की कई सूचनात्मक और सेवा संबंधी सुविधाओं को स्मार्टफोन तक पहुंचाने का रास्ता आसान कर दिया है। पार्सल की स्थिति देखने से लेकर नज़दीकी डाकघर खोजने, शुल्क का अनुमान लगाने और शिकायत दर्ज करने तक कई काम अब मोबाइल के जरिए किए जा सकते हैं। इससे आम नागरिकों, छात्रों, छोटे कारोबारियों और नियमित डाक उपयोगकर्ताओं को समय बचाने में मदद मिल सकती है। तो अब आप अपना डाकिया खुद बनकर पोस्ट ऑफिस के काम स्वयं अपने मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आए दिन बहार के। और श्रोताओं, जब हम दिल्ली मेट्रो में चढ़ते हैं तो हम सबसे पहले सुनते हैं कि दिल्ली मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। ये लाइन आप सभी और हम सभी मेट्रो के सफ़र के दौरान सुनते हैं। वाकई दिल्ली मेट्रो का सफ़र आरामदायक होने के साथ साथ हमारे समय को भी बचाता है। हम सभी आभारी हैं इस सेवा के, जिसने लंबे ट्रैफिक जैम को कम करने की कोशिश की, जिसने हमारी यात्रा को सुविधाजनक बनाया। आज दिल्ली मेट्रो सेवा दुनिया के बेहतरीन नेटवर्क में शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के अनुसार 2026 में दिल्ली मेट्रो ने 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी दर्ज की है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में ट्रेन के अपने निर्धारित समय 59 सेकंड से ज़्यादा देरी होने पर ही उसे विलंब माना जाता है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो प्रणालियों

में 2 से 5 मिनट की देरी को सामान्य माना जाता है। इस सख्त मानक के बावजूद दिल्ली ने बड़े बड़े देशों की कई बड़ी मेट्रो सेवाओं को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अब 416.5 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, जिसमें 303 से ज्यादा स्टेशन हैं। व्यस्त कॉरिडोर पर ट्रेनों के बीच का समय घटाकर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड कर दिया गया है। इससे लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को संभालने में मदद मिल रही है। आज नेटवर्क का लगभग 29% हिस्सा अब अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन यानी ड्राइवरलेस तकनीक से संचालित होता है। श्रोताओं, दिल्ली मेट्रो ने 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के बीच केवल 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग और 6 स्टेशनों के साथ शुरुआत की थी। आज ये भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है और इसका नेटवर्क 416.5 किलोमीटर, 12 लाइनों और 303 स्टेशनों तक फैल गया है। इसमें 31 इंटरचेंज स्टेशन हैं जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। पहले रोजाना करीब 82,000 यात्री यात्राएं होती थी, वहीं आज औसतन 64.06 लाख यात्री यात्राएं हो रही हैं। समय की पाबंदी, सुरक्षा और आधुनिक तकनीक के दम पर आज दिल्ली मेट्रो ने दुनिया की प्रमुख शहरी रेल सेवा में अपनी अलग पहचान बना ली है। और जानते हैं कि खास बात यह है कि आप भी मेट्रो रेल सेवा की प्रगति का हिस्सा हैं, क्योंकि मेट्रो के द्वारा रोजाना अपना सफर एक आराम, सुकून और रफ्तार के साथ आप समय पर जो कर रहे हैं

सवेरे वाली गाड़ी। अभी आप इस फिल्म से गीत सुन रहे थे, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, हमारे प्रश्न का जवाब आ चुका है। रतलाम मध्य प्रदेश से भंवर धनगर लिख रहे हैं कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में रिश्तों को मजबूत रखने के लिए सबसे

जरूरी है समय, विश्वास और संवाद। हर रिश्ता बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से मजबूत होता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना, गलती होने पर माफ करना, मुश्किल समय में साथ खड़े रहना और बिना मतलब के हाल पूछ लेना। भाई वाकई बहुत सही बात कही आपने। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी सोनीपत से लिख रहे हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते बनाए रखने का मूल मंत्र है कि किसी से कड़वा नहीं बोलो। भाई रिश्ते कड़वाहट अगर होती है तो कड़वा बोलो तो कड़वाहट आ जाती है रिश्तों में, तो उसका ध्यान रखना। और सबसे बड़ी सीख वो ये कहते हैं कि अपनों से हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने।

श्रोताओं, घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं आपसे लूं इजाज़त, लेकिन आपका साथ हमारे लिए हौसला है और हमारे लिए सकारात्मकता लेकर आता है। तो इस वादे के साथ फिर किसी और दिन इसी समय पर मुलाकात होगी कार्यक्रम घर आंगन में। तो आज के इस सफर में मुझे यानी प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए

0: श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में मदद करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेल और प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री शाह एक दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमरेली जिले में दुधाला के पंचगंगा तीर्थ में नवनिर्मित हेतनी हवेली झील का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया है कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिहार में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9 टीम और उत्तर प्रदेश में एक टीम तैनात की गई है। नई दिल्ली में आज बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर क्षेत्र में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी तक बाढ़ का व्यापक असर नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इस्पात विनिर्माण में भारत जापान साझेदारी बढ़ाने के लिए निवेशकों से चर्चा की। ओसाका में आरओएचएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने बैठक की। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 127 रन की बढ़त बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 164 अंक गिरकर 77,309 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. He said that sports is not limited merely to winning medals.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक गायक की बात करने वाली हूँ। एक ऐसी आवाज जिन्हें क्रिकेट के मैदान पर सुना जाता था ताकि खिलाड़ी अच्छा खेले। हाँ चलो पहले आवाज़ सुनाती हूँ आपको, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे किन की बात होने वाली है कलाकार बेमिसाल में।

आपने बिल्कुल अभी सुन लिया, और इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उन्हें, और कितनी तारीफ की जाए उनकी आवाज़ की, बहुत ज़्यादा तारीफ। मुझे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, मुकेश की आवाज़ कुछ ऐसी है। दिल्ली में जन्मे थे मुकेश 22 जुलाई 1923 को। उनका पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। मुकेश दिखने में भी काफ़ी सुंदर थे। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि मुकेश कई फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं, लेकिन उनके जो फिल्मों तक पहुंचने की कहानी है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट। थोड़ा सा बताती हूँ आपको, उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊंगी। उनकी जो बहन है, उनकी शादी में उनके मुंबई जाने की जो राह है वो बनी थी, कैसे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आनंद फिल्म का ये गाना, कहीं ना जाना।

मुकेश ने एक शादी से रास्ता ढूंढा अपने मुंबई जाने का। असल में रास्ता उन्होंने नहीं ढूंढा, बल्कि उनके लिए किसी और ने ढूंढा। कहानी कुछ इस तरह से है। मुकेश दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। मंदिर मार्ग एक जगह है दिल्ली में, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। ये यहाँ पर मुकेश का स्कूल था। उनके क्लासमेट थे संगीतकार रोशन। दोस्तों, मुकेश उस वक्त स्कूल में भी गायकी वाले प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, तो शौक वहीं से शुरू हो गया। दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी में नौकरी ज्वाइन कर ली और नौकरी में रहते हुए अपनी गायकी के ख्वाब पूरे करने में लग गए। वो रिकॉर्डिंग किया करते और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखने लगे। मुकेश का जो जीवन है वो तब बदला जब उनकी बहन की शादी थी और वहाँ उनके दूर के रिश्तेदार उस जमाने के बहुत ही मशहूर कलाकार मोतीलाल आए। मुकेश ने फेरों के बीच में जो वक्त होता है ना, काफ़ी लंबा दौर चलता है फेरों का, तो बीच में जो समय मिलता है उसमें गाना गाया। गाना मोतीलाल ने सुना और मुकेश को मुंबई आने का न्योता दिया। मुकेश वहाँ पहुँचे तो मोतीलाल ने उनके लिए पंडित जगन्नाथ की म्यूज़िक क्लासेस का इंतज़ाम किया, क्योंकि मुकेश ने सिंगिंग के लिए कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं ली थी। लेकिन जाते ही उनको काम नहीं मिला। उस बीच में कुछ और भी किया उन्होंने, क्या किया बताऊंगी आपको। उससे पहले पत्थर की सनम फिल्म का ये गाना आपको कहीं नहीं है जाना।

आनंद फिल्म का ये गाना है जो मुकेश की आवाज़ में आपने सुना। संगीतकार हैं सलिल चौधरी। दोस्तों, बातें हो रही थी मुकेश के करियर के बारे में, कैसे

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का एक गाना आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। और दोस्तों, मुकेश के बारे में एक ऐसी बात जो शायद आप ना जानते हो बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं। आपको यहीं रहना है मेरे साथ। हाँ,
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज बातें हो रही हैं मुकेश की।

बहुत ही मशहूर फिल्म रही है कटी पतंग। इसके शायद ही कोई इसका कोई शायद ही ऐसा गाना हो जो आपको पसंद ना हो, और ये गाना तो बहुत ही ख़ास है। मुकेश की आवाज़ में न जाने क्या जादू है उनकी आवाज़ में। अक्सर सैड सॉन्ग सुनने के बाद हम सैड ही हो जाते हैं, लेकिन मुकेश की जो आवाज़ है वो एक फ्रेशनेस लेकर आती है। ऐसा लगता है कि उनके गाने सुनते सुनते हम अपने गम को भूल ही जाते हैं और एक अच्छी सी मुस्कान जो है ना वो चेहरे पर आ जाती है। मैं तो ख़ास तौर से अगर मुझे कुछ सैड फील होता है तो मुकेश के गाने या उनके जो हैप्पी वाले गाने हैं वो भी सुनती हूँ तो भी अच्छा लगता है। तो बातें हो रही थी मुकेश की फिल्म इंडस्ट्री में आने की। म्यूज़िक की ट्रेनिंग के दौरान मुकेश को एक्टिंग के कई ऑफ़र मिले, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि मुकेश ने एक्टिंग भी की है। जी हाँ, उनका एक्टिंग और सिंगिंग करियर एक साथ ही शुरू हुआ। साल 1941 में फिल्म निर्दोष में उन्होंने अभिनय किया और गाने भी गाए। उनके पहले गीत के बोल थे दिल ही बुझा हुआ हो तो। मुकेश का पहला हिट गाना था दिल जलता है तो जलने दो, जो उन्होंने मोतीलाल के साथ गाया था फिल्म पहली नज़र में के लिए। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो गाना बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आप लोग बहुत मैसेजेस करते हैं जिस दिन भी मुकेश का बर्थडे होता है कि ये गाना सुनाइए, तो संगम फिल्म का ये गाना है।

संगम फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। संगीतकार शंकर जय किशन ने इस गाने को तैयार किया था। दोस्तों, मुकेश के करियर में संगीतकार नौशाद का भी बहुत ही अहम रोल माना जाता है। मुकेश केएल सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो कुछ असर उनका शुरुआती दिनों में सहगल साहब का जो असर है वो मुकेश की आवाज़ में सुनाई देता था। अक्सर तो धोखा भी हो जाता था कि मुकेश हैं या फिर सहगल साहब हैं। मुकेश को जब नौशाद साहब के साथ काम करने का मौका मिला तो नौशाद साहब ने उन्हें अपनी खुद की आवाज़ से रूबरू करवाया, और उस दौर में जब नौशाद ने अपनी खुद की आवाज़ में गाना शुरू किया तो वो बिल्कुल अलग थी। इस बदलाव की वजह से मुकेश यूं कहिए कि एक यूनिक आवाज़ बनकर उभरे। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना दोनों के साथ के नाम, नौशाद और मुकेश के नाम।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका संगीत दिया था नौशाद साहब ने, फिल्म का नाम है साथ ही, आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। और दोस्तों, मुकेश और शंकर जयकिशन की जोड़ी भी बहुत ही खूब रही। मुकेश ने सबसे ज़्यादा लगभग 133 गीत शंकर जयकिशन के साथ ही गाए हैं। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी के साथ 99 गाने रिकॉर्ड किए। शंकर जयकिशन ने मुकेश को हर तरह के गाने दिए, चाहे दर्द भरे हों या रोमांटिक हों। मुकेश को 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले बेस्ट सिंगर कैटेगरी में, जिनमें से 3 जो गाने हैं वो शंकर जयकिशन के साथ ही रिकॉर्ड हुए। एक बहुत ही बेहतरीन बेमिसाल साथ रहा है मुकेश और शंकर जयकिशन का।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना आवारा फिल्म से। और दोस्तों, मुकेश की आवाज के दीवानों की बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक कहानी है भारतीय क्रिकेटर भगवंत चंद्रशेखर की। भगवंत एक जाने माने स्पिन बॉलर थे और मुकेश के बहुत बड़े वाले फैन थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवंत जब भी डाउन डाउन फील किया करते थे तो मुकेश का गाना सुनते और तुरंत जोश में आ जाते। यहां तक कि कभी कभी उनके साथी खिलाड़ी मैदान पर ही उन्हें मुकेश की आवाज सुना दिया करते थे ताकि वो अच्छी तरह से बॉलिंग करें। मुकेश ने अपने समकालीन गायकों के मुकाबले दोस्तों बहुत ही कम गीत गाए हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद किया करते थे। चुनिंदा गाने गाए और जो भी गाए कमाल ही गाए। 1974 में मुकेश को नेशनल अवार्ड मिला फिल्म रजनीगंधा के लिए। ये मेहनत और समर्पण का फल था उनके लिए।

फिलहाल तो मन दौड़ रहा है घड़ी की सुइयों के साथ, क्योंकि वक्त हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का। लेकिन आप बने रहें हमारे साथ, उर्दू में खबरें आएंगी, उसके बाद 2:30 पर मैं फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए संगीत.com। बने रहें हमारे साथ।

आदाब, ये आकाशवाणी है जमीन। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के क़याम के तई अहद बस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहती साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुजाकिरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। और

0: के क्रिकेट में कोलंबो में जारी दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने भारत पर 146 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का जदीद इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकज़ तक पूरे मुल्क में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर तआवुन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहद करने का एक मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर जिले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सयाह भी शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल 3 जिलों में बोडेक्षी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू हुआ यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पन बिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल की कुदरती आफात से निमटने वाली कौमी अथॉरिटी ने बताया कि नेपाल तिब्बत सरहद पर लेंडे नदी के तुगयानी में रसुआ जिले के तिमूर में बोतेकुशी होता हुआ तिरुशी दरिया में यह सैलाब दाखिल हुआ। इसके बाद ये दरिया के रास्ते दीगर जिलों में दाखिल हो गया। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए हैं जबकि 265 लापता हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचा लिया गया है। इनमें 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जेर इलाज हैं। इधर वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर अजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन साजो सामान और जरूरी दवाएं रवाना की थीं। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। बीजिंग में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम अज कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सयाह लापता बताए जाते हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स शामिल हैं। इधर कुदरती आफात से निमटने की कौमी फोर्स NDRF ने आज कहा कि नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। ताहम बिहार और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल के साथ सूरतहाल पर लगातार निगाह रखी जा रही है। NDRF के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों रियासतों में NDRF की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 11 टीमों को उत्तर प्रदेश और 9 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। ये टीमें सैलाब या पानी भर जाने की सूरत में इनखिला, राहत और बचाव कार्रवाईयों के लिए तैयार हैं।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का

0: ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
1: पड़ोसी मुल्क नेपाल के कई जिलों में तबाहकुन सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। बिहार हुकूमत ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक नदी से मुत्तसिल जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने नेपाल में फंसे लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। भारत 18वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद की जाएगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों और शराकतदार और मधु मुमालिक के लीडरान शिरकत करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत की थीम लचक के लिए तामीर, इख्तरा, तावुन और पायदारी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंसानियत पहले के जज्बे पर मबनी अवाम मरकूज विजन की अक्कासी होती है। इसके अलावा लीडरान ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मुश्तरक तरजीहात पर तावुन को बढ़ाने पर अपने तबादले ख्याल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते और इतवार के रोज शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रर वक्त की हद नहीं है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इक़्तिसादी मुश्किलात की जानिब इशारा किया। इस दौरान खतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भारत के खिलाफ 146 रन की सबकत बना ली है। श्रीलंका की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 8 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के क़याम के तई अहदबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहती साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second and final test at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है. खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना.
2: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports.
3: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है. और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है. हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी.
2: The Prime Minister expressed happiness that today sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors. He said this Khelo India Samvad is not merely a program for discussing sports, but it is a platform for dialogue where every single idea can give a new direction to the nation's sports vision.
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले.
2: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment.
4: India's sports ecosystem is not limited to infrastructure and medals. From connecting millions of young people through the Fit India movement to initiatives promoting fitness and cycling, you have transformed fitness into a lifestyle and sports into a national movement. Through the National Sports Governance Act, efforts to strengthen transparency, accountability and fair opportunities are aimed at ensuring that every talented individual gets an equal platform to prove their abilities.
2: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today emphasized that India must evolve its sporting traditions into a vibrant sports culture. Addressing students participating in the Khelo India dialogue at Hindu College in New Delhi, Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is actively developing a strong sporting ecosystem. Nearly 300 Indian tourists are among thousands who are reportedly missing after a flash flood swept through parts of the Nepal-Tibet border. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal today said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in the floods. Meanwhile, Nepal police today said the death toll rose to 162 in the flash flood on the Bhotekoshi River that wreaked havoc across three districts yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. The Nepal Foreign Minister told the Parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 a.m. local time yesterday, and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the massive flood entered the Trishuli River through the Bhotegoshi in Timore, a border town in Rasuwa district, due to the rock slide and swelling of the Lende River, situated along the Nepal-Tibet border. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and assured him of all possible humanitarian assistance. India has dispatched the second tranche of 37.5 tons of humanitarian assistance and disaster relief material, medicines and food packets for Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar informed that the second flight has taken off carrying relief materials. India had dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said urgent efforts are underway to ascertain the status and well-being of all Indians in the flood-affected areas of Nepal. Dr. Jaishankar today held a review meeting in New Delhi with the Foreign Secretary in the External Affairs Ministry and India's ambassadors to Kathmandu and Beijing on the flood situation in Nepal. In a social media post, Dr. Jaishankar said the Ministry of External Affairs is coordinating with various ministries, state governments, tour operators and project authorities in this regard. He said the government is working closely with the Nepali side to extend relief assistance. The National Disaster Response Force NDRF today said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh.
5: In Uttar Pradesh, the Kushinagar area near Gorakhpur was affected. So one team was diverted there. There was also an important input from the CWC regarding the impact of the water discharge from the Valmiki Nagar barrage on the Gandak River. The flow of water discharge is being monitored. So far, the impact of the flood on the ground has not been significant. The state governments have deployed the required resources and personnel in both states, and the situation is being closely monitored.
2: The teams are prepared to undertake evacuation, relief and rescue operations in case of flooding or waterlogging. In Uttar Pradesh, an instructor pilot and a trainee pilot were killed after a training aircraft crashed in a field near the banks of the Ganga in Kanpur today. The aircraft was a twin-engine four-seater plane belonging to Garg Aviation, which operates a flying training school from the civil aerodrome in Kanpur. The aircraft crashed during a training flight. Rescue teams and local authorities reached the spot soon after the incident and launched relief and rescue operations. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana will complete 12 years tomorrow, marking a significant milestone in transforming India's financial inclusion landscape. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on the 28th of August 2014. The Finance Ministry said under the scheme, more than 59 crore accounts have been opened so far, with total deposits amounting to 3,17,000 crore rupees. The BJP has accused the AAP government in Punjab of not delivering on its promise of clearing Dearness Allowance, DA, to its government employees. Addressing media in New Delhi, BJP spokesperson Pradeep Bhandari said over 3 lakh state government employees are protesting as their DA has not been cleared so far. Mr. Bhandari also raised the issue of vacant teaching posts, including in colleges and higher education. He alleged that AAP-led government in Punjab is involved in corruption, due to which the per capita income is declining in the state. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. IMD also predicted heavy rainfall over Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. Meanwhile, Heavy to very heavy rainfall is expected at isolated places over Odisha on Saturday and Sunday. The weather agency further forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over the Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. U.S. President Donald Trump has said he has no fixed timeline for Iran.

0: ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
0: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है, हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है, फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयंसेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450

0: करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई हैं, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार

पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, कभी कभी ना आशा ताई की बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है, तो आज मैंने सोचा कि संगीत.com में ज़्यादा से ज़्यादा गाने उनके आपको सुनाऊँ, क्योंकि आप भी तो मेरी तरह से उनके फ़ैन होंगे ना। तो ये वाला गाना कैसा रहेगा ज़रा बताइए। तो

यादों की बारात फिल्म का ये बहुत ही मशहूर गाना है, जिसे आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। संगीत आर डी बर्मन का है और गीत के जो बोल हैं वो लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस गाने में सबसे ज्यादा जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ है वो है गिटार, और गाने की शुरुआत में आपने सुना ही होगा गिटार की आवाज को, इसी से इस गाने की शुरुआत भी हुई है और एंड में भी ये बजा है। दोस्तों, गिटार को भूपिंदर सिंह ने बजाया था इस गाने में, और इसके बाद अच्छा खासा क्रेज बढ़ गया था युवाओं में गिटार को लेकर। वैसे ये जो गाना है ये आशा भोसले के पसंदीदा गानों में से एक है। वैसे दोस्तों, कितना मुश्किल होता है ना आशा भोसले बनना, उनके जैसा सब्र पाना। जी हाँ, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा सब्र किया है अपनी

जिंदगी में, खास तौर पर जो करियर का शुरुआती दौर था उनका, वो संघर्षों से भरा हुआ था। एक ऐसा वक्त भी था जब उनके संघर्ष को साथ मिला किशोरदा का। एक कहानी है इंटरेस्टिंग सी जो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले दोनों का गाना।

0: ये वादा रहा फिल्म का टाइटल ट्रैक आपने सुना बिल्कुल अभी, किशोरदा और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। और दोस्तों ये उन दिनों की बात है जब आशा जी और किशोरदा दोनों ही करियर में संघर्ष वाले दौर से गुजर रहे थे। इत्तेफाक से दोनों एक ड्यूएट के लिए ऑडिशन देने गए और रिकॉर्डिस्ट ने दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। एक बड़े न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में आशा जी ने ये खुद बताया कि रिजेक्शन के बाद किशोरदा थोड़े से निराश हो गए थे, लेकिन जैसे कि उनकी आदत थी मजाक करने की, तो मजाक मजाक में बोले आशा जी से कि अगर फिल्मों में जगह नहीं मिली ना तो फिर स्ट्रीट सिंगर बन जाएंगे, यानी कि गली गली में गाएंगे। हालांकि दोनों ने बहुत मेहनत की आगे चलकर और आज तक उनके जो गाए हुए गाने हैं वो गली गली क्या घर घर में सुने जाते हैं, है कि नहीं?
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।

0: ऐसा गाना अगर बज रहा हो और हम कहीं फिसलने वाले, तो मैं तो इस गाने को सुनते सुनते फिसलना पसंद करूंगी। हाँ किशोर दा और आशा भोसले की आवाज में नमक हलाल फिल्म का ये गाना आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी। और ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं सिक्कों की। जी हाँ, सिक्कों से सिर्फ सामान ही नहीं खरीदा जाता बल्कि म्यूजिक भी बनाया जाता है। कैसा म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक, करूंगी बातें आपसे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के

OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप संगीत.com में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि सिक्कों से सिर्फ जेबें नहीं भरी जाती, सिर्फ सामान ही नहीं खरीदे जाते बल्कि संगीत भी बनाया जाता है। दोस्तों, उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी आज की तरह से एडवांस नहीं थी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत ही मेहनत से धुने बनाया करते थे। कुछ आवाज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि वाकई में ऐसे बनी है। एक गाना है किशोरदा की आवाज़ में जिसमें संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और आप तो जानते हैं कि कल्याण जी आनंद जी को न्यू साउंड इफेक्ट्स का जादूगर भी कहा जाता है। कई ऐसे धुने रही हैं जो पहली बार यही जोड़ी लेकर आई। उस गाने की बात करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, किशोरदा के इस गाने में सिक्कों की खनक और पानी का इस्तेमाल हुआ है झंझनाहट का इफेक्ट पैदा करने के लिए। पहले गाना सुनाती हूँ ताकि आपको फील आए, आप सोचें कौन सी वाली आवाज़ है।

दोस्तों सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये जो गाना है किशोरदा की आवाज़ में आपने सुना, और मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। तो इस गाने में जो बीच बीच में झनझन की आवाज़ आती है वो कल्याण जी आनंद जी ने इजाद की थी, और वो चाहते थे कि बैकग्राउंड में गाने की लय के साथ कोई बहुत ही कोमल सी जादुई सी झनझनाहट की आवाज़ होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, स्टूडियो में कांच के गहरे बर्तन में पानी भरा और एक म्यूजिशियन को अपनी टीम के माइक के साथ बिल्कुल पास में बिठा दिया, और फिर तुरंत आवाज़ रिकॉर्ड हो सके इसके लिए वो बिल्कुल एकदम अलर्ट हो गए। पहले ऊपर से तांबे के सिक्के पानी में गिराते थे, छन करके जो आवाज़ आती थी वो झट से रिकॉर्ड हो जाती थी।

तो कुछ ऐसे वो लोग काम किया करते थे उस जमाने में जब मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग और एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। कितने मेहनती लोग थे।

देखिए मैं चाहती थी पूरा गाना आपको सुनाऊं, लेकिन क्या करूं, घड़ी कहती है कि चली जाओ, तो मैं जा रही हूं। सीमा वर्मा जी आएंगी थोड़ी देर में, आप अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM गोल्ड। फिलहाल मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम खेलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा रहा है तथा सभी खिलाड़ियों को समान अवसर देने में सहायता करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया। देश भर में हुए इस कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र

0: शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। नई दिल्ली में हिंदू कॉलेज में आयोजित खेलो इंडिया डायलॉग में भाग ले रहे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
1: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फक्र की बात है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एनेक्स में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह मुंधेला ने बताया कि दोनों राज्यों में NDRF की 20 टीम तैनात की गई हैं, जिनमें से 9 बिहार और 11 उत्तर प्रदेश में हैं। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने 170 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उसकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करने के बाद फॉलो ऑन दिया था। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports. The Prime Minister expressed happiness that today sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged

3:11 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और आज आपके साथ मनभावन प्रोग्राम में आपकी दोस्त सीमा वर्मा। हर बार की तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला गीत मेरी तरफ से आप सबके लिए होगा, लेकिन ये नंबर आप जान लीजिए 9868886875 3। इस पर आपको हमें अपनी फरमाइश भेजनी है। और अब मैं आपको एक ना छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अब ये गीत कल मैं यूं ही गुनगुना रही थी, और जब मैं गुनगुना रही थी तो मुझे आपका ख्याल आया और मैंने सोचा कि क्यों ना जब कल मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँगी तो मैं इस गीत से करूँगी, क्योंकि सावन का महीना बस अब ख़त्म होने को है, कुछ ही दिन रह गए हैं, और ऐसे में ये गाना बिल्कुल सूट करेगा। तो देखा आपने कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब इस गीत को सुनने का और आप तक पहुंचाने का भी कोई कारण था। आप जब अपनी फरमाइश लिखें तो अगर आप कारण भी लिख देंगे तो सोने पे सुहागा, नहीं लिखेंगे तो आप चिंता ना करें, आपका फिर भी मैं मैसेज ज़रूर लूँगी। नंबर एक बार फिर जान लें 9868886875 3। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।

तो कैसी लगी मेरी फरमाइश आप सबके लिए? ये अचानक गीत जो है इसकी मुलाकात मुझसे हुई और मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। तो चलिए अब मेरी फरमाइश तो यहाँ पर ख़त्म होती है, आपकी फरमाइशें शुरू होती हैं 9868868753। इस पर जी आपको हमें

पेशेवर मास्टर हैं और लुबना अंसारी हैं, आल्या अंसारी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कोई कारण हो गीत के साथ तो भी ज़रूर बताइएगा। बड़ा मज़ा आता है जानने में कि हज़ारों लाखों करोड़ों गीतों के बीचों बीच आपको सिर्फ और सिर्फ यही गीत क्यों पसंद आया। पहला नगमा पेंटर बाबू का सुना, बहुत आनंद आया। ये कौन कह रहा है जी? ये कह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया। बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर सिंह जी, आप जमशेदपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं और गीतों के बारे में आपकी जानकारी बड़ी दुरुस्त है। आपने इस फिल्म का नाम भी बता दिया। कस्बा गुन्नेर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खां, फैजी फराज और फरहीन है, इनके साथ फरहान है और फारिया ताहिरा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगला संदेशा, आप प्लीज़ कोई रिकॉर्डेड मैसेज मत भेजिए क्योंकि वो हम आपका प्ले नहीं कर पाएंगे ना मैं सुन पाऊँगी। कैलाश चंद्र महिंद्रा पार्क, कोई भी अच्छा गीत है वो सुना दीजिए, ये हमें लिखकर भेजते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ अगला संदेशा जो है वो छत्तीसगढ़ पलारी से है। प्रकाश वर्मा है, निखिल वर्मा है, प्रिंस हैं, साथ में यशस्वी हैं और अनुपूर्णा वर्मा है। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। एक बात ये ख्याल रखिएगा और मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपको गीत के साथ का कोई कारण पता है तो भी आप साझा करें, बड़ा मज़ा आएगा। हिसार से हमारे पास राजकुमार जी हैं, प्रमोद कुमार हैं और पुष्पेंद्र कुमार हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगला संदेशा फटाफट पढ़ रही हूँ, देख लीजिए मैं स्पीड अपनी ना थोड़ी, मैंने वो पहले टाइपिंग सीखते थे ना, बोलते थे 40 की स्पीड होनी चाहिए, फिर किसी की 60, किसी की 100 भी हो जाती थी। मेरी कोशिश तो है। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही हैं, शाहीन फातिमा हैं, अदनान खान साहब हैं और फैज़ान हैं और अनु खान हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए जी। इसी तरह आप हमें संदेशा जो है वो भेजते रहिए। और संदेशा भेजने के लिए 9868686753 ये है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से हमारे पास हुकुम साहब हैं, सुनीता हैं और हार्दिक जी हैं, प्राची हैं और तनु हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। बहुत सारे मैसेजेस मैंने ले लिए हैं। अब एक गीत की दरकार है तो आइए सुनते हैं।

0: देखिए तमन्नाएं जो होती हैं वो भी वेरी करती हैं, किसी की कोई तमन्ना होती है कि किसी की कोई, और उम्र का जो पड़ाव होता है उसमें तमन्नाएं बदलती रहती हैं। छोटे होते हैं तो छोटी चीज़ों की तमन्ना होती है, थोड़े बड़े होने लगते हैं तो और बड़ी तमन्नाएं होती हैं, इसी तरह। लेकिन अगर हम आज अभी इसी वक्त की बात करें तो हमारी तमन्ना है कि आप 9868867853 पर अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजिए जी, आपकी पसंद का कोई गीत, अगर उसका कोई कारण है तो भी और नहीं है तो भी। और एक तमन्ना और है हमारी कि बस हम यूं जाएं और पलक झपकते ही यूं लौट कर आ जाएं आपके पास।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद

0: रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

एफएम गोल्ड 100.1 100.1 पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। मैं सीमा वर्मा और आपका मनपसंद प्रोग्राम है जी मन भावन। मैं आपको ये भी बता दूँ कि 3:29:05 हो गए हैं और आपके जो संदेश हैं वो हमें 9868868753 पर लगातार मिल रहे हैं। अब अगला संदेशा जो है वो किसका संदेशा है ये जी? कैसे हैं आप? मुझे सुनना है अखियों के झरोकों से। ये गाना मुझे मेरे ससुराल का पहला दिन याद दिलाता है, बिल्कुल याद दिलाता है। लेकिन आपने मुझे लग रहा है कि आपने इस खुशी में कि आप संदेशा भेज रहे हैं अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऊपर हमने पढ़ लिया है आपका नाम शिप्रा है और आपने न जाने कहाँ से हमें संदेशा भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। इसी तरह हमारे पास और भी संदेशे आए हैं। अगला संदेशा जो मेरे नज़र के पास है बिल्कुल मुंबई से है और अनु बढ़ जातिया हैं, इसमें शमशुल खान है और अनुराज बेनारा है। और अगला मैसेज जो है वो आप कुछ टाइप कर रहे थे और आपने एकदम अपने नाम सुना तो आप टाइपिंग से रुक गए, है ना? यहाँ पर एक और संदेशा हमारे पास आया है। धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। आपने हमें संदेशा भेजा, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और एक और गीत की फरमाइश हुई है और यहाँ ये किसने भेजा है जी? छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवगन हैं, रोशन लाल जी हैं, हेमलता हैं, डिम्पल देवगन हैं और इनके साथ साथ इन्होंने आखिर में धन्यवाद भी हमें लिखा है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला संदेशा जी आया है मराठवाड़ा से, हमारे पास आया है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख जी का। डॉक्टर प्रशांत हैं इनके साथ, जगुताई जी हैं और कुमार सचिन देशमुख हैं इनके साथ, प्रथमेश हैं, सर्वद हैं, हर्षिता हैं, सानवी हैं और प्रणाली देशमुख हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगर हम अगले संदेशे की ओर जाते हैं, बहुत ही कलरफुल संदेशा है। विजय मोहबिया हैं, कविता हैं इनके साथ, सोनू मोनू और पेंटर बाबू हैं। अच्छा जी, खंडवा से आपने हमें भेजा। हमने पता है आपको फिल्म की जो कार्यक्रम की शुरुआत की वो भी हमने पेंटर बाबू फिल्म से ही की थी। और ये किसने हमें बहुत सारे हेडफोन्स की तस्वीर भेज दी है, बहुत सारे माइक भेज दिए हैं। ये हैं जी कुरावल से हमारे रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी हैं, नौरीन हैं इनके साथ, आसना है और मोहम्मद कैफ अंसारी हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं अगर गांधीनगर गुजरात की बात करें तो आपने किसने हमें मैसेज किया है यही मैं देख रही हूँ। चलिए आपके कोई पुराने मैसेज से देख लेते हैं। जी के परमार साहब हैं, ज्योत्सना है आपके साथ, हर्ष हैं और दीपल हैं। तो अब आप क्या कहते हैं, अब एक गीत सुन लें? काफ़ी सारे नाम मुझे एहसास सा होने लगता है कि बहुत सारे नाम ले लिए हैं। खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा जी हैं, साथ में लक्ष्य मल्होत्रा हैं, कोयल हैं, साथ में पापा जी हैं इनके नानक चंद। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और आप अपने साथियों को बोलिए, आप उनके नाम ना लिखें, आप उन्हें बोलें कि आप स्वयं इस नंबर पर मैसेज करें। देखिए हमारा जो परिवार है वो इस तरह और बढ़ जाएगा। यहाँ पे सत्यप्रकाश गोयल जी हैं, मनोहर लाल गांधी हैं और प्रकाश गोगिया जी हैं, अनीता वर्मा जी हैं, इन्होंने दिल्ली से हमें मैसेज किया है। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और क्या जी, और किसका मैसेज आया है? अब ये हम मैसेज बाद में देखेंगे क्योंकि एक गीत है जो इंतज़ार कर रहा है। आइए इस गीत को सुनते हैं। आपको याद होगा जो पहला संदेशा मैंने पढ़ा था, अखियों के झरोकों से फिल्म का गीत है। हमने कंप्यूटर जी में स्क्रीन के आगे बिल्कुल सजा के सवार के इसे रखा है, अब आप तक पेश कर रहे हैं।

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और आपके साथ आज मन भावन में मैं सीमा वर्मा, और मेरे साथ तो आप सब हैं ही। बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने नाम अगर आप एक के नीचे एक लिखेंगे तो थोड़ी सुविधा हो जाती है। ऐसे लगता है कि पैराग्राफ में लगता है कुछ आप अपने दिल की बात कह रहे हैं या फिर वो कारण कह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 9868868653 नंबर है जिस पर आपने हमें मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। और ये जी क्या लिखा है और ये कौन है जी, दीपेश वर्मा है, पूनम वर्मा है, ज्योति है और शिवांश वर्मा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। अगला संदेशा सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का है, चंडीगढ़ से आपने हमें मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए भी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं किसी भी गीत में हमारे नाम को आप शामिल कर लें। भिवानी से हमारे पास किशन मेहरा साहब हैं, कोमल हैं, इनके साथ किरण हैं, कपिल हैं और कुणाल हैं, और आखिर में इन्होंने हमें नमस्ते लिखा है। और अगला मैसेज हमने लेना है जी, ज़रूर लेना है। ये कस्बा बिलराम से है, इरशाद अहमद शाह साहब हैं, शाहजहां बेगम हैं और मरियम जैनब हैं, इन्होंने भी हमें अपना संदेशा भेजा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने एक बार अपना संदेशा भेज दिया है और आपका नाम ले लिया गया है, मैं ये कह रही हूँ नाम ले लिया गया है, तो फिर कृपया औरों को भी आप मौका दें ताकि उनका नाम भी हम ले सकें 9868868753 पर। और यहाँ पर किशन वंजानी है, नीलम है, स्वाति हैं, संगीता हैं, सरिता हैं, सुमन महाजन और किशु हैं, सबका बहुत सारी नाम जो है वो स से ही शुरू हो रहे हैं। रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपने हमें लिखा है, बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से अभिजीत जी हैं, सरिता हैं, प्रणीता हैं और सिद्धांत हैं, प्रिंस हैं, एकांश हैं और जी छोटी टुक टुक हैं। और इस वक्त तो ये नाम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे भी बचपन के जो नाम हैं वो अब कोई हमें पुकारता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि अरे तो बड़े हो गए हैं अब तो ऐसे मत पुकारो, ऐसा होता है ना। कई बार आपके साथ भी होता होगा, होता है तो भी मुझे मैसेज कीजिए। नांगलोई से गौरी शंकर जी, आपने संदेशा भेजा, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे पास मोहम्मद लतीफ़ साहब का संदेशा आया है जम्मू से, अपनी लैपटॉप की फ़ोटो भी भेजी है कि आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, एफ एम गोल्ड 100.1 सुन रहे हैं। लिखते हैं कि लंच करने के बाद नींद सी आती है तो लगता है कि 90s का कोई गीत सुन लें तो नींद जो है वो उड़न छू हो जाए। अच्छा, मतलब 90s का गाना सुनने से ही नींद उड़न छू होती है या फिर आपका पसंदीदा गीत।

सौतन की बेटी फिल्म से ये गीत, और इस गीत को सुनने के बाद मुझे भी बहुत कुछ याद आ गया। बहुत अपने टाइम में जब ये फिल्म आई थी तो बहुत गुनगुनाया और बहुत बार गाया इस गीत को। और इस गीत से ना एक बहुत खूबसूरत शेर जुड़ता है, आप कहें तो आप तक पहुंचाऊं कि मैंने करवट लेकर देखा है, मैंने करवट लेकर देखा है, याद तुम उस तरफ भी आते हो। कुछ लोग होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं। 9868868753 ये नंबर है जी, इस नंबर पर आपने हमें मैसेज करना है। और अगला मैसेज जो है वो होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल जी हैं, सचिन खोरवाल हैं, अमन हैं, दीपांशु हैं, और इन्होंने एक फिल्म की फरमाइश की है। देखते हैं जी, नाम बहुत सारे पढ़ती हूँ ना तो किसी एक का ही गीत जो है वो आप तक पहुँचा सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। तो ये अच्छा यहाँ पे थैंक यू हो रहा है, आपकी फरमाइश ले ली गई है इसीलिए। चलिए ये संबलपुर से हमारे पास किसका संदेश आया है, फागू राम यादव जी हैं, ज्योति यादव हैं इनके साथ, और ओजस्वी हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और अगला संदेशा जो है ये भी थैंक यू कह रहा है जी, जिनका गीत अभी हमने सुनाया एक बहुत खूबसूरत शेर के साथ, ये इस गीत ने एक शेर की भी याद ताज़ा कर दी। चलिए ये हो गया, उसके बाद अब अगला संदेशा जो है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज हैं, फरजान हैं, फरदीन हैं, और सरफराज हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं, और पूरा का पूरा आबासी परिवार है। बहुत शुक्रिया आपके इस संदेशे के लिए। और धीरे धीरे समय जो है वो भी अपनी चाल चल रहा है, आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है और रुकता तो ये है नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं। बस हम ही हैं जो समय के साथ भागम भाग लगाए रखते हैं। अगला संदेशा हमारे पास है जी, महराज जहाँ हैं ताज मोहम्मद अंसारी हैं, गुलाम साबिर राही हैं, इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। और इसके साथ साथ अगला संदेशा जो है वो तुलसी मस्कीन, वीना जी हैं इनके साथ, आशीष हैं, मेघा हैं, राहुल हैं, रचिता हैं, किशु हैं, और रिधान हैं, नन्हे रिधान हैं ये। यहाँ पर हमारे पास दिल्ली सोनिया विहार से ये संदेशा आया है, पूजा कश्यप हैं, ये हमें लिखती हैं कि दीदी मैं पहली बार आपको मैसेज कर रही हूँ, तो पूजा आप पहली बार मैसेज करने कि कैसी फीलिंग है ये तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि पहली बार आप कर रही हैं और बहुत लकी हैं कि पहली बार आपका संदेशा ले लिया गया है। और आपने कुछ 90s के गीत की फरमाइश की है, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप पहली बार मैसेज कर रही हैं, मैं आपको बताती हूं कि एक प्रोग्राम हमारा शाम को 5:10 पर आता है गाते गुनगुनाते नाम से, और ये प्रोग्राम आप ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर आपको 90s के गाने पसंद हैं तो 80s 90s के गाने यहाँ पर खूब बजाए जाते हैं और खूब आप तक पहुंचाए जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर सुने। अगला संदेशा जो है जी वो किसका लेना है, हमने लेना है या फिर हमने आप तक गीत पहुंचाना है, मेरा मैसेज नहीं लिया आपने। अच्छा जी, किसका मैसेज नहीं लिया, ये फिर वही बात हो गई ना कि आपने पैराग्राफ में ही अपना नाम लिखा है। मोहम्मद इम्तियाज़

है, आपके साथ सलमा बेगम है और आपने कीर्ति नगर से अपना संदेशा, तो अब तो आप कह ही नहीं सकते कि मेरा संदेशा नहीं लिया है। ये आँखों का एक पर्दा ऐसे लग जाता है एकदम, कहीं ना कहीं गायब हो जाता है कोई मैसेज, कुसूर कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर आप नाराज़ हमसे हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर एक और संदेशा ले लें या फिर, अच्छा मुझे याद दिलाई गई है अभी संदेशे के लिए कि राखी है कल, तो रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो तो हमने प्रोग्राम के अंत में आपको देनी थी, लेकिन चलिए बीच में दे देते हैं, और भी कुछ बात कर लेंगे रक्षाबंधन की। कल तो पूरी तैयारी होगी आपकी, जो भाई हैं उनकी भी और जो बहनें हैं उनकी भी। यहाँ पर किसका है जी, कुलदीप मल्होत्रा है, इनके साथ दया रानी है दिल्ली से, इन्होंने संदेशा भेजा है, शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अब बारी है जी अगले गीत की, बहुत खूबसूरत गीत है 1968 की फिल्म हमसाया का, आप में से बहुत सारे समझ गए होंगे, जो नहीं समझे तो सुनिए।

आप भी हमारे दिल की आवाज़ सुनिए, वैसे समय ज़्यादा नहीं है लेकिन भाई उम्मीद तो रहती है। 9868687853। और जब अभी हमने रक्षाबंधन की बात की तो अचानक से मुझे बहुत कुछ याद आ गया, आपने बहुत सारे साथी याद आ गए जिन्हें हमने मुंह बोला भाई बनाया हुआ है और आपने भी ऐसा किया होगा। तो जो रक्षाबंधन है वो सच में भाई बहनों का बहुत ज़्यादा पवित्र त्यौहार है। और एक शेर मुझे याद आ रहा है इस त्यौहार के लिए, कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब भाई साथ में खड़े हो जाते हैं। जब भाई साथ में आपका खड़ा होता है ना तो आपको लगता है कि अब तो कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता और आपको जो चाहिए होता है, पिता तुल्य होता है बड़ा भाई, और जो चाहिए होता है बस आप डिमांड करती हैं और आपको मिल जाता है। तो कल आपको पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ये तो कल की बात होगी। और कल आप जानते हैं कि FM गोल्ड पर हर जगह भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर बहुत सारे हमने गीत सुनने हैं। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं। और यहाँ पर हमारे पास गुन्नौर से आदिल कंवर साहब का ये संदेश आया है, इसमें इनके साथ तस्दीक अली साहब हैं और मुजफ्फर अली हैं। और आपने जो गीत सुन रहे हैं, एक एक गीत आपने लिखकर भेजा है हमें और उस पर वाह भेजी है, बहुत शुक्रिया आपके इस हौसला अफजाई के लिए। और अगला संदेशा फटाफट हम पढ़ देते हैं क्योंकि अब तो सच में धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो गई हैं, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा हाकिम होता है साहब, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसको सलाम ही करना चाहिए। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ स्नेहा है, इन्होंने पहली बार हमें मैसेज किया है, थैंक यू वेरी मच स्नेहा। और अगर आपने पहली बार किया है तो आप जान गई हैं कि ये FM गोल्ड है, ये 100.1 है, ये मनभावन प्रोग्राम है और ये वो नंबर है 9868687853 जिस पर आप हमें फरमाइश भेजते हैं और हम आपकी फरमाइश बड़े ही प्यार से अपने प्रोग्राम में लेते हैं। और अगर कभी हम ना ले पाएं तो आप हमसे नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, अक्सर होता है। ईटा से हमारे पास नबी हसन अंसारी साहब हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं और इनके साथ सुहेल हसन हैं और अनम यशफ अब्बासी हैं। मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया क्योंकि बातों के बीचों बीच गीतों की दिलकश दखलंदाजी अच्छी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में मौजूद 288 भारतीय नागरिकों से अभी संपर्क नहीं हो सका है। इनमें त्रिशूली वन बिजली परियोजना में काम कर रहे 73 भारतीय भी शामिल हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में भारतीय दूतावास परियोजना अधिकारियों के संपर्क में है। श्री जायसवाल ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 86 लोगों से अभी संपर्क नहीं हो सका है। इसके अलावा नेपाल के रसुआ जिले के तिमुरे में पश्चिम बंगाल के 32 नागरिक और केरल के 33 नागरिकों से भी संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: इस बीच नेपाल की कल भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुल बहे हैं और कई पनबिजली परियोजनाएं नष्ट हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के तत्काल प्रयास जारी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग मिले।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित सर्वोपरि के हितों के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षित अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए सदैव उपलब्ध रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। ये कार्यक्रम व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनमोहन यादव भी शामिल हुए। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 402 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने पांचवें दिन 189 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्ति घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India has stepped up efforts to trace and rescue internationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 internationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli 1 power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the two separate groups of 37 and 49 nationals from Tamil Nadu who travelled from Kailash Mansarovar Yatra, 32 nationals from West Bengal in Timure and Rasuwa districts of Nepal, and 33 Indian nationals from Kerala are still unreachable. He said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
1: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, has also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable.
3: Mr. Jaiswal said that India sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which will function around the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the international stranded in Chinese side, Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Beijing is making all efforts for the safe evacuation. He said there are approximately 200 internationals who have sought assistance for evacuation. External Affairs Ministry has informed that 21 internationals from Tamil Nadu who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra have been rescued in Nepal. The National Disaster Response Force, NDRF, today said that the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation has been continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said that 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centres, an ecosystem has been developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said that sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खेल।

4:11:14 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आइए साथियों, अब आपको बताते हैं आपके मनपसंद FM गोल्ड 100.1 पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार 4:20 पर। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर हर घंटे आप और हम मिलकर समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार होंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। 5:10 पर आपसे मुखातिब होगा कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जिसमें आपके साथ मैं सीमा वर्मा रहूंगी और साथ में हमारे होंगे 80 और 90 के दशक के खूबसूरत गीत। साथियों 5:30 नॉर्थ ईस्ट डायरी आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को और मेरा साथ आपके साथ यहीं तक रहेगा। 6:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 6:10 पर कार्यक्रम विश्लेषण होगा। 6:20 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार, वहीं 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। 7:00 शाम के और 7:00 हिंदी में समाचार होंगे, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 7:10 पर कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं। साथियों आगे की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन आइए उससे पहले एक बहुत खूबसूरत गीत सुन लेते हैं फिल्म बंदनी का, जो 1963 में प्रदर्शित हुई और सावन के महीने में विवाहित बहन को किस तरह अपने भाई की याद आती है। आइए सुन।

स्वागत आपका एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। साथियों, शाम के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो 7:25 शाम सांझ ढले कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा। इसमें आपके साथ रहेंगी

0: सात बजकर 45 मिनट पर प्रादेशिक समाचार होंगे, वहीं रात 8 बजे हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं, 8 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 8 बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम मधुरिमा एक बार फिर आपके साथ विभा लक्ष्मी होंगी। और ये कार्यक्रम अपने आप में इसीलिए भी खास है क्योंकि इस कार्यक्रम में जो गीत हम आप तक पहुंचाते हैं उनके शास्त्रीय अंग की हम बात करते हैं कि इस गीत का राग क्या है और चलन क्या है, ये सब आप इस कार्यक्रम में गीतों के साथ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8:30 बजे का समय स्पोर्ट्स स्कैन का रहेगा और 8:45 पर आप सुन सकते हैं समाचार संध्या हिंदी में, वहीं रात 9 बजे News@9 आप सुन सकते हैं। नौ बजकर 15 मिनट पर साथियों स्पॉटलाइट कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और 9:30 पर यानी 9:30 बजे पर आप सुन सकते हैं कंट्री वाइड कार्यक्रम। 9:45 पर प्रोग्राम इनसाइट्स होगा और अगर हम फिल्मी गीतों की बात करें कि आप कौन से कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुन सकते हैं तो उसके लिए हमें 10:30 बजे के कार्यक्रम हर सिंगार की बात करनी होगी। आप ज़रूर सुनिएगा ये कार्यक्रम हर सिंगार, जिसमें खूबसूरत गीत भी आप सुन सकते हैं। आपके साथ रहेंगे मोहम्मद शमीम खान साहब और ये जानकारी हमने आपको दी आज के इन कार्यक्रमों की। जैसे हमने शुरू में आपसे कहा था कि 4:20 पर आप और हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सुनेंगे तो वक्त हो चला है, आइए सुनते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
2: Kendriya Hindi Sansthan KHS Agra, an autonomous body and deemed university under the Ministry of Education, invites applications for one post of a director on deputation basis in the 7th CPC level 14. Applications complete in all respects and forwarded through the proper channel must reach the Ministry of Education within 60 days from the date of publication in the Employment News. The detailed advertisement and the application format can be downloaded from the Ministry's website at www.education.gov.in. The Anthropological Survey of India, a subordinate office under the Ministry of Culture, invites applications for the post of Joint Director Level 13, Human Ecologist Level 10, Stenographer Grade 2 Level 6, Office Superintendent Level 6 on deputation or transfer basis as applicable. A total of 10 vacancies available across Nagpur, Kolkata, Shillong, Srivijayapuram, Udaipur, Jagdalpur and Mysore. Detailed eligibility conditions, qualifications and job requirements available on the website at www.ansi.gov.in. Applications must reach the concerned authority within 60 days from the date of publication in the Employment News. Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad, invites applications for one post of PA to Principal cum Front Office Executive on a fixed-term contract basis. Applicants must be graduates, preferably in hotel management, aged below 40 years, with a consolidated remuneration of 35,000 rupees per month. The application form is available at www.ihmhyd.org. The last date to apply is 30 days from the date of publication in the Employment News. The Directorate of Sugar and Vegetable Oils under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution invites applications for two posts of accounts and statistical officer, General Central Service Group B, gazetted in Level 6 on deputation, including short-term contract. Eligible officers must apply through proper channel with biodata, employer certification and attested ACRs and APRs of the last 5 years as per the performer available on www.

0: www.dfpd.gov.in. Applications should reach the Under Secretary within 60 days of publication in the Employment News. The Protection of Plants, Variety and Farmers Rights Authority. The Protection of Plants, Varieties and Farmers Rights Authority under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi, invites applications to fill various posts on deputation basis. The vacancies include Registrar 2 Post Level 13, Joint Registrar 2 Post Level 12, Deputy Registrar Guwahati 1 Post Level 11, Plant Variety Examiner Non-Gazetted 7 Post Level 7. The postings for the Deputy Registrar will be at Guwahati with All India Service liability. Detailed eligibility conditions, performer of application and general instructions are provided on the authority's website at https://plantauthority.gov.in. Applications must reach the authority within 2 months from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The Office of the Commissioner of Customs, Chennai, invites applications for 2 Group C canteen posts, Halwai cum cook, 1 unreserved, and Assistant Halwai cum cook, 1 unreserved. For departmental canteen functioning at Chennai Customs House, the Halwai cum cook post carries a pay level 3, the Assistant Halwai cum cook post carries level 2 pay. Both posts include a trade skill test in cooking to assess suitability. Candidates aged between 18 to 25 years are applicable. Applications must be sent by ordinary or speed post to the Additional Commissioner of Customs Establishment, Custom House, Rajaji Salai, Chennai, 600001, so as to reach on or before 31/12/2025. The application form and full notification is available at https://www.chennaicustoms.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: रोजगार समाचार में आपका स्वागत है. मैं हूं सुनीता और आइए सुनते हैं कहां कहां निकली रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं. सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली. सीएनआई अथवा सीएनआई से संबद्ध किसी अन्य चर्च से संबंधित 60 वर्ष से कम आयु के पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में प्राचार्य के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. वेतन एवं भत्ते यूजीसी मानकों के अनुसार होंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि है रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तिथि से 21 दिन. आवेदन प्रपत्र, आवेदन करने संबंधी दिशा निर्देश तथा पात्रता मानदंड सहित आपको विस्तृत विवरण कॉलेज की वेबसाइट www.stephens.edu पर प्राप्त हो जाएगा. तेल उद्योग विकास बोर्ड नोएडा. तेल उद्योग विकास बोर्ड सेक्टर 73 नोएडा उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से उचित माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. पद का नाम है लेखाधिकारी, लेवल 8 होगा, एक पद रिक्त है. लेखाकार लेवल 7, एक पद रिक्त है. अनुभाग अधिकारी लेवल 7, एक पद रिक्त है. आशुलिपिक ग्रेड बी लेवल 7, एक पद रिक्त है. सहायक लेवल 6, एक पद रिक्त है. आशुलिपिक ग्रेड सी लेवल 6, एक पद. उच्च श्रेणी लिपिक लेवल 4, एक पद रिक्त है. ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं और आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.oidb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जनवरी 2027 से प्रारंभ होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना और वायुसेना स्कंधों में भर्ती हेतु 157वें कोर्स तथा भारतीय नौसेना अकादमी के 119वें कोर्स में भर्ती हेतु 12 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी।

0: विस्तृत सूचना के लिए आप आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2025। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड द्वारा upsconline.nic.in पर ही आवेदन करना है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है। पात्रता की शर्तें, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश आदि की जानकारी आपको आयोग की वेबसाइट पर ही प्राप्त होगी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड यूपी। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड कुछ रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है प्रबंधक वित्त एवं लेखा। एक पद रिक्त है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए है। कंपनी सचिव के लिए एक पद रिक्त है सामान्य श्रेणी के लिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है और विस्तृत विज्ञापन के लिए किसी भी प्रकार के शुद्धि पत्र के लिए आपको वेबसाइट www.nhdc.org.in के करियर पेज के अंतर्गत जाकर देखते रहना होगा। श्रोताओं, रिक्ति से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप संबंधित संस्थान की वेबसाइट को विजिट कर उसे दूर कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी शुभकामनाएं।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम के 4:30 हुए हैं। वक्त है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी और उन खास हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। कैसे हैं अभिषेक आप?
2: Hello Naim, I'm very well, thank you. Hello and a very warm welcome to everyone. Tune into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is of course my co-host Naim Akhtar. Well folks, he's a cricket legend simply because of his unmatched statistical dominance. He finished his 52 test career with an average of 99.94, meaning he scored nearly 100 runs every single time he batted. Secondly, he had the ability to force opponents to completely rewrite the rules of the game. His batting was so overwhelmingly destructive that the England cricket team invented a controversial hostile leg-side bowling tactic known as the bodyline during the Ashes series to stop him from scoring. And lastly, he's known for his flawless leadership of the famous Invincibles team. Yes, he's the greatest cricketer ever and a down-to-earth human being. Yes, it's none other than the godfather of cricket, Sir Donald Bradman. And today we observe his birth anniversary. And we shall talk about him later in a program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
1: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध।
2: 300 Indians among thousands missing in a massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials.
1: नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैयार।
2: फोरकास्ट ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टिल सैटरडे।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित सीमा नहीं।
2: And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the Khelo India Dialogue.

0: Yes, and today we're talking about something that's not just about sports, it's about young India. Leadership, fitness, volunteering and nation building.
1: बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये है कि जब देश के युवाओं को खेल के भविष्य पर बात करने के लिए सीधे तौर पर शामिल किया जाता है तो क्या होता है?
0: Yes, and the answer is the Khelo India Dialogue, a nationwide initiative bringing students, budding athletes, volunteers, policy makers and some of India's biggest sporting names together.
1: और सुनने वालों, ये कोई एक तरफा लेक्चर होने वाला नहीं है. इसका मकसद युवाओं की बात सुनना है, उनके विचार, उनकी उम्मीदें और हाँ, उनकी चुनौतियां भी.
0: And more than 1500 education institutions name are expected to participate virtually from IITs and IIMs to NITs, AIIMS, medical colleges and universities.
1: सोचिए, आप अपने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं और अचानक साइना नेहवाल या मैरी कॉम जैसी चैंपियन से सुनते हैं कि टॉप पर पहुंचने के लिए असल में क्या करना पड़ता है.
0: और हियरिंग गगन नारांग, पीआर श्रीजेश, मीराबाई चानू और दीपा कर्मकार शेयर द स्ट्रगल्स बिहाइंड दोस मेडल्स.
1: और अब आता है दिलचस्प हिस्सा, युवा संवाद. युवा प्रतिभागियों को अपने विचार रखने का मौका मिलता है. तो सुनने वालों, आइए इसे यही इंटरैक्टिव बनाते हैं.
0: Prime Minister Narendra Modi has said that the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addressing the Khelo India Dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said from sports universities to modern training centers, an ecosystem has been developed across the country where talent receives support at every stage.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि खेलों में 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों की पहचान करने के लिए एक बड़ा टैलेंट हंट चलाया जाएगा.
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है. और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है. हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी.
0: The Prime Minister expressed happiness that today's sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors.
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has emphasized those who play the blossom in sports.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले. और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना.
1: आज खेलो इंडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में मैसूर के एमटीबी माउंटेन बाइक सदस्य चरित गौड़ा ने देश में जरूरी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और आज के संवाद में शामिल होने पर खुशी जाहिर की.
3: I am a MTB cyclist and Asian medalist. So today we had a conversation with PM about sports. So I'm really happy how the government is supporting us with sports and funds and all the facilities and infrastructure for us. So I'm really happy to see they have allocated a lot of money to support young people like me and others. And it's really helpful for us and for the country to take India's name to international stages.
0: One of the students, Shivya from Arya Mahila Mahavidyalaya, Pathankot, Punjab, said that the messages of the

0: Amnesty always motivate youth to work dedicatedly for building a Viksit Bharat.
1: आज का खेलो इंडिया संवाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाल बहुत ही इंस्पायरिंग रहा, जिस विच उन्हां दीआं गल्लां सानू हमेशा मोटिवेट कर दिया ने, ते ओ यूथ नू हमेशा डेडिकेशन दे नाल हमेशा मोटिवेट करन लई रहंदे ने कि असी हाडा यूथ जो है देश लई अगे वधे ते हमेशा देश लई काम करे। और यूथ नू स्पोर्ट्स दे नाल जुड़े रहना चाहीदा है, जो कि सानू फिजिकली ते फिट रखदी है, सानू मेंटली भी फिट रखदी है।
0: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today emphasized that India must evolve its sporting traditions into a vibrant sports culture, addressing the students participating in the Khelo India Dialogue at Hindu College in New Delhi. Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the country is actively developing a strong sporting ecosystem.
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फक्र की बात है।
0: द खेलो इंडिया डायलॉग इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड सम वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स।
3: पहली थीम है खेलों का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस और सबसे जरूरी बात, सभी की भागीदारी। क्योंकि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, चाहे छोटा शहर हो, गांव हो, सरकारी स्कूल हो या यूनिवर्सिटी कैंपस। हर युवा को ये पता लगाने का मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं।
0: थीम नंबर टू, इंडिया'स रोड टू द 2036 ओलंपिक्स, एंड दैट मींस आइडेंटिफाइंग टैलेंट साइंटिफिकली, having transparent selection systems and creating long-term development pathways for athletes.
3: Teesri theme, yuva leader tayar karne ke baare mein hai. Governance platform aur Mai Bharat ke netritv mein volunteering ke zariye, kyunki leader banne ka matlab sirf medal jeetna nahi hai, iska matlab zimmedari lena, dusron ki madad karna aur apne samudaye mein yogdan dena bhi hai.
0: Theme 4, Viksit Bharat and Youth Empowerment, Future-Ready Skills, Civic Responsibility and Structured Volunteering. And Theme 5 is particularly important, Nasha Mukt Yuva.
3: खेल, फिटनेस और साथियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने और सेहतमंद विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना।
0: And that's a powerful message. A playground can become a place of opportunity, discipline, friendship and confidence.
3: आइए उन खेल दिग्गजों के बारे में बात करते हैं जो युवा प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। ये शानदार सूची है दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, पी आर श्रीजेश, मैरी कॉम, बायचुंग भूटिया, पुलेला गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू और पी टी उषा। ये ऐसे नाम है जिन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। और इस बातचीत में सिर्फ खिलाड़ी ही शामिल नहीं होंगे, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के खेल मंत्री भी युवाओं से बातचीत करेंगे।
0: Which brings us to an important idea, young people shouldn't only be beneficiaries of programs, they should also be participants in shaping them. And there's another important message, the conversation doesn't have to end with National Sports Day.
3: युवा प्रतिभागियों को विकसित भारत युवा लीडर संवाद क्विज में हिस्सा लेने और माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो असल में ये बातचीत को लगातार भागीदारी में बदलने के बारे में है।
0: स्पोर्ट, वॉलंटियरिंग, लीडरशिप, फिटनेस, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट आइडियाज, बट वन कॉमन गोल, एम्पावरिंग इंडियाज यूथ।
3: खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद सिर्फ युवा भारत से बात करना नहीं है, बल्कि युवा भारत के साथ मिलकर बात करना है। जमीनी स्तर से लेकर ओलंपिक के सपने तक, खेल के मैदान से लेकर समुदाय तक, खेल प्रतिभा से लेकर युवा नेतृत्व तक।
0: The message is simple. India's youth has a role to play in building India's sporting future. Stay active, stay involved, stay inspired and keep the spirit of Khelo India alive.

0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
1: एंड स्ट्रेट अवे वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम पुणे। स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस इज ऑलवेज फैसिनेटेड क्यूरियस माइंड्स। पुणे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर

0: Astronomy and Astrophysics, that is IUCAA, has been at the forefront of exciting discoveries and research in astronomy. Its astronomical X-ray observations help scientists study extremely hot, energetic and violent processes in the universe that cannot be seen in ordinary visible light. We have more from a correspondent.
1: Indian astronomers have for the first time discovered a rare stellar system in Magellanic Bridge, a region of gas and stars connecting two nearby dwarf galaxies, the Large and Small Magellanic Clouds. Scientists from the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, IUCA, made the discovery using X-ray data from the E-Rosetta Space Telescope. The study was led by Dr. Tathagat Saha and Professor Chandrayi Maitra. Professor Maitra spoke to Akashvani about this discovery.
2: If you go sky watching from the southern hemisphere on a clear dark night, what would you expect to see? Of course, a fantastic array of stars. But if the sky is dark enough and you are a little luckier, you may also notice two faint fuzzy cloud-like patches. These are the Large and the Small Magellanic Clouds. Two small galaxies neighboring our own Milky Way. Over time, their interaction has pulled out a bridge of gas and stars between them. This is what we call the Magellanic Bridge, and this is a unique natural laboratory for studying how encounters between galaxies can influence the birth and evolution of stars.
1: The scientists say this discovery could provide important insights into how stars evolve when galaxies interact with one another. It could also help researchers better understand the formation and evolution of white dwarf stars and other compact objects. For Parikrama, this is Madhavi Kulkarni, Pune.
3: आज 27 अगस्त है, जिसे दुनिया भर में विश्व झील दिवस के रूप में मनाया जाता है। पानी की हर बूंद को सहेजने और हमारी जीवनदायिनी झीलों के संरक्षण का संदेश देती झारखंड के जल स्रोतों पर आधारित हमारी रांची संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट।
4: जब हम बात झारखंड की करते हैं तो रांची के ऐतिहासिक बड़ा तालाब यानी रांची झील, डिमना लेक और तोपचांची जैसी खूबसूरत झीलें यहाँ के पर्यावरण और भूजल स्तर को बनाए रखने में रीढ़ की हड्डी रही हैं। झीलों के घटते अस्तित्व पर गहरी चिंता जताते हुए जाने माने पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल कहते हैं कि जल संकट से बचने के लिए झीलों का बचना बेहद जरूरी है।
5: झीलें केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है, बल्कि ये हमारे स्थानीय मौसम को संतुलित रखती है और भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा स्रोत है।
4: झारखंड में झीलों को बचाने के लिए अब ग्रामीण और युवा स्तर पर कई अनूठे प्रयास शुरू हुए हैं। रांची और जमशेदपुर के कई सामाजिक संगठन हर रविवार श्रमदान के जरिए झीलों की सफाई कर रहे हैं। घटते जल स्तर और बढ़ते जल संकट के बीच ये कदम आने वाले कल के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं।
6: हम लोग पिछले कई महीनों से अपनी स्थानीय झीलों और तालाबों को बचाने के लिए एक निरंतर सफाई अभियान चला रहे हैं, जो कि साप्ताहिक है। हमारे समूह के युवा और स्थानीय लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और श्रमदान के जरिए पानी में जमी जलकुंभी, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कचड़े को साफ करते हैं। हमारा मुख्य मकसद यह है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों के प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट होने और गंदा होने से बचाया जाए।
4: विश्व झील दिवस पर आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जल के इन प्राकृतिक स्रोतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। झीलों का संरक्षण केवल एक दिन का संकल्प नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बचाने की निरंतर मुहिम होनी चाहिए। रांची से परिक्रमा के लिए मैं पूनम करकेट्टा।
0: विशाखापट्टनम रिसेंटली बिकेम अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल यूथ एंड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी as India hosted the BRICS Youth and Sports Ministers meetings in the city under India's BRICS Chairship 2026, we have a report.
7: Youth and sports ministers, senior officials and delegates from BRICS countries participated in the meetings. They discussed ways to strengthen cooperation in sports, youth development, education, innovation and people-to-people exchanges. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, represented India at the ministerial meetings. Discussions focused on promoting sports as a means to encourage healthy lifestyles, develop young talent and strengthen friendship among BRICS nations. The meeting also provided an opportunity to showcase Visakhapatnam's tourism and sporting potential to the international community. The city's coastline, beaches and infrastructure were highlighted as major advantages for developing sports and water-based activities. The BRICS sports ministers adopted a joint declaration reaffirming their commitment to greater cooperation in sports and youth development. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu proposed developing Visakhapatnam as a BRICS hub for water sports and sports tourism. tourism. The successful meetings have enhanced Visakhapatnam's international profile and

0: and opened new possibilities for tourism, sports, investment and opportunities for young people. The event also demonstrated how sports can bring countries and their younger generations closer together. With inputs from Allu Murali, this is Suma for Parikrama, Akashwani News, Visakhapatnam. और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं अभिषेक से वहां की हलचल।
1: In squash, India's Veer Chotrani and Velavan Senthil Kumar have stormed into the semi-finals of the Budapest Open. Chotrani defeated Egypt's Mohamed El Sherbini 3-1 in the quarterfinals, while Velavan Senthil Kumar beat Malaysia's N Yao N 3-0 yesterday. The two Indian players will now face each other in the semi-final this evening. And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 539 points or 0.70% to close at 76,934. The Nifty lost 117 points or 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
0: अब हम याद करेंगे अभिषेक महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके साथ ही फौरन बात करेंगे हम महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
2: आज हम बात कर रहे हैं 1942 की। दिन 8 अगस्त, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा।
3: लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया।
2: ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। आज ही के दिन 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के साथ ही पोलिलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलिलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से।
3: दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया।
0: आज हम जिन हस्तियों को याद कर रहे हैं उनमें से हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी का, जिनकी आज पुण्यतिथि है और जिन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में ख्याति मिली है जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया और यही वजह है कि उनकी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं।
4: कहाँ है मंजू?
5: मंजू, आर यू रेडी?
4: बिल्कुल, ये लीजिए डैडी।
5: चलो सब नाश्ता करो।
4: दीदी प्याले में चाय भरो।
6: ये दोस्त तो जल गया।
4: ए आशा पिनाल, जरा ध्यान से।
5: अरे, ये उम्मीद नहीं थी श्री वाई पी चौहान से।
1: Yes, Rishikesh Mukherjee was a director, editor and writer. He's regarded as one of the greatest filmmakers of Indian cinema. Popularly known as Rishida, he directed 42 films during his career.

0: spanning over 4 decades and is named the pioneer of the middle cinema of India, renowned for his social films that reflected the changing middle-class ethos. Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of art cinema. And among his many achievements, he remained the chairman of the Central Board of Film Certification, CBFC, and of the National Film Development Corporation of India, NFDC. And the Government of India honored him with the Dada Saheb Phalke Award in 1999 and the Padma Bhushan in 2001.
1: और इनकी खास बात ये भी थी, आपने ये तो बताया कि पारिवारिक फिल्मों के दायरे में उनकी फिल्मों को ज्यादातर रखा गया है, लेकिन उनकी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां जो थी वो भी पात्रों से ऐसे घुल मिल जाते थे कि लगता ही नहीं था कि ये पात्र हैं। 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मों में आने से पहले गणित और विज्ञान का अध्यापन करते थे। उन्हें शतरंज खेलने का भी शौक था। फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर से मिले। उनकी प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने 1957 की फिल्म मुसाफिर से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी ऑफ बीट फिल्मों का निर्देशन भी किया और 1998 की फिल्म झूठ बोले कौवा काटे उनकी अंतिम फिल्म थी। वैसे तो उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया और कुछ आपने अभी अवार्ड्स के बारे में
0: बिसाइड्स द दादा साहब फाल्के एंड द पद्म विभूषण दैट ही वन, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट दादा अवार्ड्स दैट ही वन।
1: जी, 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1972 में आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हीं की फिल्मों के चंद गीतों की एक झलक सुनते हैं।

मुकेश की आवाज पर सबसे पहले उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल ने तब ध्यान दिया जब उन्होंने अपनी बहन की शादी में गाना गाया था। मोतीलाल उन्हें मुंबई ले गए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्हें गाने की ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष जो 1941 में प्रदर्शित हुई थी एक्टर सिंगर के तौर पर काम करने का मौका मिला। बाद में उनका जो पहला गीत था 1945 की फिल्म पहली नजर का दिल जलता है तो जलने दो बहुत हिट हुआ। उसके बाद तो खैर एक के बाद एक उन्होंने ऐसे गीत दिए कि जिनके बारे में हम क्या ही कहें, उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 1300 से अधिक लोग लापता हैं। इनमें 30 से अधिक देशों के नागरिक शामिल हैं। सबसे अधिक लापता लोगों में भारत के नागरिक हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
1: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
0: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादिर जवारोप के निमंत्रण पर 21 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है। भारत वर्ष 2017 में संगठन का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार

0: तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देशभर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्राप्त हो। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थियों और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के हित के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल में जनभागीदारी का आह्वान किया है। दानवीर पहल के अंतर्गत व्यक्ति और संस्थाएं सत्यापित ग्राम पंचायतों को सीधे डेस्कटॉप कंप्यूटर दान कर सकते हैं। ये प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष A. Balakrishnan के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के कार्यों के लिए समर्पित था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा। फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका ने खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said that contact has not been established with 288 Indian nationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli One power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable.
1: He said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety. Mr. Jaiswal said that India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which will function around the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. The death toll in the massive flash floods in Nepal today rose to 270 as authorities in Nepal race against time to find thousands of missing people, including 288 Indian tourists, in one of the country's worst disasters in recent years. The flash floods yesterday wreaked havoc across three districts in Nepal. Nepal police said that 93 more bodies were recovered today. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many were foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing, mainly from India, the United States, Malaysia, Ukraine, Australia, Britain, Canada, South Korea, Singapore, Germany, and Russia. The National Disaster Response Force, NDRF, today said that the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem.

5:11:15 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। गाते गुनगुनाते आइए सफर की शुरुआत करते हैं।

इरादे तो हम चाहे बड़े बड़े कर लें, लेकिन इस दिल के हाथों ही हम मजबूर हो जाते हैं। और कई बार हमारा सोचा हुआ, बहुत कुछ सोचा हुआ, बस यूं ही रह जाता है और हम हार जाते हैं इस दिल से। खास करके जब इस दिल में बहुत बहुत सारा प्यार किसी खास के लिए हमारे पास रखा हुआ हो, होता है ना ऐसे। दुनिया का दस्तूर देखती हूँ मैं, आंधियों में नूर देखती हूँ मैं, और किसी को देखूँ ना देखूँ आपको भरपूर देखती हूँ मैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCRAPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

गाते गुनगुनाते आपका और हमारा सफर चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ और 5:23 हो गए। आप आज गाते गुनगुनाते में सीमा वर्मा के साथ है और हमारे साथ बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत गीत है।

साथियों, वक्त आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन कल रक्षाबंधन है और हमने सोचा कि प्रोग्राम का जो समापन है वो हम भाई बहन के प्यार से करें। आपका भाई आपके पास है तो भी, आपका भाई आपसे दूर है तो भी। कल बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, बड़ा पावन दिन है रक्षाबंधन के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भाई बहनों का प्यार इसी तरह बना रहे। FM गोल्ड की ओर से बस यही कहना है, एक बहुत खूबसूरत गीत।

साथियों, इसी के साथ सीमा वर्मा को अब प्रोग्राम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। आप मुस्कुराते रहिए और कल राखी का पावन पर्व बहुत प्यारे ढंग से अपनों के साथ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
1: हमारी एम्बेसी वहां के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहां से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहां से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
0: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने नेपाल को बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज

0: भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी सीरीज के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज खेल के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian national stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find over 1,300 missing people, including 288 Indians. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 Indian nationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli One power project. He said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. External Affairs Ministry has informed that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra have been rescued in Nepal. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable.
1: Mr. Jaiswal said that India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which will function round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the Indian national stranded in Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. He said there are approximately 200 Indian nationals who have sought assistance for evacuation. Prime Minister Narendra Modi will be on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic starting this Saturday. Addressing a press conference in New Delhi, External Affairs Ministry Secretary West C.B. George said on the first leg of his visit, the Prime Minister will undertake a 2-day state visit to Tashkent in Uzbekistan at the invitation of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. During the visit, Mr. Modi will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. He informed that the two leaders will also review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains and set the agenda for the road ahead. From Tashkent, the Prime Minister will travel to Bishkek in Kyrgyzstan to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit on the 31st of this month at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadur Japarov. Defense Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defense sector, as defense production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. The defense minister made the remarks after laying the foundation stone of a 472 crore rupees facility for the overhaul of T-series battle tanks at the 57-year-old vehicle factory Jabalpur in Madhya Pradesh. The government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Secretary Department of Consumer Affairs Niti Khare today flagged off onion vans for retail distribution from Krishi Bhavan, New Delhi. For the consumers of the National Capital Region, onions from the government's price stabilization buffer are being sold at a subsidized rate of 35 rupees per kilogram through NCCF, NAFED and Kendriya Bhandar outlets. In men's cricket, second and final test between India and host Sri Lanka ended in a draw in Colombo. Sri Lanka raised 429 for 9 in their second innings, taking a lead of 216 runs on fifth and final day before both captains agreed to call off the match. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, चीनी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कृषि और औद्योगिक तंत्र काम करता है। गन्ने की खेती से लेकर चीनी मिलों, एथेनॉल उत्पादन, निर्यात और किसानों की आय तक भारत का चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। देश में लगभग 5 करोड़ किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं, जबकि चीनी मिलों और उनसे जुड़े उद्योगों में करीब 5 लाख श्रमिकों को आजीविका मिलती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में गन्ने का उत्पादन 500 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। वर्ष 2015-16 में ये 348.44 मिलियन मीट्रिक टन था, यानी पिछले 10 वर्षों में गन्ने के उत्पादन में लगभग 43.5% की वृद्धि हुई है। गन्ने की खेती का क्षेत्रफल भी 2015-16 के 49.27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 58.87 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, लेकिन हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत के चीनी उद्योग का आकार कितना बड़ा है, एथेनॉल उत्पादन ने क्षेत्र को किस तरह प्रभावित किया है, हाल में चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं और सरकार ने इसकी आपूर्ति तथा कीमतों को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं भारत के चीनी उद्योग और किसानों से इसके संबंध की। भारत में हर वर्ष औसतन 300 से 340 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत लगभग 280 से 290 लाख मीट्रिक टन सालाना है। जब उत्पादन घरेलू खपत से अधिक होता है तो अतिरिक्त चीनी का स्टॉक मिलों के पास जमा हो जाता है। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे की कमी हो जाती है और कई बार गन्ना किसानों को भुगतान मिलने में भी देरी होती है। इसी चुनौती के बीच एथेनॉल उत्पादन ने चीनी उद्योग के लिए एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराया है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही इससे गन्ना किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त और अपेक्षाकृत स्थिर माध्यम भी तैयार हुआ है। हालांकि ये धारणा सही नहीं है कि एथेनॉल के लिए चीनी के इस्तेमाल से घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो रही है। 2022-23 में एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा लगभग 12% था, जो 2025-26 में घटकर लगभग 9% रह गया है। वहीं देश में उत्पादित होने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाजों, खासकर मक्का से प्राप्त होता है। एथेनॉल कार्यक्रम ने चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करने में मदद की है। सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी कीमत यानी FRP 365 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। वर्ष 2016-17 में FRP 230 रुपए प्रति क्विंटल था, यानी पिछले 10 वर्षों में इसमें 135 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। भारत चीनी का निर्यात भी करता है। 2016-17 में जहां चीनी का निर्यात 0.47 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2018 25-26 में ये बढ़कर 8 लाख मीट्रिक टन हो गया। भारतीय चीनी के प्रमुख निर्यात बाजारों में श्रीलंका, पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका शामिल है। श्रोताओं, अब सवाल है कि जब देश

0: में चीनी का उत्पादन, उद्योग और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत है तो हाल के हफ्तों में इसकी कीमतों में इतनी तेजी क्यों आई, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
1: हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है। 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत 48.18 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर 55.70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, यानी एक महीने के भीतर करीब 15% की वृद्धि हुई। लेकिन इस वृद्धि को लंबी अवधि के रुझान से अलग करके देखना जरूरी है। अगस्त 2024 से जुलाई 2026 के बीच चीनी की कीमतों में सालाना वृद्धि लगभग 3% रही थी, इसलिए मौजूदा तेजी को मुख्य रूप से अल्पकालिक आपूर्ति और बाजार से जुड़े कारकों के संदर्भ में देखा जा रहा है। वर्तमान कीमत वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान 343 लाख मीट्रिक टन की तुलना में घटकर करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने की उम्मीद है। उत्पादन में कमी के पीछे गन्ने की फसल को प्रभावित करने वाली रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां और अत्यधिक वर्षा के कारण हुआ जलभराव प्रमुख कारण है। इसके अलावा त्योहारी सीजन से पहले चीनी की मांग बढ़ने की संभावना है। वैश्विक बाजार में भी चीनी की आपूर्ति कम हुई है और कीमतों में तेजी आई है। 30 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमत $474 प्रति टन थी, जो 20 अगस्त 2026 को बढ़कर $552 प्रति टन हो गई, यानी दो महीने से भी कम समय में 16% से अधिक की वृद्धि। 2026-27 के लिए वैश्विक स्तर पर चीनी की कमी का अनुमान करीब 33 लाख मीट्रिक टन है, यानी मौजूदा कीमत वृद्धि केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक आपूर्ति परिस्थितियों का भी इसमें असर है। इसके अलावा सरकार ने ये भी पाया है कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों की ओर से सट्टेबाजी और जमाखोरी ने हाल की कीमत वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि कम उत्पादन के बावजूद भारत में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है।
0: श्रोताओं, अब सवाल ये है कि कीमतों में अचानक हुई इस वृद्धि और जमाखोरी की आशंका के बीच सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसे समझने के लिए नजर डालते हैं सरकार की ओर से किए गए कुछ उपायों पर।
2: चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश भर के चीनी डीलरों पर 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लागू की गई है। वहीं 1 सितंबर 2026 से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें चीनी मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी कर रही हैं। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर महीने में चीनी का उत्पादन 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है। इससे त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की उपलब्धता में सुधार हो सकता है।
0: श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। हाल की कीमत वृद्धि को इथेनॉल कार्यक्रम से सीधे जोड़ना सही तस्वीर पेश नहीं करता। एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली गन्ने से बना सीरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ने की बजाय घटा है। वहीं एथेनॉल उत्पादन में अनाज विशेष रूप से मक्का की हिस्सेदारी बढ़ी है। दूसरी ओर एथेनॉल कार्यक्रम ने अतिरिक्त चीनी के इस्तेमाल का रास्ता उपलब्ध कराया है। इससे उन वर्षों में चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या कम करने में मदद मिली है। जब उत्पादन घरेलू खपत से अधिक होता है, मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने से किसानों को समय पर भुगतान करने की क्षमता भी बढ़ी है। श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो भारत का चीनी उद्योग केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं है। ये करोड़ों किसानों की आजीविका, लाखों श्रमिकों के रोजगार, चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति, एथेनॉल उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार से जुड़ा हुआ एक इकोसिस्टम है। हाल में चीनी की कीमतों में हुई तेजी के

पीछे कम घरेलू उत्पादन, मौसम और फसल संबंधी समस्याएं, त्योहारी मांग, वैश्विक बाजार में कम आपूर्ति और कुछ मामलों में जमाखोरी और सट्टेबाजी जैसे कई कारक हैं। लेकिन देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अक्टूबर के नए पेराई सीजन की शुरुआत के साथ आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के सामने चुनौती ये है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध हो, किसानों को गन्ने का समय पर भुगतान मिले

सभी के बीच संतुलन बनाने की कहानी है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण के आज के अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। नमस्कार।

0: अब से कुछ ही समय में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारः एकविंशतिशताब्द्यां भारताय आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धः। अथ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दृश्यश्रव्यमाध्यमेन खेलो इण्डिया संवादः सम्बोधितः। नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या 70+200 परिमिता जाता। विलुप्तानां अन्वेषणाय च अन्वेषणकार्यं निरन्तरं प्रचलति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः जलाप्लावन स्थितिं सम्मुखीकर्तुं एनडीआरएफ दलानां विहितं नियोजनम्। सम्भाषणमञ्चे ईरान देशस्य प्रत्यागमनाय कापि निश्चित समय सीमा नास्तीति अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः। अपि च शनिवासरं यावत् बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् सर्वकारः भारतस्य कृते आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। सः अकथयत् यत् क्रीडा विश्वविद्यालयेभ्यः आरभ्य आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्राणि यावत् समग्रदेशे एतादृशं वातावरणं निर्मीयते यत्र प्रतिभायै प्रत्येकस्मिन् चरणे साहाय्यं प्रोत्साहनं च लभेत्। अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इण्डिया संवादं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् क्रीडा केवलं पदकावाप्ति पर्यन्तं सीमिता नास्ति, अपितु विकसित भारतस्य निर्माणे भारतस्य क्रीडा सामर्थ्यं युवशक्तिं च संघटयितुं एकं महत् राष्ट्रियाभियानम् अस्ति।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैश्विक क्रीडापटले स्वप्रतिभां प्रकाशयितुं देशस्य प्रत्येकस्मिन् जनपदे सामर्थ्यं विद्यते। सः असूचयत् यत् क्रीडाक्षेत्रे 5-15 वर्षपर्यन्तं वयस्कानां बालकानां चिह्नीकरणाय रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् एका महती प्रतिभा अन्वेषण योजना उद्घोषिता।
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: प्रधानमन्त्री प्रसन्नतां प्रकटयन् न्यगादीत् यत् अद्य भारते क्रीडा उत्कृष्टा जीविकात्वेन अथ च व्यवसायरूपेण समुदेति।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: अत्रावसरे केन्द्रीय युव प्रकरण क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया अवदत् यत्

0: प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कुशलनेतृत्वे क्रीडा राष्ट्रिय प्राथमिकता रूपेण अथ च युव सशक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधन रूपेण च संवर्धते।
1: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: नेपालदेशे सञ्जाते आकस्मिक जलाप्लावे मृतानां संख्या प्रवृद्ध्य 70+200 सम्प्राप्ता। देशस्य इयम् अतीव दारुणतमा आपत् मन्यते, यत्र 88+200 भारतीय पर्यटकानन्तर्भूय सहस्रशः विलुप्तजनानाम् अन्वेषणाय नेपाल प्रशासन संस्थाः तीव्रगत्या समुद्धरण कार्याणि प्रचालयन्ति। ह्यः दुरापन्नेन जलाप्लावेन नेपालस्य त्रिषु जनपदेषु व्यापकः विनाशो जातः। नेपाल आरक्षिबलेन सूचितं यत् अद्य 93 नूतनशवाः प्राप्ताः। तिब्बत नेपाल प्रशासनानुसारम् एतावता 13,000+ विलुप्ताः सन्ति, येषु बहवः वैदेशिकाः वर्तन्ते। उभयोः अधिकारिभिः ज्ञापितं यत् प्रायः 30+ देशानां नागरिकाः विलुप्ताः अभवन्, येषु प्रमुखतया भारतस्य, अमेरिकादेशस्य, मलेशिया, युक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, रूस देशानां पर्यटकाः सम्मिलिताः सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रिय आपत् प्रबंधन बलेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन बिहार उत्तर प्रदेशयोः सीमवर्ति क्षेत्रेषु सम्प्रति कोऽपि प्रतिकूल प्रभावः नैव सञ्जातः। तथापि राज्य प्रशासनेन सह समन्वयं विधाय स्थितेः अनवरतं निरीक्षणं विधीयते। एनडीआरएफ महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला अवदत् यत् उभयोः राज्ययोः 20 दलानि निरतानि सन्ति, येषु 9 दलानि बिहारे, 11 च उत्तरप्रदेशे सेवानिरतानि सन्ति।
2: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: आपत्काले जलसंकटे वा जनानाम् उद्धाराय सुरक्षितस्थान नयनाय तथा आपत्शमनाय एतैः दलैः सुरक्षा सज्जता कृता अस्ति। अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः संसूचितवान् यत् ईरानेन सह वार्ता पुनरारम्भाय कोऽपि त्वरितकालसीमा नास्ति। ईराने आर्थिक संकटस्य उल्लेखं कुर्वन् ट्रम्पः अवदत् यत् अमेरिकादेशः सुदृढस्थितौ अस्ति। अपरपक्षे अतिचिन्तां शमनाय वार्ता वातावरण निर्माणाय च कतार प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमानः अद्य तेहरान नगरे ईरानी अधिकारिभिः सह मन्त्रणां करिष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन शनिवासरं यावत् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन श्वः यावत् ओडिशा, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्येषु अपि अतिवृष्टेः संभावना व्यक्ता। सहैव शनिवासरे रविवासरे च ओडिशा राज्यस्य कतिपयेषु पृथक् पृथक् स्थानेषु अतीव भीषण वृष्टिः भवितुमर्हति। ऋतुविभागानुसारम् अग्रिम दिनद्वये अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहेषु, आन्ध्रप्रदेशे, तमिलनाडुराज्ये, पुदुचेर्यां तथा करैकल क्षेत्रेषु च भीषण मेघगर्जनेन, विद्युत्पातेन, तीव्रझंझावातेन च सह वर्षायाः पूर्वानुमानं विहितमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधन योजना श्वः स्वकीयानि 12 वर्षाणि पूरयिष्यति। अस्याः योजनायाः

0: This is Akash Vani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं स्टूडियो में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज डिफेंस प्रोडक्शन नियरली क्वाड्रुपल्स टू अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीस इन 10 इयर्स and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना होकर 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़ककर 24,091 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी, जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे। हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे। सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे। बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up the early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HDFC बैंक 2.1%, NBC में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गए। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, ICICI बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज हुई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards,

0: एशियन एंड द यूरोपियन मार्केट्स।
1: बिल्कुल, एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कॉस्पी आज 1.5% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.2% नीचे आकर बंद हुआ। इस बीच बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी अगस्त महीने की बैठक में बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 3% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान पहले के 2.6% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.7% पर ही बनाए रखा। यूरोपीय बाजारों में अगर हम बात करें तो ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 सूचकांक 0.3% गिरकर और जर्मनी का डेक्स 0.3% के उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे। पूरी तेज दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, जो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने हैं ऐसी स्थिति में? हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है।
2: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट्स में पिछले 2 वर्षों में। इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल स्टॉक इंडेक्स है, पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक एक, एक, एक दिशा बता रहा है कि इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी कहाँ जा रही है। साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकॉनमीज थी यहाँ पर AI driven जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, वो ज़्यादातर लिस्टेड है वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा। साउथ कोरिया को देखें तो मैं ये कहूँगा कि आज जो उन्होंने ब्याज दर बढ़ाए हैं, हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन स्टेबल रखा है और अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है, पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेकर प्रेशर बना रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, और सेंट्रल बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हालांकि नोबडी सेज दैट, अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है अगले वर्ष तो प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा।
1: तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है?
2: नहीं, ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशन के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
0: Moving on to the US stock market now, major US stock market indices ended in negative zone yesterday. The Dow Jones Industrial Average declined by 0.2%, the Nasdaq Composite decreased nearly 0.1%, and the S&P 500 dipped marginally. On the economic front, according to the advanced estimate released by the US Bureau of Economic Analysis, real gross domestic product increased at an annual rate of 1.5% in the second quarter, down from 2.1% growth registered in the first quarter this year. A separate report by the Bureau of Economic Analysis showed that personal consumption expenditures price index rose 3.7% in July on an annual basis, unchanged from June. Meanwhile, the core PCE, personal consumption expenditures, stood at 3.3% last month. So a lot of macroeconomic figures are being released by the U.S. Government agencies. In this case, we're looking at GDP, which has actually come down. Personal consumption expenditures prices actually rose by 3.7% in July. And in the backdrop, you also have the Fed Reserve in action. What's going to happen with the discount rate and the Fed funds rate? Because we saw the Bank of Korea also raising their interest rate by 25 basis points. Do you expect the Fed funds to go up, the discount rate to go up as well, in line with global expectations?
2: So, Arjun, that is really the big question, because if you look at the, so we had a lot of this macro data, but the gist of this data is that industrial growth is, or the economic growth is slightly coming down and inflation is slightly higher. So PCE, which is basically consumer inflation, is 3.7%, very high for America, and it has edged up a little bit from the previous numbers. So bottom line is that we are looking at slight slowdown in economic growth and a slight increase in inflation. Typically, this leads to some kind of an increase in interest rates. The central bank should do that. However, in America, what we saw last week, actually, they had a kind of quantitative easing, where the Treasury Secretary announced that they're going to buy back government securities because they wanted to increase liquidity. Now, that is done when you want to bring down interest rates, or you want to, because the yields in America, you would know, 10-year bond yield in America touched 4.8% last week, which was really a matter of concern. It is now

0: में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है कि जो हम गांव-गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और UPI ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
1: ओके,
2: लेट्स नाउ मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा।
0: देखिए, जो ईरान और US की जो वॉर है वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है। वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब्स गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई वो नहीं है। अब एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है। तो मुझे लगता है वो नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब।
2: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, in the Gulf area where, the shipping takes place and, oil prices are escalating as a result of what Iran is doing and what the US is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's moderated. Is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
0: So it is basically a sign of better supply of oil in the world, because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up, and therefore the Urals prices have come down. Primarily, I would say this is a stabilization of the oil market. Oil market, I think, is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are of course settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
1: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
0: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही हैं, लेकिन गैस की जो सप्लाईज हैं वो अफेक्टेड हैं। तो वो दोनों देश अपनी अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है अब पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं। तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट।
1: जी, आगे बढ़ते हैं। सर्राफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 1,58,386 रुपये प्रति दस्कान पर था और चांदी 1.9% लुढ़क कर 2,39,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। पुनीत जी, एक निवेशक के नज़रिए से अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो आपको क्या लगता है, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नज़र आती हैं?
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफ़ी जंप आया है, और यदि US डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना और चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली US डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेज़ी बन रही है, और जो फैक्टर्स हैं अभी US डॉलर वीकनेस के वो थोड़े फैक्टर है। अगर US इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे। तो US इंटरेस्ट रेट्स पे नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा।
2: ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इनटू गोल्ड वंस अगेन, व्हाई इज दिस ट्रेंड पिकिंग अप नाउ? बिकॉज सिल्वर वेंट अप एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ बाइंग बाय इंडियन फार्मर्स बिकॉज ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट इनकम बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट। What is the central banks doing now?
0: So central banks, as like I said, if the dollar index suffers, then immediately we say buying in precious metals. So that is what is happening, the hedging against a dollar depreciation.
1: पुनीत, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defense Minister Rajnath Singh says defense

0: production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years, then global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
1: Namaskar.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। इनमें 288 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। प्रवक्ता ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। India stepped up efforts to trace and rescue internationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359, as authorities race against time to find over 1,300 missing people, including 288 Indians. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 Indian nationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli 1 power project. He said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information, as communication links in the affected area have been disrupted. External Affairs Ministry has informed that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra have been rescued in Nepal. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
3: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian nationals who remain uncontactable.
2: Mr. Jaiswal said that India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said the government has set up a control room with the Minister of External Affairs, which will function round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the international stranded in Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for the safe evacuation. He said there are approximately 200 Indian nationals who have sought assistance for evacuation. Prime Minister Narendra Modi will be on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic starting this Saturday. Addressing a press conference in New Delhi, External Affairs Ministry Secretary West C.B. George said, on the first leg of his visit, the Prime Minister will undertake a two-day state visit to Tashkent in Uzbekistan at the invitation of President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Defence Minister Rajnath Singh has said that the country is moving towards self-reliance in the defence sector, as defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. The defence minister made the remarks after laying the foundation stone of a 472 crore rupees facility for the overhaul of T-series battle tanks at the 57-year-old vehicle factory Jabalpur in Madhya Pradesh. Mr. Singh said government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. New and Renewable Energy Minister Prahlad Joshi today said the world is appreciating the country's journey and potential in the new and renewable energy sector and is eager to invest in this sector. He said around 8 to 10 countries will participate as partner countries in the Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026, scheduled to be held from the 2nd to 5th of November this year in New Delhi. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the country today stands as an important place of transformation and renewed confidence, showcasing the results of collective determination and efforts. The Vice President said this after releasing a book titled Sankalp Se Siddhi Ka Modi Yug, written by Rajya Sabha MP Ghanishyam Tiwari. He said that whether it is advancing technology, building modern infrastructure and strengthening national unity and promoting women-led development, education is a tool for empowerment. Global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. In men's cricket, second

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विश्लेषक मलय नीरव, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जे चौधरी।
1: मलय नीरव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: मलय जी। हमारे जो आकाशवाणी में जो चर्चा सुनते हैं वो जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
2: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की, तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया, वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में। क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था, खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, मगर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनुभाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे। और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको, बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये झुकनुओं की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, झुकनुओं की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किन को किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए। ऐसा ना हो कि आज खेलें, कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती, अब वो गलत साबित हो चुकी है। क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा।
3: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स हैं उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स हैं, एक्सेलेंस है एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनके राज्य तक पहुंचे।
2: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है, जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है और जो उनका राष्ट्र के साथ आज संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है, जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में, भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनके टैलेंट को देखा और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने और युवाओं के लिए, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभिप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: पले जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
2: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए

युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से

0: कि जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके, और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में, एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है?
0: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में, नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग, इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, और एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए, जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे। इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूल कर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है।
1: मले नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां आज की शाम हम लेकर आए हैं प्यार, यादें और बारिश से सजे खूबसूरत एहसास वाले गीत, जिन्हें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना हमारे पास बैठा हो। और जब बात हो किसी ऐसे रिश्ते की जिसमें हर पल साथ होने का एहसास हो, तो फिर उस रिश्ते की खूबसूरती शब्दों में कह पाना आसान नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें प्रेम की सादगी है, अपनापन है और किसी खास इंसान के हर पल दिल के करीब होने की भावना। फिल्म है ब्लैकमेल और आवाज़ है किशोर दा की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सांझ ढले सुन रहे हैं आप विभा के साथ। साल बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ धुनें और कुछ शब्द दिल में वैसे ही बसे रहते हैं। और देखा जाए तो प्यार भी तो कुछ ऐसा ही एहसास है, कभी बहुत समझदार, कभी बिल्कुल बेपरवाह, और कभी बिना किसी वजह के बस मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाला। अब आ रही है एक ऐसे गीत की जिसमें प्यार की यही शरारत और बेफिक्री महसूस होती है। फिल्म कटी पतंग का ये गीत प्यार को एक खूबसूरत दीवाने एहसास की तरह पेश करता है। तो शाम की इस महफिल में थोड़ा सा दीवानापन घोलते हैं और सुनते हैं राहुल देववर्मन के संगीत और आनंद बख्शी के लिखे बोलों को, जिसे आवाज दी है हरफन मौला किशोर।

मन थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर जाना चाहता है। कुछ ऐसा ही एहसास है आज के सांस ढले के आखिरी गीत में, जिसमें है एक पुकार, एक इंतज़ार और किसी ख़ास शख्स को याद करने का वो एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना मुश्किल है। फिल्म है जहरीला इंसान, संगीत है आर डी बर्मन का और बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के। और गीत कौन सा है, लीजिए सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई। और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज राजधानी के द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में H1N1 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। श्री सिंह ने अस्पताल में बनाए गए विशेष H1N1 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने के साथ मरीजों के इलाज और देखभाल के इंतजामों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन, दवाइयों, फ्लूइड, स्वास्थ्य परीक्षण और दूसरे जरूरी मेडिकल सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
1: हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ काम कर रहा है। उनसे इंश्योर किया कि आइसोलेशन रूम बने और आइसोलेशन रूम में हर चीज की सुविधा हो, जिसमें आप टेस्ट कर सकें, आप कोई इमरजेंसी हो आप फ्लूइड दे सकें, सारी चीज की व्यवस्था रहे। साथ साथ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, रात की इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल रहे। हमने ये इंश्योर किया है कि चाहे टेस्ट की बात हो चाहे दवाई की बात हो, हर चीज अवेलेबल रहे और हर चीज और हमारे हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबोधन प्रेरण कार्यक्रम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य में अन्वेषक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। श्री संधू ने विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसर तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष बल दिया गया।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेटियां इंजीनियरिंग, तकनीकी, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं को केवल मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि AI और नई तकनीकों की निर्माता बनकर भविष्य के समाधान तैयार करने चाहिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा नेत्र नारी नेतृत्व जैसी पहले आगे बढ़ाई गई हैं, जिसके तहत दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्वेलेंस ड्रोन विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राजधानी की हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार लगभग 160 एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही छात्र और युवा उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 400 करोड़ रुपए की स्टार्टअप और उष्मयान नीति को मंजूरी दी गई है। श्री सूद ने छात्राओं से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित करने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि दुनिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षमता की सराहना कर रही है और इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 में करीब 8 से 10 देश साझेदार देश शामिल होंगे। श्री जोशी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने नवीकरणीय स्रोतों से 300 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 50 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं। साथ ही पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खंडेरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर NCCF नेफेड और केंद्रीय भंडार के बिक्री केंद्रों तथा दिल्ली में मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि देश में प्याज के उत्पादन या उपलब्धता की कोई कमी नहीं है।
4: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है। वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार भाटिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान आदर्श नगर क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड DSIIDC के वरिष्ठ अधिकारी, जहांगीरपुरी स्थित राजस्थान उद्योग नगर से जुड़े प्रतिनिधि तथा वन एवं खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान उद्योग नगर में DSIIDC द्वारा कराए जा रहे सड़क और वर्षा जल निकासी कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बुनियादी ढांचे के कार्य टिकाऊ, दीर्घकालिक और तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्री सिरसा ने औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित संबंधित विभागों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान की प्रथाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नई दिल्ली नगर परिषद के क्षेत्रों में लापरवाही के कारण जल जमाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात श्री सिंह ने परिषद की बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान श्री सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दोबारा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम की विशेष, तदर्थ और वैधानिक समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज सिविक सेंट्रल स्थित निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल किए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने निगम की समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले पार्षदों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ और 1 सितंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू हुई। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक सदन से बाहर ही रहे। इसके बाद विपक्ष के नेता और अन्य विधायकों ने विरोध दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है।

0: जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
0: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसे पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारी मौसम से पहले राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब हो चुकी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। श्री सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीमों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पनीर, खोया, घी, मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों के 37 नमूने एकत्र किए। उन्होंने बताया कि इन सभी नमूनों की गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा और प्रयोगशाला के नतीजों तथा कानून के लागू प्रावधानों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से राखियां बांधी। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर कल तक के लिए एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि इस दौरान आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और विकास मार्ग के आसपास पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही अधिक रहने की आशंका है। पुलिस ने यात्रियों को इन मार्गों पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने को भी कहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए वाहन चालक डायवर्जन संबंधी संकेतों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे ए बालकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने समाज के प्रति बालकृष्णन के उल्लेखनीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक से अधिक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और राष्ट्र सेवा को समर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राजधानी दिल्ली में आज भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार अभी तक 30 से अधिक देशों के 1300 से अधिक नागरिक लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 285 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है, जबकि 54 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित भारतीयों तक पहुंचने के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रहा है। इस बीच चीन में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 200 भारतीय नागरिकों ने सुरक्षित निकासी के लिए मदद मांगी है। पेचिंग में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और उनकी सुरक्षित निकासी के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव दल तथा आवश्यक संसाधन तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए सुरक्षित भंडार से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के सुरक्षित भंडार का प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर से बेचा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध सदैव राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से विदेश निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत आज परिवर्तन और नए आत्मविश्वास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ये सामूहिक संकल्प और प्रयासों के परिणाम को दर्शाता है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की पुस्तक संकल्प से सिद्धि का मोदी युग का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वागत है आपका मधुरिमा में, साथ है आपके विभा। नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन रागों पर आधारित गीत जो मन को प्रसन्नता, शांति और खुशी देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उस राग से जो भावुक और सुरीला होने के साथ साथ मन के अकेलेपन और उदासी को दूर कर खुशी प्रदान करता है। यह राग है राग शिवरंजनी और इसी पर आधारित है हमारा आज का पहला गीत साल 1966 की फिल्म सूरज से, मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

तरोताजा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और तनाव को दूर कर मन में खुशी उत्पन्न करता है। इसके गायन का समय होता है संध्या काल। तो सुनते हैं इसी राग पर आधारित गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से मुकेश साहब की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभा के साथ, और आज मधुरिमा में हम लेकर आए हैं आपके लिए वो राग जो मन को प्रसन्नता, शांति और खुशी देने वाले हैं। हमारा आज का अगला राग है राग भोपाली। ये एक शांत और मधुर प्रकृति का राग है जिसकी जाति औड़व यानी 5 स्वरों

राग भोपाली पर हिंदी सिने जगत में तमाम गीत बने हैं, तो आइए एक और गीत सुनते हैं इसी राग पर आधारित, फिल्म उमराव जान से आशा भोसले की आवाज में, संगीत खय्याम साहब का।

संगीत की लय मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है। तो इसी तरह संगीत सुनते रहिए। फिलहाल विभा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे क्रिकेट

0: मुकाबले की जो परिणाम भारत के पक्ष में नहीं दे सका, हालांकि श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली और ये मैच ड्रॉ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कार्यक्रम में रुक किया जाएगा हॉकी विश्व कप का, जहां आज भारतीय महिला टीम ने पिछले 52 सालों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया है, जर्मनी को 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में 3-1 से हरा करके। और पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश टूर्नामेंट में अब से कुछ ही देर बाद सेमीफाइनल में भारत के वीर चोटरानी और वेदनवंश सेंथिल कुमार आमने सामने होने जा रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू किया जाए कोलंबो से, जहां भारत और श्रीलंका के बीच आज 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला आज अंतिम दिन ड्रॉ रहा। फॉलोन खेलने उतरी श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में आज 5वें और अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 429 रन बना चुकी थी। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुषा ने 264 गेंदों पर 133 रन की शानदार पारी खेली और वो अंत तक नाबाद होके पवेलियन लौटे। और उन्होंने कह भी सकते हैं कि आज अंतिम दिन श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाज यानी टेल हैंडर्स के साथ टीम को हारने से बचाया और एक ड्रॉ मुकाबला देने में मदद की। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी, जबकि भारत ने 9 विकेट खोकर 503 रन बनाए थे और अपनी पारी घोषित कर दी थी। इस मैच पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, उम्मीद थी हम लगातार दूसरे तीसरे दिन के बाद से जिस तरह भारत ने पूरी श्रृंखला में खेल दिखाया, भारतीय टीम हमेशा हर मोर्चे पे फ्रंट फुट पे दिखी, डोमिनेट कर रही थी, आज भी हमें आखिरी समय तक उम्मीद थी कि शायद अब श्रीलंका ऑल आउट होगी और भारत इस स्कोर को चेस करेगी, और जिस 1-0 से भारत को संतोष करना पड़ा वो 2-0 हो सकता था, लेकिन 5वें दिन के खेल में क्या क्या बीता।
1: बिल्कुल शक्ति, आज भारत की जो सीरीज 1-0 पे खत्म हुई है वो 2-0 पर भी खत्म हो सकती थी, लेकिन अगर आज के खेल की बात करें, आज के खेल की या पूरे मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका के नाम रहा है। भारत मुकाबले की शुरुआत में हावी नजर आई थी, क्योंकि 500 रन का मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो श्रीलंका के ऊपर था, जिसके चलते वो 290 रन पर सिमट भी गए थे, लेकिन जब वो दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सोनल दिनुषा ने अपनी बैटिंग एक्सीलेंस दिखाते हुए 133 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही केशारा नुवांथा के साथ उन्होंने शतकीय साझेदारी करी और उसके बाद प्रभात जयसूर्या, लहरू कुमारा, असिता फर्नांडो के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां करते हुए मुकाबले को ड्रॉ की ओर पहुंचा दिया। वहीं पसिंदू सूर्या बंदारा ने 92 और कमिंदू मेंडिस ने 55 रन का योगदान टीम की झोली में किया।
0: जी बिल्कुल, और क्रिकेट में कहते हैं कि पार्टनरशिप्स बिल्ड द मैच। आज हमने देखा कि किस तरह साझेदारियों ने इस मुकाबले को बनाया नहीं लेकिन मुकाबले को बचाया, और यही शायद टेस्ट क्रिकेट की, रेड बॉल क्रिकेट की खूबसूरती है जिसको हम देखना चाहते हैं। आखिरी दिन तक मैच गया और शायद श्रीलंका ने आखिरकार मेजबान टीम ने परिणाम को काफ़ी हद तक कह सकते हैं भले जीतना हासिल की हो लेकिन अपने पक्ष में रखने का काम किया। एक खिलाड़ी जो लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में श्रीलंका की तरफ से सुर्खियों में रहा, दिनुषा, सोनल दिनुषा, जिन्होंने आज भी शतकीय पारी खेली, पहली पारी में भी शतक लगाया था, किस तरह से इस पूरे खिलाड़ी को देखा जाए श्रीलंका की तरफ से।
1: सोनल दिनुषा एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज बनके उभरे हैं श्रीलंका के लिए, उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में 3 शतक लगाए हैं और 420 रन बनाए हैं। इसके साथ ही साथ वो पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाए, टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात है। और वहीं जहां आपने साझेदारी की बात करी तो उन्होंने केशारा नुवांथा और उनके साथ शतकीय साझेदारी, प्रभात जयसूर्या और लहरू कुमारा, इन सभी के साथ साझेदारी तो करी ही, साथ ही साथ 538 गेंदें, लगभग 90 ओवर का खेल जो है इन लोगों ने खेला और आज का पूरा दिन जो है अपनी तरफ करते हुए मुकाबले को ड्रॉ कराया।
0: जी बिल्कुल, हालांकि सीरीज भारत के पक्ष में रही है तो भारत के दृष्टिकोण की भी बात की जाए, भारत के लिए क्योंकि अहम सीरीज थी, WTC की टेबल में हम लगातार एक अच्छा होल्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा स्थान पाने की, भारत के लिए क्या सकारात्मक पहलू इस श्रृंखला से निकल करके आए।
1: भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि 2023 के बाद पहली अवे सीरीज जो है वो भारत ने अपने नाम करी है। अगर हम आखिरी 5 सीरीज की बात करें तो ये तीसरी श्रृंखला भारत ने जीती है जिस और एक ड्रॉ कराई है, एक हारी है। हार का सामना भारत को करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब 2-0 से हार मिली थी, जिसके कारण से मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर था और इस सीरीज के बाद से WTC की ओर थोड़े पॉजिटिव्स नजर आएंगे भारतीय टीम को। हालांकि अभी वो 51.52% अंकों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद है और 11 मुकाबलों में 5 जीत और 4 हार, दो ड्रॉ के साथ अभी बने हुए हैं। लेकिन अब जो 7 मुकाबले बचे हैं उनमें से कम 6 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, नहीं तो इससे कम में भारत के लिए WTC के फाइनल के दरवाजे जो हैं बंद होते नज़र हमको आएंगे।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि आने वाली राह जो है और चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि भारत अब अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात की जाए तो वापस 19 नवंबर को भारतीय टीम देखने को मिलेगी वेलिंगटन में, जहां न्यूजीलैंड में सीरीज खेलनी है, वो भी आपको विदेश में जाके खेलनी है, तो सेना कंट्री का दबाव वाकई अपने आप में कुछ अलग होता है। और अगर आज के मैच की बात वापस कर ली जाए तो मैन ऑफ द मैच, जैसा कि हमने बताया कि दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सोनल धिनुषा को चुना गया, जबकि भारत के देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। विशेष बहुत कम समय में समझना चाहेंगे, देवदत्त पडिक्कल इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, जो कि पहले मैच में शतक आया है, इस मैच में भी शतक था, और शायद लोगों को याद नहीं होगा जो प्रैक्टिस मैच खेला गया दोनों टीमों के बीच में उनमें भी इस खिलाड़ी ने शतक लगाया है, तो एक अच्छा भारत को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज मिला है।
1: जी शक्ति, भारत के सामने 3 नंबर के बल्लेबाज की समस्या जो है टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी समय से बनी हुई थी, लेकिन इन 2 टेस्ट मैच की 3 पारियों में देवदत्त पडिक्कल ने 328 रन बनाकर उसको लगभग समाप्त करने का कार्य किया है।
0: जी बिल्कुल, और अब इसके बाद रुख किया जाए कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट का, जहां पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आरवीर सहवाग और भारत के कप्तान और मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य राय चंदानी को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के बल्लेबाज जशवर्धन चौहान उप कप्तान होंगे। ये मुकाबले राजकोट में 18, 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे, तो कहा जा सकता है कि झलक देखने को मिली सहवाग की। अगर बात की जाए आरवीर सहवाग की और द्रविड़ की, शायद कहीं ना कहीं वंश नज़र आता है जब ये मैदान पे उतरते हैं खिलाड़ी।
1: जी बिल्कुल, अन्वय द्रविड़ और आरवीर सहवाग दोनों ही मतलब जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आए हैं। अगर अन्वय द्रविड़ की हम बात करें तो पिछले साल जो है उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था विनोद मनकर ट्रॉफी में, और आरवीर सहवाग अभी DPL खेल रहे हैं और अंडर 19 में दिल्ली के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक अच्छा पूल जो है वो हर मोर्चे से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अब कार्यक्रम में बात की जाए युवा इंडिया संवाद की। देश भर में आज खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से युवाओं, खिलाड़ियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है।
3: खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में आज देश भर के युवा खेल, नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को लेकर एक साथ एक मंच पर नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मोबाइल की स्क्रीन छोड़कर मैदान पर पसीना बहाने की अपील की।
2: देश में स्पोर्ट्स कल्चर तभी बनता है जब सामान्य मानवीय से जुड़े, जब स्कूल्स स्पोर्ट्स के पीरियड को करिकुलर नहीं जीवन का हिस्सा माने। स्क्रीन से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स की अहमियत है, प्ले स्टेशन से ज्यादा प्ले ग्राउंड की अहमियत है।
3: प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारत में खेल एक बेहतर करियर और पेशे के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे आयोजनों में ऐसे खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाना चाहिए जिसमें देश अब तक हिस्सा नहीं लेता है।
2: ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती, यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो हम कम्पीट ही नहीं करते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद को याद करने का भी एक मौका है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।
4: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को, लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है।
3: कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों में लोग वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और अपने विचार भी रखे।
5: संवाद के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट से कहा कि स्टडीज के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी एक अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनाए। उन्होंने यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर भी फोकस करने का मैसेज दिया।
6: आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने भाषण सुना, उसके लिए जो विजन है उनका वो बहुत ही अच्छा रहा है। वो जो चाहते हैं कि हम 2036 में जो ओलंपिक थे उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा मेडल्स आए और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में से पार्टिसिपेट करें।
7: आज तक खेलो इंडिया संवाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाल बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। ओ यूथ नु हमेशा डेडिकेशन दे नाल हमेशा मोटिवेट करन लई रहंदे ने कि असी हाडा यूथ देश लई अग्गे वधे ते हमेशा देश लई काम करे।
8: आई एम एमटीपी साइक्लिस्ट एंड एशियन मेडलिस्ट। सो टुडे वी हैड अ कन्वर्सेशन विद पीएम अबाउट स्पोर्ट्स। सो आई एम रियली हैप्पी हाउ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस स्पोर्ट्स एंड फंड्स एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अस।
9: माय नेम इज जिनिवी स्मू फ्रॉम एनएसएस वॉलंटियर माउंटी कॉलेज। थ्रू दिस खेलो इंडिया संवाद लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स।
3: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम तस्वीर है नए भारत की, जहां युवाओं का हुनर प्रतिभा से पदक तक का सफर तय कर रहा है और पोडियम पर लहराता तिरंगा खेलों की दुनिया में सरकार से सहयोग, खिलाड़ियों की मेहनत, खेल व्यवस्था में होते बदलावों की कहानी बयां कर रहा है।
2: खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है।
0: तो कितना कुछ है इस दुनिया में जो खेल हमें सिखाते हैं, और खेल ही अगर गिराते हैं तो खेल ही हमें मनाते हैं। प्रधानमंत्री के ये शब्द कि जो खेलेगा वो खिलेगा, शायद कहीं ना कहीं वो विकसित भारत का लक्ष्य और वो तमाम सपने जो 2030, 32, 36 के लिए भारत ने देखे हैं, उनकी दिशा में भारत के बढ़ते हुए ये कदम। अब रुख करते हैं हॉकी विश्व कप का, जहां भारतीय महिला टीम ने आज 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स की एम्स्टरडेम में खेले गए मुकाबले में भारत के लिए इशिका ने 43वें और नवनीत कौर ने 44वें तथा 47वें मिनट में भारत के लिए गोल किया। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने 59वें मिनट में किया, एकदम मैच के अंतिम क्षणों में। ये भारतीय महिला हॉकी टीम का पिछले 52 वर्षों में अगर देखा जाए तो विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले भारत ने 1974 में चौथा स्थान हासिल किया था विश्व कप में। इस साल भारतीय टीम ने एक बेहतरीन खेल दिखाया, हालांकि थोड़ी सी दुर्भाग्यवश रही, अगर टीम आखिरी मैच ड्रॉ नहीं होता तो शायद आज सेमीफाइनल में भारतीय टीम होती। अब कल भारतीय पुरुष टीम 7वें स्थान के लिए बेल्जियम से खेलेगी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम की नजर जीत के साथ विश्व कप अभियान समाप्त करने पर होगी। अब रुख करते हैं स्क्वाश का, जहां हंगरी में पीएसए बुदापेस्ट स्क्वाश ओपन में सेमीफाइनल में आज भारत के वीर चोटरानी और वेलनवल सेंथिल कुमार आमने सामने होंगे। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया था। वहीं वेलनवल सेंथिल कुमार ने विश्व के 18वें नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के एन यो एन जी को 11-2, 11-9, 11-8 यानी कि 3-0 से हराते हुए एक बड़ा उलटफेर किया था और अंतिम चार में जगह बनाई थी। शतरंज में अगर नजर डाली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा शतरंज ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में दूसरी बाजी में अमेरिका के फाबियानो करुआना के साथ ड्रॉ खेलकर सेमीफाइनल में वापसी करने से चूक गए हैं, क्योंकि उनको पहले बाजी में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी नज़र होगी कि अब वो किस तरीके से ब्लिट्ज एंड रैपिड राउंड में जीत हासिल करके वापस फाइनल में बढ़त बनाएं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
10: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज, लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा

0: की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9775131687 9770910 7500 और 9779810326117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
2: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
3: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
2: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: Discussions are expected.
3: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
2: स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशनशिप।
1: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
4: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
1: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
5: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
1: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
6: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
1: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी

0: समाचार से जुड़े।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
3: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. heavy rain.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं, साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खासतौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में

0: एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है।
1: बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं
0: जी,
1: उनमें जो भारत की सम्मान है, अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था। तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, जहां जहां बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहां आए और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं, और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज के समय में?
1: देखिए आज तो बहुत ही अधिक है, इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है, तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि अहिंसा होनी चाहिए, उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल, इसको जो अहिंसा का है उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए।
0: रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अब वो 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर 6 स्थान पर आ चुका जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों।
1: हमारा इतिहास आप देखिए, वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो जो इतिहास ने जब जब करवट ली है वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है
0: जी,
1: न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट है जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट है अगर उनका उत्खनन सही करे और उनके बारे में अगर इतिहास में सही हमें जानकारी मिल जाए तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है।
0: अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थायी सूची से शुरू हुई थी और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है। तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक, ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है?
1: मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं। जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है, तब वो उसको मान्यता देते हैं। और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहां एमिनिटीज कैसी होनी चाहिए, और जब वहां पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए

0: सुविधा कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल हो जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए।
1: रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है भारत, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं। भगवान बुद्ध की जितने भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है?
0: देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान हैं। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया। उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख हैं, दुखों के बारे में उन्होंने चार उपदेश दिए थे, और वो अगर कोई उन चार उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, आठ सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप आठ सम्यक को एडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही हैं, हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है। और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश है, वो तो इस बात को एडॉप्ट करते ही हैं, लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं, और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं।
1: रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी बोधगया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे?
0: देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी, और उसके बाद बिहार में बौद्ध गया, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और सारनाथ में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास है। तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जाए, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है, वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखे। और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे।
1: अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है। तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
0: देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना। तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली, पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए। जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हम आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए, और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए।
1: रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है, या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है?
0: मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है, तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा इतना धन कहाँ से आएगा, तो इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है।
1: व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं आपकी, यहां पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं।
0: हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं,
1: जी,
0: कहीं उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया, तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं जो RWA है, उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बट जाएगा।
1: रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है। तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है। तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ के मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से, एक तो हम अपनी सभ्यता को अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया। क्योंकि बहुत सारे देशों ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 1000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है। तो उस महत्व को अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी।
1: रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं ये विभिन्न देशों में ले जाकर के वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं, ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है, आप इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, मुझे लगता है कि आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध के देशों का प्रचार करना है तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा, तभी तो लोग समझेंगे ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल।
1: रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत की प्राचीन विरासत, सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंट्री वाइड

0: 5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887 और +9111230887 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1,300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का हवाई सर्वेक्षण किया और नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल का साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए $20 लाख की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयोफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: में अधिक पहुंच की मांग करेगा और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीती। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। इस बीच नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के अगले 3 दिनों में टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार आज सुबह तक इस झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा था और झील पहले ही उफान पर है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में इसमें 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है, जिससे झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के सरकारी अखबार के अनुसार अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। संभावित खतरे से निपटने के लिए बाढ़ की स्थिति का आकलन और जोखिम मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि झील टूटने की स्थिति में बचाव अभियान चलाया जा सके। चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत के गियोरोंग टाउनशिप का दौरा किया। कल आई बाढ़ में 558 लोगों के लापता होने की खबर है। बाढ़ ने चीन नेपाल सीमा के पास गांवों और कस्बों को अपनी चपेट में ले लिया था। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है। भारत स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और नेपाल सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ वहां फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 285 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 54 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सुरक्षित निकाले गए लोगों में त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 33 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए श्रीराम शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क कर सकते हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उधर संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर

0: रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की दो दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और जन जन के बीच संबंधों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे। ताशकंद से श्री मोदी किर्गिस्तान जाएंगे। यहां वे राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, संपर्क और अवसर से जुड़ी भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन से अलग SCO देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री 6ठे विश्व नोमाड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है। भारत वर्ष 2017 से संगठन का पूर्ण सदस्य है। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की समीक्षा के दौरान जापान में बासमती चावल के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग करेगा। साथ ही खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी। जापान के ओसाका में निवेशक और कारोबारी रोड शो में श्री गोयल ने जापान को बासमती चावल के बढ़ते निर्यात को लेकर उद्योग जगत की चिंताओं पर कहा कि जापान में चावल एक संवेदनशील क्षेत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
2: कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही यह श्रृंखला भारत ने 1-0 से अपने नाम कर ली है। फॉलो ऑन खेलते हुए मेजबान श्रीलंका ने दूसरी पारी में अंतिम दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सोनल दिनुषा को प्लेयर ऑफ द मैच और भारत के देवदत्त पडिकल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में भारत के लिए इशिका और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंक्स ने किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हुई। नेपाल में छोचेनखोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी बैरियर झील के अगले 3 दिनों में टूटने का खतरा बढ़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता समीक्षा में बासमती चावल के लिए भारत जापान के बाजार में अधिक पहुंच की मांग करेगा। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood. 290 Indians among nearly 1,300 missing people. Death toll rises to 359. Nepal Barrier Lake near confluence of Chochenkola and Purepusanko rivers face high risk of breach over next 3 days. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. India to seek greater Japan market access for basmati rice in SEPA review, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. And in men's cricket, Second test between India and host Sri Lanka ends in draw. Visitors clinch series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 200.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, शाम की इस खूबसूरत घड़ी में आपका इस्तकबाल है एक ऐसे सफर में जहां रास्ते पुराने हैं लेकिन एहसास आज भी बिल्कुल नए हैं। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही लगता है कि जैसे किसी ने दिल की कोई पुरानी चिट्ठी खोल दी हो, कोई भूला हुआ चेहरा हमारे सामने आ जाता है और किसी की मुस्कान हमें याद आ जाती है। और कभी कभी हमें वो वादा याद आ जाता है जो बरसों पहले हमने किसी से बड़ी मासूमियत से कह किया था और इसको याद करके

हमारे हमें धीरे से मुस्कुरा देते हैं। तो आइए आज पुराने गीतों की महफिल सजाते हैं, दिल को थोड़ा पुराना होने देते हैं और यादों को थोड़ा सा जवान।

दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज अगर कुछ है तो वो है भरोसा। और भरोसे के साथ आता है एक छोटा सा वादा। वादा ये कि चाहे मौसम बदल जाए, मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा कम हो जाए, रास्ते भले ही अलग हो जाएं, दिल में किसी की जगह कम नहीं होने देंगे। पुराने जमाने के गीतों में ये वादे कितने सीधे और कितने खूबसूरत हुआ करते थे। ना कोई बड़ी बड़ी बातें, ना बहुत लंबी शिकायतें, बस एक नजर, एक मुस्कान और फिर दिल कह देता था, अगर तुम साथ हो तो सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

दोस्तों, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं होता, वो किसी इंसान की आवाज़ बन जाता है, किसी शहर की याद बन जाता है, किसी गली की याद बन जाता है, किसी बरसात की शाम, किसी ख़त की खुशबू, या फिर किसी मुलाकात का बहाना बन जाता है। और फिर बरसों बाद जब कभी वो गीत कहीं रेडियो पर सुनाई दे जाता है तो लगता है जैसे वक्त ने, समय ने अचानक पीछे मुड़कर आवाज़ दी हो और कहा हो, याद है? फिर दिल कहता है, हाँ सब याद है। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी ही याद को इस खूबसूरत से गीत में महसूस करते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: न झटको जुल्फ से पा

वादा सिर्फ एक शब्द है, लेकिन मोहब्बत में इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, ये कितना छोटा सा वाक्य है, लेकिन जब ये बात किसी अपने के मुंह से निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की सुरक्षा मिल गई हो। जिंदगी हमेशा वादों के मुताबिक नहीं चलती, कभी रास्ते बदल जाते हैं तो कभी हालात मजबूर कर देते हैं। लेकिन सच्ची मोहब्बत की खूबसूरती शायद यही है कि वादा निभाया जाए या ना निभाया जाए, लेकिन उसकी नियत दिल में हमेशा जिंदा रहती है।

दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। खुश रहिए, अपनों के करीब रहिए और प्यार को ज़िंदगी में थोड़ा सा बचा कर ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, एक गीत सुनने का वक्त ज़रूर निकालिए, किसी अपने को याद करने का वक्त निकालिए और कभी कभी बिना किसी वजह के मुस्कुराने का भी वक्त निकालिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर

लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888718 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क के डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज डिफेंस प्रोडक्शन नियरली क्वाड्रुपल्स टू अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीस इन 10 इयर्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख, सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना होकर 1,80,000

0: करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।
1: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 539 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़क कर 24,091 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी, जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे। हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे। सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे। बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई।
1: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up the early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HDFC बैंक 2.1%, NBC में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गए। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, ICICI बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज हुई।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, a mid-small private bank shed 2.6%, PSU banks lost 2.1% and BankEx dropped 1.7%. In contrast, capital goods gained 0.6%, telecommunications added 0.5% and healthcare rose by 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative. As shares of 2,557 companies declined, 1,779 companies advanced and 190 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 14 पैसे गिरकर 95.55 पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: पुनीत, मार्केट आज सुबह एक अच्छी शुरुआत के साथ था, कारोबार कर रहा था, लेकिन बाद में वो अच्छी शुरुआत सस्टेन नहीं कर पाया। क्या कारण रहे ऐसे और क्या लगता है कि करेक्शन आसपास या करेक्शन हो चुका है?
2: निखिल, देखिए, जहां तक करेक्शन का सवाल है, बाजारों में अभी एक इनहेरेंट एक सुस्ती कहूंगा, वीकनेस तो मैं शब्द शायद इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बाजार सुस्त हैं। और खास कारण यह है उस बाजारों का सुस्ती का कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे आज आपने पढ़ा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, HDFC बैंक या जो बड़े बड़े बैंक के शेयर्स थे, वहां हमने थोड़ी गिरावट देखी। और यहां पर काफी बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टेड हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड हैं और उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे। और ये माहौल पिछले करीब एक या दो वर्ष से हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो हेडलाइन इंडेक्सेस हैं, वहां पर निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं आ रहा है। उस कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर कुछ मुनाफा आ रहा है, कुछ सिलेक्टिव हम तेजी मंदी देख रहे हैं वहां पर, और ज्यादातर पैसा भी अब मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बाजार मिले जुले हैं विद एन अंडरलाइंग स्लो मार्केट मूवमेंट। आज के बाजार खास तौर से मैं का जो आपने देखा उतार चढ़ाव के शुरुआती दौर में बाजार तेज थे, फिर बाद में गिरावट आई, उसका कारण जो आपने कहा कि आज जो एक मंथली एक्सपायरी थी इन सेंसेक्स की, वो उसका कुछ इफेक्ट रहा। लास्ट क्लोजिंग सेशन में, लास्ट के 15 मिनट में ज्यादा हमने गिरावट देखी, तो वो कोई खास बात नहीं है। पर ओवरऑल मैं कहूंगा कि मार्केट जो है वो अभी थोड़ी सुस्त है।
1: पुनीत, व्हाट इज द इंपैक्ट of the derivative segment because there are going to be contracts which are bought into for the next month. We have the FNO expiry for this month. What happens in the next month in the derivative segment, which is having an impact on the cash market right now? When we talk about mid cap, small cap, Sensex, Nifty, these all cash segments. So any selling pressure here means that there is something in the derivative contracts for the next month which is really motivating the selling pressure now.
2: So Arjun, you've raised a very pertinent question, because see, initially when the whole idea of derivatives was mooted, the idea was that there's a large cash market and we have this derivative market which is to be used by investors for hedging their risk. So idea was that the cash market should be large, and derivative market, as the name suggests, it is derived from the cash market, and therefore it should only be a small portion or part of the market. What has happened is that because of the speculative nature of derivatives, and the fact that people can take leverage positions, they can make quick gains, and they hope to make quick gains, we have seen that over the years, derivatives have actually become several times larger than the cash market. So the underlying market is much smaller, and the derivatives market is today almost 80 to 90% of the market total market volume, which is not good. So what has happened is that derivatives have started driving valuations in the cash market. And again, that is what we saw today. Towards the end of the session, when the closing auction happened, when the prices for options were to be determined, we saw that the index fell very sharply. Particularly the BankEx, the banking index listed on the BSE, it fell very sharply. About almost 1,000 points it fell in last 10 minutes. So this derivative market is distorting the cash market. I think regulators really need to look at it seriously. But you are right. Right now, derivatives market is practically driving the volumes as well as the prices in the cash market.
1: So we have some news coming in that small cap 100 index is near to an all-time high, even though we are seeing very marginal correction in this particular index along with mid cap as well. What's relevant is the price to earnings ratio. It is above 30. Is that a healthy price to earnings valuation as compared to mid cap or the large caps for that matter? Would you say that small caps are the really the index to invest in right now?
2: So interestingly, and rather ironically, I would say, though the traditional wisdom was that large caps are safer, people, investors want to be to flock to large caps, they want to put most of their money to work in large caps. In India, in last 2 years, what we have seen is that the large cap, which is represented by the Nifty 50 index or the Sensex, they have given practically no return in last 2 years. And if we really look at them from the peak, then the correction is about 10%. So they are about 10% below their all-time high, which was reached sometime last year. On the contrary, we have seen investors now flocking to mid caps and small caps because they have found the returns to be in mid caps, small caps are higher. Of course, they're not. I don't think they're discounting for the fact that the risk is also higher in mid caps and small caps. Right now, investors are attracted by higher returns in mid caps and small caps, and therefore you see, like you mentioned, the small cap index is almost near all time high. That is what in small investors, and traditionally, if small cap companies, they need small capital or rather limited capital to scale new highs, because the supply of stocks is less in small cap companies. So it temporarily, or rather in the short term, it is very attractive. Yes, investors are putting more money in. Even in mutual funds, we find most of the money is now being allocated to small caps and mid caps, and large cap mutual funds have reported much lower inflows. So right now, yes, this is the flavor of the season, but I think in the long term, large caps will finally be more attractive to investors.
0: तो पुनीत, क्या निवेशकों का जो ध्यान है वो शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप की बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ? हालांकि हम ये भी देख रहे हैं बैंकिंग के जो शेयर्स में गिरावट आ रही है, तो ये भी कोई चिंता का विषय है क्या?
2: देखिए, बैंकिंग के जो क्षेत्र में हम गिरावट देख रहे हैं वो कुछ बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं. थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वहां, नंबर्स भी उतने बढ़िया नहीं आए हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहां पर सेलिंग कर रहे हैं. तो वहां से कुछ आप कह सकते हैं कि डिसिल्यूजनमेंट है स्मॉल इन्वेस्टर्स को, और ये काफी अरसे से हो रहा है. ऐसा नहीं है कि एक महीना, दो महीना, तीन महीने से अंडर परफॉर्मेंस है. बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र में जो बड़े बैंक्स हैं उनकी अंडर परफॉर्मेंस पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं. तो इन्वेस्टर्स अब कुछ वहां से आप कह सकते हो बेजार हो गए हैं वो, और उनको दिख रहा है कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में ज्यादा पैसा बन रहा है. शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा, और वहां पर वो अट्रैक्टिव है।
0: डीआईएस के लिए, एफआईएस के लिए,
2: देखिए डीआईएस के पास एक स्टेडी फ्लो ऑफ फंड्स है फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डीआईएस तो एलोकेशन कर रहे हैं लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, लेकिन एफआईएस जो है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन लेते हैं। डीआईएस में खास बात यह मैं कहूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि अब जो फंड फ्लोज हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बढ़ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा डिस्ट्रक्शन है, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रहेगा ये।
1: पुनीत, अ लॉट ऑफ एक्शन टुडे इंक्लूडिंग ब्लॉक डील्स एज वेल, आईपीओज आल्सो कमिंग आउट विद देयर सब्सक्रिप्शंस, बट टेल अस अबाउट

0: the gross domestic product, the real economy, as we call it, where, because now there's a projection, because the announcement will be made on the 31st of August, what the first quarter GDP growth is going to be from April to the June period. How would you rate the capital goods sector right now? Because it's a very important component in our net exports.
1: So, Arjun, you're right. See, traditionally in India, stock markets have been driven mostly by the services sector. So therefore, you find telecom companies doing much better in India, banking sector stocks, healthcare stocks. So all these stocks were doing traditionally much better. However, I think in the last few months, while these so-called large caps, whether in IT services or in terms of healthcare, we found that these are banking, they were not giving much returns to investors, but government has put a lot of emphasis on manufacturing sector. And you will see a lot of push for manufacturing, because in manufacturing, we have new technologies coming up. We are expanding our defense production. We are expanding our space exploration. So industry is getting a lot of push from there. And markets are responding to that. So capital goods, which supplies equipment, machinery for manufacturing sector, we are seeing a lot of interesting developments there. And also, it is also linked to construction to some extent. At the same time, there are other sectors which are now emerging as defensive sectors for investors as compared to FMCGs of the world. No, earlier, if you wanted defensive investments, you went to FMCG now or IT. But today, if you want defensive investments, you actually go to manufacturing. You look at capital goods. So this is the changing nature of
0: the PMI manufacturing index has also gone up well above 50, 55, in fact.
1: Absolutely. So above 50, it denotes expansion of activity. So surprisingly, in India, which was a mostly, and even today, it's a mostly services-driven economy, we find the manufacturing is making a headway. And I think markets are also kind of reflecting that change of mood.
0: So we'll have the industrial production data, which will come out tomorrow as well. Let's move on to the Asian and the European markets now.
2: बिल्कुल एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया कोस्पी आज 1.5% की बढ़त और जापान का निक्केई 225 0.2% नीचे आकर बंद हुआ. इस बीच बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी अगस्त महीने की बैठक में बेंचमार्क ब्याज दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 3% कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने अपने नवीनतम आर्थिक आउटलुक में 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर का अनुमान पहले के 2.6% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का 2.7% पर ही बनाए रखा. अपूर्वी तेज दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, जो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने हैं ऐसी स्थिति में? हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है.
1: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट्स में पिछले दो वर्षों में. इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है. ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल इंडेक्स है. पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक एक, एक, एक दिशा बता रहा है कि इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी कहाँ जा रही है. साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकॉनमीज थी, यहाँ पर AI ड्रिवन जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, वो ज्यादातर लिस्टेड है वहां पर. और वहां पर काफी ज्यादा वहां पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा. साउथ कोरिया को देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज जो उन्होंने ब्याज दर बढ़ाए हैं, हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन स्टेबल रखा है और अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है, पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेकर प्रेशर बना रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, और सेंट्रल बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. हालांकि नोबडी सेज दैट, अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है अगले वर्ष तो प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा.
2: तो ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है?
1: नहीं नहीं, ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो एक तरह से हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशंस के लिए अच्छी चीज नहीं है. तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है.
0: In more news, Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector. The defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically but was also developing the capability to

0: maintain, overhaul, and upgrade them. Your comment on defense security vis-a-vis the economy, because you're looking at manufacturing and employment.
1: So interestingly, India, of course, until a few years back, was importing most of its defense requirements. So there were strategic issues with that, the dependence on other countries, reliability of, and the technical advancement that you could make. Also, when you were importing all this defense equipment, then it only meant that we did not develop domestic manufacturing sector. So what has happened in the last 10 years, I think it's really remarkable. The way India has emerged as a manufacturer of defense equipment domestically for our own armed forces as well as an export sector. And I know many companies personally, small manufacturing companies, which have really come up and done very well in defense sector. So it is good for India's security, strategic security, and it is also good for India's manufacturing sector, because that ecosystem is now developing very well, very fast. And I think it's a remarkable, if you really look back on, I look back on the 10-15 years of India's growth in last decade, then I think defense sector manufacturing would be the one of the biggest stories, success stories of Indian economy.
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये भारत के वित्तीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ खाते खोले गए, इनसे लगभग 3,17,000 करोड़ रूपये जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी समावेशी पहल है, जो सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रति खाता 5,356 रूपये जमा हुए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 78% खाते अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, जिनमें से लगभग 56% भागीदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लाखों लोगों का सशक्तिकरण किया है। श्री चौधरी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव किया है। पुनित, जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था, एक ऐसी सोच रखी गई थी कि हर एक भारतीय के पास उसका बैंक खाता हो, चाहे वो किसी भी तबके का खाता हो। आज जब हम ये देखते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
1: देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रैक्टिकली हर भारतीय के पास आज एक बैंक अकाउंट है। उसका कई आपके सीधा बेनिफिट दिखते हैं, दो बेनिफिट आपको बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की यूपीआई की आज ट्रांजेक्शन होती हैं, जो बिकॉज ऑफ जनधन योजना की वजह से, क्योंकि गांव गांव में, घर घर में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है, कि जो हम गांव गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है, वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में, और आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई, ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है, और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
2: ओके,
0: लेट्स नाउ मूव ऑन टू व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा?
1: देखिए, जो ईरान और यूएस की जो वॉर है, वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है। वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब्स गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई, वो नहीं है अब, एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है, और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है, तो मुझे लगता है वो नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब।
0: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, in the Gulf area, where the shipping takes place, and oil prices are escalating as a result of what's Iran is doing and what the US is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's

0: moderated, is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
1: So it is basically a sign of better supply of oil in the world, because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up, and therefore the Urals prices have come down. Primarily, I would say this is a stabilization of the oil market. Oil market, I think, is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are, of course, settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
2: पुनीत, आपको लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है, इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
1: देखिए, दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं. और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही है, लेकिन गैस की जो सप्लाईज है वो अफेक्टेड है. तो वो दोनों देश अपनी अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं. तो ये, जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है अब पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं. तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट.
2: जी, आगे बढ़ते हैं. सराफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 158,386 रुपए प्रति दस्कान पर था, और चांदी 1.9% लुढ़क कर 239,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. अब पुनीत जी, एक निवेशक के नजरिए से अगर इन दोनों चीजों को देखें तो आपको क्या लगता है, कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
1: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफी जंप आया है, और यदि यूएस डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना और चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं. तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेजी बन रही है, और जो फैक्टर्स हैं भी यूएस डॉलर वीकनेस के, वो थोड़े फैक्टर है. अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, अगर चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे. तो यूएस इंटरेस्ट रेट पे नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा.
0: ऑल्सो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इनटू गोल्ड वंस अगेन. Why is this trend picking up now? Because silver went up when there was a lot of buying by Indian farmers because of the post-harvest income being diverted towards this investment. What are the central banks doing now?
1: So central banks, as like I said, if the dollar index suffers, then immediately we say buying in precious metals. So that is what is happening. They're hedging against a dollar depreciation.
2: पुनीत, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद निखिल.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 500 points. Nifty settles below 24,100. Defense Minister Rajnath Singh says defense production nearly quadruples to around 1.8 lakh crore rupees in 10 years. Then global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
2: Namaskar.
0: Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है।

मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230887818 और +9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813216117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा में समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डोमियन फर्नांडो शनिवार तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
1: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
2: Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines. On the internationals stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 23088718, +91 11 23088718.

रात के आंगन में, रात के आंगन में चांद आज कुछ ज्यादा निखरा है, जैसे संगीत सुनने को वह भी हमारे साथ ठहरा है। हवा की लहरों पर कोई मीठी तरंग चली है और दूर कहीं से गीत की खुशबू से मिली है। इस पहर ना कोई जल्दी है, ना किसी मंजिल की तलाश, बस सुरों का साथ है और दिल के लिए कुछ खास। तो आइए एक एक गीत के साथ रात को नया रंग देते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा के साथ मैं हूं जयती। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में पहला गीत फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए और आवाज है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। बरसात की रातों का अपना एक सुंदर सा संगीत होता है। बूंदे छत पर गिरती हैं और भीतर कोई पुरानी बात जाग जाती है। सड़कें भींगी हो तो शहर कुछ देर के लिए अपना चेहरा बदल देता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे चमकती हर बूंद किसी अधूरी कविता की जैसी लगने लगती है। ऐसी रात में चाय की खुशबू भी थोड़ी सी ज्यादा अपनी लगने लगती है, और रेडियो रेडियो जैसे किसी अनजान कमरे में बैठा अपना कोई इंसान हो। आप जहां भी हैं, अगर आपके पास आसपास ऐसा ही कुछ हो रहा है तो कुछ देर ठहरिए, बैठिए। बारिश हो रही हो तो बारिश का मजा लीजिए, क्योंकि बारिश अपने साथ यादों का मौसम भी लेकर आती है। और कभी कभी ये मौसम हमें उन बातों तक ले जाती है जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। ये बारिश जो है ये हमें उन बातों को याद करने का मौका देती है, और मौसम बहुत सारी कहानियों को दोहराने का वक्त देता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और गीत और फिर आगे बढ़ेंगे। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम है कभी कभी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

ये जो दिन के बाद रात आती है ना, तो रात को लेकर यूं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, पर रात दिन की थकती हुई कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि ये जो रात है ये हमें हमसे मिलने का सबसे सुंदर समय देती है। जब शहर की आवाजें कम होती हैं, तब भीतर की आवाज कुछ साफ सुनाई देने लगती है। किसी को नींद की तलाश है, किसी को किसी अपने की याद की, किसी के पास बहुत कुछ कहने को है मगर सुनने वाला कोई नहीं है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल बिल्कुल खाली है। और ये जो रेडियो है ना, रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये अनजान लोगों के बीच भी एक संबंध बना देता है। तो इस रात हम आपसे यही कहेंगे कि अपने लिए कुछ पल अपने पास रखिए और कल की चिंता कल पर छोड़िए। आज की रात बस खुद के साथ बैठकर खुद के साथ जीने की कोशिश करिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत जो है वो फिल्म का नाम है कुदरत, आवाज है लता मंगेशकर की।

ये जो दिल है ना, इसमें इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर आप दिल की बातों को शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो आप इसे शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि एहसास को शब्दों में बांधना ये बहुत मुश्किल काम है। जो दिल की बातें होती हैं उनको शब्दों में बांधना हो तो वे उतरती हैं किसी गीत की धुन में, किसी खुशबू में लौटती हैं, या अचानक किसी पुराने नाम के साथ कविता बनकर लौट आती हैं। ये जो जज्बात होते हैं ना, ये थोड़े अजीब से होते हैं। इसे जितना हम छुपाने की, बचाने की कोशिश करते हैं, ये मन के अंदर उतने ही गहरे होते जाते हैं। और रात जब आती है तो ये जज्बात जो हैं ये फिर से जाग उठते हैं, क्योंकि रात उन्हें आवाज देती है। इसलिए शायद देर रात सुने गए गीत, पढ़े गई कोई किताब, कोई शब्द सीधे दिल पर दस्तक देते हैं। दिन हमें व्यस्त रखता है और रात हमारी संवेदनाओं को जगा कर रखती है। और आज अगर आपका दिल भी आपसे कुछ कहना चाहता है तो उसे रोकिए मत, उसे बांधने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हर भाव का, हर एहसास का, हर जज्बात का एक अर्थ होता है। बस उसे समझने के लिए इस रात में थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठिए और दिल पर जो आवाज दस्तक दे रही है उस दस्तक को सुनने और समझने की कोशिश करिए। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सिलसिला।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं जिस गीत के साथ, आवाज है आशा भोसले की और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है कश्मीर की गली। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9111230888 और +9111230888719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851306 और +9779801031717 जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन

0: यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की दो दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की निर्यातित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuliwan project, as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jaiswal said, India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief for operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the Indian nationals stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 23 08 8718, +91 11 23 08 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 291 988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 032 6117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the Lente tributary of the Bhotakoshi and first hit Temure near Nepal's border with China at Rasuwagadi. UN Secretary General Antonio Guterres has voiced deep sadness over the severe flooding in Nepal and China that has caused widespread disruption.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। रात के आंचल में आज सुरों की महक घुली है, दूर किसी मंदिर की घंटी जैसे हवा मिली है। चांदनी आंगन में चांदी के फूल खिला रही है और हर मधुर धुन कोई नई तस्वीर बना रही है। ये पहर उन सुनने वालों के नाम जो अभी जाग रहे हैं, जो अपने पसंदीदा गीतों के संग कुछ पल खुद से मांग रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को संगीत के लय पर धड़कने दीजिए और आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चलना तो समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाना,
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
2: आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। सावन की पहली फुहार ने जब देहरी को छुआ, मैंने पायल उतार कर आंगन में रख दी कि आज मेरे कदमों की आहट नहीं बूंदों का संगीत सुना जाए। अमलतास के पास भीगी हुई धूप पर एक पीला फूल गिरा था, मैंने उसे उठाकर अपनी चोटी में सजा लिया। ऋतु ने जैसे बिना कहे मेरा श्रृंगार कर दिया। ताल के किनारे कमल की पंखुड़ियां खुली, कच्ची मिट्टी ने सौंधी महक से भरकर मेरी सांसों को छुआ और भीतर कोई पुराना राग अचानक जाग उठा। ना कोई संदेश आया, ना किसी पथ पर पदचाप सुनाई दी, फिर भी आज मन ने किसी के अभाव को अपनी नियति नहीं माना। मैंने काजल लगाया, हरी चूड़ियां पहनी, माथे पर छोटी सी बिंदी रखी और आईने से कहा, स्त्री का श्रृंगार किसी की प्रतीक्षा नहीं, उसकी अपनी प्रसन्नता भी हो सकती है। घन घिरते रहे पर्वतों के पार, नदियां अपने तटों से बातें करती रहीं, कहीं मोर ने पंख खोले, कहीं बेलों ने पुराने वृक्षों को आलिंगन दिया। मैंने देखा प्रकृति किसी के लिए अपने रंग नहीं बचाती, जिसे जहां खिलना होता है वहीं खिलती है। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है रोटी।

तुम हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गाइड और आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं, जयती।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां और आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोफ के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमकुई अशांग इलाके के IT रोड पर कल सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेनापति जिले में लोगों ने बंद का ऐलान किया। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शाम को राजधानी इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हमले की समीक्षा की गई और सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने

तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या है, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या है जो हर बार मुझे मेरी ही खामोशी सुनाती है। वो मुस्कुराया। शायद उसमें स्वर नहीं, तुम्हारा नाम बसता है। शायद उसमें स्वर नहीं, तुम्हारा नाम बसता है। और अगर मैं तुमसे रूठ जाऊं? तो उसने कहा, तो बांसुरी मौन रहेगी, क्योंकि प्रेम में स्वर भी उसी के होते हैं जिससे हृदय जुड़ा होता है। वो धीरे से बोली, फिर मुझे कभी मत पुकारना। वो मुस्कुराया, पुकारूंगा नहीं, तुम्हें अपने भीतर रखूंगा, जहां से कोई विरह भी तुम्हें मुझसे छीन न सके, जहां से कोई विरह भी तुम्हें मुझसे छीन न सके। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में पहला गीत लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

अकेले होना और अकेलापन, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, पर ये दोनों एक बात नहीं है। कभी कभी अकेली रात इंसान को अपने सबसे करीब लेकर आती है। कोई साथ न हो, फिर भी मन में बहुत से चेहरे रहते हैं। कितनी आवाजें, कितनी बातें और कितनी अधूरी मुलाकातें। हम अक्सर भीड़ में खुद को खो देते हैं और रात हमें फिर अपने पास बुलाती है। और अगर आज आप अकेले हैं तो इसे अपनी कमी मत समझिए। शायद ये वक्त होता है जब हम खुद से बातें कर सकते हैं, खुद को सुन सकते हैं और अपने दिल से सवाल भी कर सकते हैं कि सचमुच हमारा दिल हमसे क्या चाहता है। कभी कभी सबसे जरूरी जवाब जो होता है ना, वो दुनिया हमें नहीं देती है, हमें हमारा अपना मन देता है। जब हम उस मन के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और उसकी आवाज को पूरी तन्मयता से सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बॉबी।

रात के आंचल में आज सुरों की महक घुली है, दूर किसी मंदिर की घंटी जैसे हवा से मिली है। चांदनी आंगन में चांदी के फूल खिला रही है और हर मधुर धुन कोई नई तस्वीर बना रही है। ये पहर है उन सभी लोगों के नाम जो अभी जाग रहे हैं, जो अपने पसंदीदा गीतों के संग कुछ पल मांग रहे हैं, तो अपनी धड़कनों को संगीत के लय पर छोड़ दीजिए। आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है अंदाज, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसे ही किसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। पर याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज है लता मंगेशकर की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। BIS ने बताया कि 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करता है। मानक ब्यूरो ने चांदी आभूषण ग्राहकों को सलाह दी है कि वे BIS हॉलमार्क देखें और BIS केयर ऐप के जरिए HUID को जांचें। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the Indian nationals stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718. +91 11 2308 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 29 1988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 0326 117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the landed tributary of the Bhotakoshi and first hit Timore near Nepal's border with China at Rasuwagadi. The National Disaster Response Force, NDRF, has said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bandela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. Prime Minister Narendra Modi will be on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic starting tomorrow. Addressing a press conference in New Delhi, External Affairs Ministry Secretary West C.B. George said that on the first leg of his visit, the Prime Minister will undertake a two-day state visit to Tashkent, Uzbekistan, at the invitation of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India will see greater market access for basmati rice in Japan during the review of the Comprehensive Economic Partnership Agreement, a CEPA, while also exploring opportunities to expand exports of processed food products. Addressing the Investors in Business Roadshow in Osaka yesterday, Mr. Goyal responded to industry concerns over increasing basmati rice exports to Japan, noting that rice is a sensitive sector in Japan. He said India would engage with the Japanese government during the CEPA review to explore a greater cooperation and market access in the food sector. He also

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आज की रात इस पहर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ हमराही के इस सफर को लेकर। और हमराही के इस सफर के खास बात है कि हम इसमें आपको सुनवाते हैं हिट फिल्मी ड्यूएट्स। तो चलिए उन सुनहरे गीतों में खो जाने के लिए जिन्हें गाया कुछ युगल स्वरों ने, जिन्हें जो है चरित्र दिया कुछ युगल अदाकारों ने। और कहें तो तुम मिले हम बने और ये सफर तय हुआ।

आपके सामने से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, एस डी बर्मन साहब का सुरीला संगीत। संसार कहता है प्रेम पागल कर देता है, किंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे समझदार कर दिया। अब मैं तुम्हें खोजने नहीं निकलता किसी गली किसी पते किसी शहर में, क्योंकि समझ गया हूँ जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म नया दौर से। किनारा किनारे पे बेसुध पड़ा था, समंदर का जी भी भरा लग रहा था। हमें इश्क बस इस सबब से हुआ था, हमारे भी हिस्से में थोड़ा खुदा था। मैं एक चांद बनकर छिपा उसके पीछे, वो सबके लिए फिर रुपहली घटा था। और जब वो दिल लेके परदेसी हो गया तो सच में बड़ा दुख हुआ था। तो सच ही कहा है किसी ने, परदेसियों से नाखियां लड़ाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922

0: शोरूम पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफ़र है हमराही का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पुराने हिंदी डुएट सॉन्ग्स जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं।

आशा और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म मैं चुप रहूँगी से लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है हमराही का। हमराही तो वही होता है जो आपके सफर को साझा कर ले, और हम भी कोशिश करते हैं कि रात का ये जो कठिन सफर है इसे हम आपसे साझा करें। और इसी बीच हमराही में हम सुनवाते हैं आपको युगल गीत। तो चलिए अगला युगल गीत जो है वो हम लेकर आ रहे हैं फिल्म सारंगा से, लता जी और रफी साहब की आवाज़ में।

मिस मैरी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप लता और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, हेमंत कुमार का संगीत और बोल लिखे राजेंद्र कृष्ण ने। अगला गीत सुनवाएं उससे पहले कुछ कह भी लेते हैं। लगा कि कल ही की बात है और बीच में बस ये रात है। तुमने सुनहरा दुपट्टा ओढ़ा था, हाथों में चूड़ियाँ, आँखों में काजल लगाया था, होठ हिले थे, कुछ कहा था तुमने, वो सरसराहट कानों में अभी जिंदा है, वही पल था और ये दिल दीवाना हुआ आपका। अगला गीत फिल्म इश्क पर जोर नहीं से आप सभी के लिए।

और अब समय हो गया है कि हमरा ही कार्यक्रम से इजाजत ले ली जाए, तो इजाजत दीजिए माधुरी को, कुछ ही समय प्रसारित होंगे समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। श्रीलंका ने कहा है कि वह नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में T युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप अरुणिमा का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूँ आज आप सभी के साथ। शुरू करते हैं इस सफर को और ये भी एक बात है कि हर सफ़र शुरू होता है और यही कोशिश होती है कि हर सफ़र का आगाज़ अच्छा हो, इसका अंजाम अच्छा हो। हमारा आपका जीवन बहुत ही जटिल है, पर जटिलता ही जो है इसकी सुंदरता भी है। लेकिन ये बात ज़रा देर से समझ में आती है, लेकिन आते आते आ ही जाती है।

जिंदगी में जो चीज़ हम सोचते हैं ना करें, न जाने क्यों वही चीज़ बार बार होती चली जाती है। जैसे उदासियों को ही लें, अगर हम चाहें कि हमें उदास नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन फिर भी उदासियाँ कहीं ना कहीं से आती हैं, हमें घेर लेती हैं, घेरती हमें परेशानियाँ हैं और परेशानियाँ हमें उदास कर जाती हैं। और ज़िंदगी क्या है? इन उदासियों से लड़ने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है, परेशानियों पर विजय पाने का नाम है।

कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है कि जिंदगी बाधाओं के आगे विवश होकर रह गई है, दुख आया और जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे पलों में, ऐसे क्षणों में लगता है कि अब जो होगा गलत ही होगा, पर हार के आगे जीत की सीढ़ियां शुरू होती हैं। हमें बस उन सीढ़ियों को देखना है, ढूंढना है और उन पे फिर चढ़ना है। सकारात्मकता आती जाएगी, थोड़ा समय लगता है

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है अरुणिमा का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ।

आप सुन रहे हैं अरुणिमा। हमारे संकल्प और विकल्प लगातार बातें करते रहते हैं। छोटे बड़े कामों को पूरा करने के लिए हम हर समय कुछ ना कुछ चुन रहे होते हैं, पर जैसे ही कुछ चुनते हैं उसके बाद उसी पर अड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। जो बातें यात्रा में पड़ाव भर होती है हम उसे मंजिल मान लेते हैं। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं बस वही अंतिम है, उससे आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये सफ़र लंबा है और इस सफ़र में हर चीज़ अंतिम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी जाएंगी और इसी तरह हमें जो भी घट रहा है उसके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना है।

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ही बातें हो जाती हैं और मन दुखी भी हो जाता है, पर कई बार हमें अपने मन की बात दूसरे को सिर्फ बताने भर से आराम मिल जाता है। कभी कभी दूसरों की सलाह भी राहत लेकर आती है, लेकिन ऐसे किसी स्थिति में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले पूरी छानबीन करें कि ये हमारी बात किसी और को कहेगा कि नहीं कहेगा। कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है ना, जिस पे हम पूरा विश्वास करते हैं और बस उससे बात करने भर से हमारा मन हल्का हो जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, अपने मन को हल्का कर लिया कीजिए।

भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जीवन में सही फैसलों की बड़ी भूमिका होती है। अच्छे फैसले हमें दूसरों की नज़र में ऊंचा उठा देते हैं। अपनी बात सही साबित होने पर हमें खुशी भी बहुत मिलती है, हमारा आत्मविश्वास भी ज़्यादा हो जाता है, हम आत्मविश्वास से भर उठते हैं। पर हमेशा हमारे फैसले सही ही होंगे ऐसा तो नहीं होता ना। हम जितना अड़ते हैं उतना पीछे हटने में दिक्कत महसूस होती है, उतना ही उनके गलत होने पर हम दुखी होते हैं। फिर जो बात समझनी है वो ये कि हर फैसला जीवन मरण, हार जीत या इन सब का प्रश्न नहीं होता। इन सबको कभी भी हमेशा आखिरी फैसला नहीं बनाना चाहिए। समय के साथ थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर करना चाहिए। कभी कभी हम सच में जीते जीते हार जाते हैं, तो स्वीकार कर लीजिए ना उसे।

0: अब यहाँ तक तो आ गए हैं, यहाँ के आगे का सफर जो है अरुणिमा का कल शुरू होगा। आज का यहाँ का सफर यहीं तक, इजाजत दीजिए और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत

0: नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के नागरिक शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इस बीच श्रीलंका ने कहा है कि वो नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा कि आवश्यकता की इस घड़ी में श्रीलंका नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। उधर कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय अजय कुमार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। और आज अब ये जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम भोर सुहानी, इसमें सबसे पहले आप सभी को बधाई। आज क्योंकि खास दिन है और खास दिन है भाई बहन के प्यार का, जी हाँ रक्षाबंधन का। ये राखी आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और सफलताएं लेकर आए। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: मो इटक दाना बीटक दाना दाने ऊपर दाना इटक दाना।
2: पेड़ ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ, जड़ ने कभी नहीं कहा कि मैं बेहद गहराई से आई हूँ। शक्ति होती है मौन, पेड़ कहते हैं मुझसे, गहराई भी कहती हैं जड़ें, और पवित्रता भी कहता है अन्न। पेड़ ने कभी नहीं कहा मैं सबसे ऊंचा हूँ, जड़ ने कभी नहीं कहा मैं बेहद गहराई से आई हूँ, और रोटी कभी नहीं बोलती दुनिया में क्या है मुझसे अच्छा।

पता है जीवन में सबसे अच्छी बात क्या है? जीवन में किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है, सबसे अच्छी बात है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। और हम जीवन में यही चाहेंगे कि हमें सारी अच्छी चीज़ें मिलती रहें, लेकिन उसके लिए हमें भी वही करना चाहिए जो हमें चाहिए, उसके लिए वही देना चाहिए। जी हाँ, प्यार बांटते चलो, प्यार मिलता रहेगा।

हमारी ख्वाहिशें बहुत छोटी छोटी होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ दिन से रात तक करते रहते हैं। लेकिन पता है, कभी कभी लोग बेहतर के तलाश में बेहतरीन चीज़ों को खो देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा हमारे साथ, आपके साथ न हो।